बोलो प्रेम से बोलो।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, ओल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7-सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, तीन साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

होती है लाइफ में, जो भी कुछ होता है वो किसी रीजन की वजह से होता है। ऊपर वाला अगर कुछ भी चीज आपकी जिंदगी में करता है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा तो डेफिनेटली छुपा होता है। बस हम जरूरत है हमें उस नजरिए को पकड़ने की, उस पॉजिटिविटी को पकड़ने की। कहते हैं ना दोस्तों, समय सबसे बड़ा शिक्षक है जो हर अनुभव सिखा देता है आपको, और बहुत कुछ सिखाता है ये समय। वैसे ही अगर आपके पीछे कुछ भी चल रहा है तो यकीन मानिए ऊपर वाला, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका एक रीजन है, कुछ ना कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में होना है, इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है। सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की सुबह बहुत प्यारी है। इस सुबह का आगाज करते हैं खुली बाहों के साथ, स्वागत करेंगे जी गुड मॉर्निंग। आप जुड़ चुके हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz में आनंद के साथ, प्रोग्राम है आपका फेवरेट बिंदास मॉर्निंग। हेलो जी, कैसे हाल चाल है? एक सुपर डुपर वाली गुड मॉर्निंग है जी मेरे प्यारे लिसनर्स को। आप सुन रहे हैं आपका ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है 8:22, यही हो रहा है ना चाचा? बहुत बढ़िया। चलिए फिलहाल समय की बात तो हम करेंगे जरा यहाँ पर, और क्या है आज स्पेशल ये आपको पता लगेगा। मौसम क्या कहता है ये मैं आपको बताऊंगा। तारीख है 10 जुलाई, और देखिए भाई साहब आज दिन शुक्रवार का है। शुक्राना कीजिए उन लोगों का जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहते हैं जिंदगी में अगर कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इरादे अपने मजबूत रखो, तरीकों को बदलते चलो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बाकी अगर आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं आज की सुबह, तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है जी। 9837896896 ये वो नंबर है जिसके जरिए आप अपने दिल के हाल चाल साझा करेंगे मुझ तक। हां जी, तो हमें इंतजार रहेगा आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस का 9837896896 पर। एंड आई होप कि आप डेफिनेटली अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचा देंगे। खैर हमारे लिसनर हैं बड़े प्यारे यार, मतलब बिना बोले ही इतने सुंदर मैसेज पहुंचा देते हैं, और क्या ही चाहिए हमें आपसे यार। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के सफर की एक बेहतरीन गीत के साथ। 8:23 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। और आपको एक चीज तो मैं डेफिनेटली यहां पर कहूंगा कि अगर सुबह की शुरुआत आप कर ही रहे हैं, अगर आप उठ चुके हैं, अगर आपने ट्यून इन रेडियो कर लिया है, तो यकीन मानिए आज की सुबह आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी हैप्पीनेस मिलने वाली है आरजे आनंद के साथ, है ना? तो चलिए एक प्यारा सा गीत, उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बात। आप लोग हमारी जिंदगी में बाहर बन के आए हैं, और हर दिन एक नई बाहर के साथ हम आपकी जिंदगी में और आपके घरों में पहुंचते हैं आपकी रेडियो सेट के माध्यम से। आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, उठाइए अपने कर्मों की किताब और लिख डालिए कुछ बेहतर से बेहतरीन। गुड मॉर्निंग।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मेरा।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो।

बहुत ही खूबसूरत आवाजों में एंजॉय कर रहे थे आप खूबसूरत ये ब्यूटीफुल गाना ब्यूटीफुल ट्रैक कब से हाय हाय हाय आपके साथ मिलने के बाद रेडियो पे बात करने के बाद मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है

वेलकम बैक है एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, साथ में अलका याग्निक जी दे रही थी साथ। साजन फिल्म का ये गाना जिसको सुनते हुए मैं और आप आगे बढ़ चुके हैं आज की सुबह। 8:36 हो रहे हैं जी। वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत अभिनंदन देवियों सज्जनों आपका स्वागत है। 8:37 का समय हो रहा है, 10 जुलाई की ये प्यारी सुबह है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बताते चलें, हर दिन की सुबह बहुत खास होती है और आज की सुबह भी बहुत खास है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खास अपडेट है जो आप तक मुझे पहुंचानी है। ऑफ कोर्स बच्चों की छुट्टियां है ना आज, बहुत ही बढ़िया है। देखिए हमें तो पहले ही पता चल जाता है यार, और हमें लगता है कि अपने लिसनर्स को भी बता दें ताकि लेट ना हो जाए उन्हें। तो भैया आपको बता दें, भारी बारिश का आज अलर्ट किया गया है। कक्षा 12वीं तक की सभी स्कूल मुरादाबाद के अंदर बंद है। हाँ जी, जनपद मुरादाबाद के अंदर आज भी भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया। आपको बता दें मुरादाबाद जिला प्रशासन का आदेश है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा जनपद मुरादाबाद में जो है भारी बारिश होने की चेतावनी जताई है। बताया जा रहा है कि जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त बोर्ड के जो कक्षा 12वीं तक के स्कूल हैं भैया, वो फिलहाल के लिए तो बंद कर दिए गए हैं, यानी कि आज उनका अवकाश घोषित कर दिया गया है। आज तो छुट्टी हो गई है, लेकिन मौसम ने जो ये अलर्ट का एक मैसेज भेजा है, प्लीज इसने जो है भाई साहब, मतलब मौसम का मजा डबल तो कर ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना भी जरूरी है ना इस मौसम में। थोड़ी थोड़ी प्रकॉशन सावधानियां बहुत जरूरी है। एंड एक और बड़ी लेटेस्ट खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से, जो डेफिनेटली आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद। आप जुड़ चुके हैं आनंद के साथ, वेलकम बैक है वंस अगेन। आज की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कुछ खास है आज इतिहास के पन्नों में, डेफिनेटली एक नजर डालेंगे उस पर। श्रोताओं, सुबह सुबह उठ के ऑफिस आने का आनंद ही कुछ और है। मतलब जो लोग सुबह सुबह उठने में बड़ा टेंशनबाजी करते हैं, यार सुबह उठना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा यार, लेकिन एक बात बताऊं, जब ये आपकी हैबिट में आ जाते हैं ना, तो यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं ना, आप उनका एक्सपीरियंस लीजिए, बहुत ही डिफरेंट होता है यार सुबह सुबह उठ के ऑफिस आना, सुबह सुबह उठ के वॉक पे जाना, ब्रेकफास्ट का जो भी आप लेने जाते हैं, सामान लेने जाना, वॉक करने जाना, आप कहीं भी जा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए, आप जहां भी जा रहे हैं सुबह सुबह आप उठकर देखिए, आपको 2-3 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा आपको, लेकिन जब आप इसको हैबिट में ले आएंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि सुबह उठने के बाद जो नजारा होता है ना, जो खूबसूरती होती है, वो सिर्फ सुबह वाले ही महसूस कर पाते हैं। देखिए जो लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, समझ सकता हूँ, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं मेरे दोस्त, बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आज का दिन बहुत प्यारा है एंड सुबह सुबह अच्छी बातें तो ऑफकोर्स करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ जो जुड़ चुके हैं उनके लिए मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज के लिए, आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। सुबह सुबह आपके रेडियो सुन के बहुत सारी पॉजिटिविटी और ताजगी मिलती है, एंड आपके रेडियो स्टेशन से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, बिकॉज अच्छे गाने सारे नए सुनने को मिलते हैं और साथ में आपकी बातें बहुत पॉजिटिव होती हैं। एक मैसेज हमारे पास आया तारिक जी का, लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ सुन ली मौसम और भी औसम हो गया है और दिन भी प्यारा हो गया है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। किसी ने लिखा है, मजबूरियां आती हैं हमें मजबूत बनाने के लिए, उससे हारे नहीं बल्कि उसे लड़कर आगे बढ़ें, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात आपने लिखी है, अपना नाम भी लिख देना था आपने। एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है, लोग तुम्हें अच्छा बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे बनाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। ट्रू, आई एग्री विद यू 101%। ये मैसेज हमें सुनीता जी ने किया है। शिखा जी हमारे साथ जुड़ी है मानसरोवर से, लिखती हैं, खुद को इतना आनंद जी मजबूत बनाओ कि हालात भी आपके सामने हार मान जाए, क्या बात है यार, हमारे लिसनर के अंदर बड़ा मोटिवेशन का जोश भरा हुआ है। चलिए श्रोताओं, ये सिलसिला, ये जो बातों का फलसफा है, वो लगातार ऐसे ही जारी रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अगर आप भी हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं जी 9837896896 के जरिए, यानी कि 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह और हमारे साथ रूबरू हो सकते हैं, ढेर सारी बातचीत जो है वो हमारे साथ आप भी कर सकते हैं। तो हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे
मैसेजेस का। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा गाना आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, इसी गाने को मैं भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे और हम सुनते हुए ही आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं, आपके लिए हमारा नंबर खुल चुका है 9837896896। ये वो स्टेशन का नंबर है जिसके जरिए आप अपने सुंदर सुंदर सुंदर सुंदर संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं जी। चलिए फिलहाल बातें कम और गाने थोड़े ज्यादा हो जाएं, गाना अच्छा निकल चुका है आपके लिए।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
5: अरे आनंद इज बैक।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, मौसम बहुत खूबसूरत है और इस औसम वाले मौसम में अच्छे अच्छे गाने प्ले कर रहा है आपका दोस्त आरजे आनंद। बात करते हैं आज 10 जुलाई के इतिहास के बारे में। क्यों खास है आज का ये पन्ना, आपको बता दें 1997 में फिजी में नए संविधान को मंजूरी के साथ भारतीय समुदाय के राजनीतिक के अधिकारों को जो है आज के दिन वहां पर उनको मिले, और ये आज के दिन यानी कि 10 जुलाई को हुआ। आपको बताते चले, श्रीलंका की सांसद को जो राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंग ने ललामबद किया 2001 में। श्रोताओं, आज के दिन अर्जेंटीना जूनियर विश्व कप हॉकी का एक नया चैंपियन बना सन 2005 में। दूर खड़ी शर्माए। और श्रोताओं, आपको बताते चले, आज ही के दिन चित्रा जी का जन्म हुआ, जो भारतीय एथलीट है। इनका जन्म हुआ 1983 को। और एक और नाम आता है असद भोपाली, जो प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे। 1921 में उनका जन्म हुआ था। परवीन सुल्ताना भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका है। इनका भी जन्म हुआ सन 1950 में आज ही के दिन। श्रोताओं, आपको बताते चले, 10 जुलाई को ही 1949 में सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेटर है। इनका भी जन्मदिन जो है आज सेलिब्रेट किया जाता है। 1942 में आज ही के दिन 10 जुलाई को सैयद अली भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। श्रोताओं, ये आज के दिन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आज के दिन को जो महत्वपूर्ण बना रही थी मैंने आपके साथ साझा करी। फिलहाल ये ट्रैक, उसके बाद वापस आ रहा हूँ। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आनंद को सुप्रभात।

0: आए हाय
1: क्या बात है जी, क्या बात है। बड़ा बढ़िया सा गाना भी आपने सुन लिया। जितना बढ़िया ये गाना है उतनी बढ़िया ये फिल्म है। वेलकम बैक है रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से। हमारे साथ हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं और बहुत प्यारे प्यारे वॉइस नोट भी पहुंचा रहे हैं, जरा सुनते हैं।
2: हेलो आनंद सर, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
2: माय नेम इज सलीना खान।
1: जी बताइए मैम।
2: सर आपका प्रोग्राम हमारे घर में सब बहुत शौक से सुनते हैं।
1: अरे वाह,
2: सब रेगुलर सुनते हैं।
1: थैंक यू।
2: और सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: अरे थैंक यू मैम।
2: सर क्या मैं दो लाइनें आपको सॉन्ग की सुना सकती हूँ?
1: अरे बिल्कुल डेफिनेटली,
2: मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है।
1: अरे वाह नाइस।
2: एक प्यार का नगमा है।
1: वाह।

कुछ।

बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जोरदार तालियां भाई साहब, इतना बढ़िया आपने गाया, मजा आ गया मुझे ये गाना सुनके। फैबुलस, सुबह सुबह इतने अच्छे गाने हैं, मतलब आप अपनी आवाज में गा के भेज रहे हो और क्या ही चाहिए यार, इतना बढ़िया तो गाती हैं आप, ये जोरदार तालियां आपके लिए। बाकी अगर आप में भी ऐसा कोई टैलेंट है तो डेफिनेटली आप उसको मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अपने टैलेंट को छुपा के मत रखो यार, मुझ तक पहुंचाओ, मुझे बताओ, मैं हूं ना आपकी बातें सुनने के लिए। अभी गाना है, अभी इन्होंने गा के यहाँ माहौल बनाई दिया, तो इसी को सुनते हैं और आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। थोड़ी देर में मिलते हैं, यानी कि नेक्स्ट आवर में, जहां पर होंगी आपसे और बातें, लोकल फॉर वोकल की बातें करूंगा। अभी जरा सी देर में लौट कर आ रहा हूं, आप सुन रही है एफएम मुरादाबाद, गुड मॉर्निंग।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
5: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
6: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
5: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: कॉल 9045912348।
7: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
8: मुरादाबाद के लड़के इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, भैया 100 रुपए का पेट्रोल खर्च करते हैं, 10 रुपए की चाय भी नहीं है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप आनंद के साथ मौसम एब्सोल्युटली ऑसम हो रहा है। 27 डिग्री सेल्सियस करंट वेदर की अपडेट मैं फटाफट आपको देता हूँ। 27 डिग्री सेल्सियस अभी करंट दिखा रहा है टेम्परेचर, एंड आगे ये जो है 33 डिग्री पहुंचेगा, यानी कि मौसम जो है आज भीगा भागा रहने वाला है। बॉस हवाएं 12 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हैं और ये आगे आगे और तेज हो सकती हैं, यानी कि आज की जो सुबह है वो तो आप देख ही रहे हैं प्यारी है। एयर क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक हो गई है आज की सुबह, एंड बाकी ह्यूमिडिटी ओके ओके रहने वाली है बॉस, और रात को हल्की हल्की ठंडी ठंडी वाली फीलिंग भी आ रही होगी आपको। आ रही है नहीं आ रही है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, यानी कि आज मोस्टली कोल्ड वेदर रहने वाला है। आज आपको ये भीगा भागा मौसम मिलने ही वाला है। आप फिलहाल क्या कर रहे हैं यार, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ अभी, यानी कि आपसे मैं कुछ सवाल जवाब भी करने वाला हूँ आज की सुबह। आपके दिमाग की बत्ती गुल मीटर चालू जो करना है मुझे। फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ अच्छे गाने प्ले करूंगा आपके लिए और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद ऑफकोर्स आपकी जो मॉर्निंग है वो डेफिनेटली सुपर डुपर लाउड हो जाएगी, अमेजिंग हो जाएगी। आज की सुबह ही इतनी प्यारी है यार, मैं क्या बताऊँ। मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर तमन्ना का, लिखती है हेलो आनंद, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तमन्ना जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। इन्होंने लिखा जो अभी मैम ने गाया वो बहुत ही बढ़िया गाया, मेरे को सुनकर उनकी आवाज़ अच्छी लगी, वो थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है, हाय मॉर्निंग मॉर्निंग जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। इन्होंने लिखा है आनंद जी सुबह सुबह आपका शो सुनने के बाद ना ऐसा लगता है कि पूरी मॉर्निंग बिंदास हो गई है। क्या बात है यार, मैं मतलब यही तो ट्राई करके आता हूँ यार, मैं कोशिश करके आता हूँ कि भैया कैसे अपने लिसनर्स को वो हैप्पी वाइब दी जाए, जिसे उनकी सुबह थोड़ी अल्टीमेट हो जाए। फ्राइडे मॉर्निंग है, शुक्राना कीजिए उन लोगों का जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की सुबह शुक्रवार का दिन है जी, तो आप सभी को हैप्पी फ्राइडे। वीकेंड है, बहुत अच्छा दिन है, मौसम बहुत औसम है, वॉल्यूम बढ़ा लो रेडियो की। चलो जी मेरे साथ शुरुआत करते हैं दूसरे घंटे की लेडीज एंड जेंटलमैन। 9:05 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को। जो लोग निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे, ऑल द वे बेस्ट, वॉल्यूम बढ़ाइए, आनंद के साथ रहेगा 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बिकॉज दिस इज बिंदास मॉर्निंग आनंद विद यू। चलो जी ये आपने गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, 3, 2, 1, गो स्टार्ट मेरे भाई।

0: Sorry, Ma!
1: Mamamaka, nalaya ka beta.
2: Hanji, good morning, namaskaram, kya hal chal?
3: Aap sun rahe hain, Bindaas Morning.
4: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
5: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
6: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
7: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
8: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुन।

हेलो हेलो मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। फ्राइडे की सुबह है, 10 जुलाई की मॉर्निंग। दिस इज ब्रांड न्यू मॉर्निंग यार, अच्छे गाने लगा रहा हूँ। मौसम बहुत औसम है। मैं काम करता हूँ, मौसम जरा देखकर आता हूँ। बाहर झमाझम बारिश तो नहीं हो रही है, तब तक अभी गाना

ब्यूटीफुल ट्रैक, वेलकम बैक हियर वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अच्छे गाने से ही माहौल अच्छा हो जाता है, और फिलहाल आप लोगों के मैसेज ने भी माहौल को जो है थोड़ा सा और अल्टीमेट बना दिया है। थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे प्यारे मैसेज पहुंचाने के लिए। सारे लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज किए ना सुबह सुबह। 9:14 का समय हो रहा है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद। चलिए अब आपके दिमाग के बत्ती गुल मीटर चालू करने का टाइम हो गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन है एंड आई डोंट नो कितने लोगों को इसका जवाब पता होगा। सीरियसली आई हैव नो आइडिया, बट सी आज की मॉर्निंग आई वांट टू आस्क यू दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा नॉलेज इंप्रूव करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा जीके वाला क्वेश्चन है। जो लोगों को जीके में इंटरेस्ट है, आई एम श्योर उसका रिप्लाई डेफिनेटली कर देंगे। एंड दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेडियो के पास जरा कान को लगाओ अपने, वेरी गुड, वॉल्यूम बढ़ा लो रेडियो की, वेरी नाइस। चलो, मेरा सवाल आज का बहुत सिंपल है, आपको मुझे बताना है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। कितने लोगों को पता है जरा देखता हूँ। न न न, गूगल नहीं करने का, दिमाग लगा के बताने का, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अपने अपने जीके में। डेफिनेटली जनरल नॉलेज आपको अगर है तो आप इसका आंसर कर दोगे मुझे। फटाफट से आप मेरे को व्हाट्सएप करके बताइएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। कितने लोगों को पता है आज, मैं डेफिनेटली यहाँ पर पता कर लूंगा अभी कितने लोगों का दिमाग कितना तेज है। मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूँ, क्लू भी दूंगा थोड़ी देर में, पहले उससे पहले जरा देख तो लें, क्या पता आप लोगों को पता हो यार। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। सुबह सुबह आपके दिमाग की कसरत कराने का काम है मेरा, इसीलिए मैं ऐसे सवाल लेकर आता हूँ ताकि आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डालो, थोड़ा सा जोर डालो, और आपका दिमाग थोड़ा तेजी के साथ काम करे, है ना। दिमाग की कसरत कराना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज की सुबह। आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करके जरूर बताइएगा कि भैया आनंद ने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है। आनंद जी, मैं आपसे वही जवाब जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये आप मुझे मैसेज करिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम, और अभी आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। देश दुनिया में क्या चल रहा है ये भी हम आपको फटाफट बता देते हैं जी। हमारा काम है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।

आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में अपने यूपी में कई जिलों में भारी बारिश की वजह से 12वीं तक के स्कूल जो है वो बंद है। यानी कि आज की सुबह मैं अगर बात करूं 10 जुलाई की सुबह, तो मुरादाबाद में तो बंद है ही, 12 तक की स्कूल्स की छुट्टी तो है ही, लेकिन बहुत सारे अलग अलग ऐसे जिले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के इस भारी बारिश को देखते हुए जो है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सभी स्कूलों की जो है छुट्टी कर दी गई है। तो भैया जो बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं वो मेरा शो एंजॉय करो यहाँ पर आराम से बैठकर। अच्छा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो ये ब्लू आधार कार्ड बनाया जा रहा है, बेसिकली ये ब्लू आधार कार्ड है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंड आपको पता है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल चावल है। भारत में चावल की खेती के लिए अनुकूल जलवायु उपलब्ध है। आपको बता दें चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और असम जैसे राज्य अग्रणी है, सबसे ज्यादा टॉप में जो है अपने भारत को, यानी कि विश्व का आप सोच सकते हैं भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादन करने वाला देश बना है। यार भारत की तो बात ही अलग है। अपने निवेश मित्र में आपके बारे में, आपको इसके बारे में कुछ पता है जो निवेश मित्र है? अगर नहीं पता है तो ये क्या है, इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। अभी बहुत कुछ होता है बताने के लिए, बस वही है कि समय थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन कोई नहीं, मैं फटाफट एक गाने के बाद लौट कर आता हूँ, फिर आपको इमीडिएटली बताता हूँ। ठीक है जी, क्या है ये निवेश मित्र? ठीक है, इससे यूपी में कारोबार करना थोड़ा सा इजी हो गया है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी फटाफट से आपको बताते हैं नई नई जानकारियां, आज का दिन क्यों खास है, आज कौन कौन से नेशनल इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं, कुछ जरूरी फैक्ट आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ फैक्ट मैं निकाल के लाया हूं जो स्टडी मैंने की है, मतलब मुझे ना बहुत क्रेविंग हो रही है कि मैं जल्दी से आपके सामने रख दूं, लेकिन थोड़ा सब्र के साथ। फिलहाल स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:19, आप जुड़ चुके हैं आनंद के साथ, ये है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन। This is FM Muradabad 89.6, आपके शहर का अपना देसी रेडियो, फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। आप सुन रहे हैं आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें
6: 705 0705। इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

क्या बात है, जब आनंद के साथ है तो नाचना तो जरूरी बनता है मेरे दोस्त। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 10 बज के, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं 10 तारीख है आज, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 9:25 हो रहे हैं। बिल्कुल मैं जागा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सो रहा हूँ, एंड मैं आपको भी बिल्कुल झटका नहीं दूंगा यार। इतना लुगुल हो यार 10 बजे, अरे भाई आनंद कर क्या रहा है, 9:25 हो रहे हैं, बहुत सारा 10 तारीख है, नॉट अभी 10 बजने बहुत टाइम है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 9:25 हो गया स्टेशन क्लॉक का टाइम, एंड एक अच्छा सा गाना आपका वेट कर रहा है, और जैसे ही गाना खत्म होगा मैं आपके साथ तुरंत जुड़ जाऊंगा कुछ लेटेस्ट कड़क अपडेट के साथ। बहुत सारी बातें हैं जो आप तक मुझे पहुंचानी है, और बहुत सारी लेटेस्ट खबरें हैं जो मुरादाबाद से जुड़ी है, अभी फटाफट से मुझे आप तक पहुंचानी है स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आप फटाफट से जो है बस ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ। ऐसे ही अगर आपके आसपास कुछ अच्छी और बढ़िया चीज हो रही है जो आपको लगता है कि रेडियो पे डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए आनंद के साथ, तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए 9837896896 पर। ये स्टूडियो का नंबर, इस नंबर पे आप मुझे बिना किसी देरी के जल्दी से जो है अपनी प्यारी प्यारी बातें जो आपको लगता है कि यार ये तो डेफिनेटली आनंद तक पहुंचनी चाहिए, तो आप मुझ तक पहुंचा दो। हम इंतजार कर रहे हैं आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो लोग कोशिश करते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और आप भी अपने अंदर के जज्बे को, जुनून को जगाइए और करते रहिए, अपने अंदर से एक खुद को मोटिवेशन वाला जो डोज है वो देते

ये बहुत जरूरी है यार, क्योंकि जब तक आपका जिया अग्री नहीं होगा ना किसी भी काम को निकले तो मजा नहीं आएगा। अपने जिया को, अपने दिल को, अपने अंदर के जिगर के टुकड़े को स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकलो यार। आज की सुबह अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द फिल्म जब तक ये जान से जिया।

0: सॉन्ग यार, क्या एनर्जेटिक गाना है। ओ जिया रे जिया रे, आहा जिया जिया। इतनी बार जिया बोला है ना इस लड़की ने, मैं खुद नहीं गिन पाया। आहा, कहाँ है ये जिया? क्या बात है यार, इतना इंटरेस्टिंग गाना था यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ गाने इतने बढ़िया होते हैं ना जिनको सुन के मजा ही आ जाता है। वेलकम बैक है वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद को सुन रहे हैं। और फिलहाल जरा काम की बातें कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी है ना, बहुत जरूरी है काम की बातें करना। लेकिन अभी ना एक वॉइस नोट आया, फटाफट से पहले ये भी सुन लेते हैं और फिर मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी हेलो,
1: ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी,
0: शफी जी स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी,
1: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू
0: सर?
1: मंडे टू सैटरडे आरजे आनंद के साथ बिंदास मॉर्निंग,
0: क्या बात है,
1: सुनते रहो 89.6 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, आनंद जी से नई नई जानकारी लेते रहो।
0: क्या बात?
1: कुछ लाइनें सुना रहा हूँ
0: जी, प्लीज।
1: वक्त बदलता है जिंदगी के साथ,
0: वाह,
1: जिंदगी बदलती है वक्त के साथ,
0: क्या बात है।
1: वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। थैंक यू सर, वाह वाह,
0: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया सर, सच्चाई से रूबरू करा दिया सुबह सुबह आपने। है देखो भाई साहब, मैंने इनको कोई पैसे वैसे नहीं दिए थे, लेकिन इन्होंने जो है ना अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचा दी। और मैं ये बातें ना आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन है, कुछ बढ़िया बातें हैं, तो उनको छुपा के मत रखो यार, उस टैलेंट को बाहर निकालो, मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो पे जुड़ो और अपने दिल के जज्बात, अपनी प्यारी प्यारी बातें, अपने प्यारे प्यारे जो भी आपके अंदर शेर व शायरी है, जो भी कुछ बढ़िया छुपा हुआ टैलेंट है, उसको जनता जनार्दन तक पहुंचा दो। प्लेटफॉर्म मेरा है, टैलेंट आपका है, फिर मिलके करते हैं कमाल धमाल, किस बात की टेंशन है यार। जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच यार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट से मैं पकड़ा देता हूँ, आपको जो है बहुत ज़रूरी है खबरों से रूबरू कराना। तो भैया आपको बता दें, आज आईफ्रीम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है एक बहुत ही अच्छी स्किल्स वाला एक कोर्स जो है बेसिकली वो फ्री में कराया जा रहा है और ये बिल्कुल निःशुल्क होगा। आपको बता दें, इसमें जो है अच्छी खबर ये है कि जो 12वीं पास है और जिनके बाद जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहे अपनी स्टडी, उनके लिए जो है इसमें 150 सीटें अवेलेबल हैं। 100 सीटें लड़कियों के लिए हैं, 50 सीटें लड़कों के लिए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली आईएफटीएम में पहुंच सकते हैं, वहां पर जो है रजिस्ट्रेशन है और आप डेफिनेटली जाइए। एंड 12वीं के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ आपके लिए है तो इसको आपने डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। तो ये आईएफटीएम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। एंड ये अपॉर्चुनिटी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए है जिनको फैमिली इशूज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो 12th के बाद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए अपनी स्टडी, तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छा और बहुत ही बेहतरीन यू नो चांस है आज की सुबह। इस कोर्स में टोटल 150 सीट्स अवेलेबल हैं गर्ल्स के लिए, मैं आपको बता दूँ 100 सीट्स अवेलेबल हैं एंड 50 सीट्स जो हैं वो हमारे बॉयज के लिए हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको इसमें इनरोल करना चाहिए, अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड इनरोल करो यार, बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ों में नेकी और पूछ नहीं होनी चाहिए, है ना। फिलहाल के लिए ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे फटाफट से कड़क अपडेट मिली, जोरदार तालियां टीना, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आगे बढ़ते हुए आपको वक्त बता देते हैं, 9:35 हो गए हैं और घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं, डैड अभी रेडियो पर बजा दो ना थोड़े से ऐड। तो भैया आप कहीं मत जाइए, एक छोटे से ऐड ब्रेक के बाद मैं जल्दी से वापस आता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, डोंट गो एनीवेयर।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
8: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

सुगन नौटियाल की आवाज में अभी आप एंजॉय कर रहे थे बेहतरीन ट्रैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बताते हैं स्टेशन क्लॉक में वक्त हो रहा है इस वक्त भाई साहब 9:42। आपको फटाफट से बताते चलें, सीएम योगी यानी कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी, उनकी तरफ से एक जो योजना चलाई जा रही है माय युवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 21 से 40 वर्ष युवाओं को बिना गारंटी के 5,00,000 का लोन जो है वो मिल रहा है, जिससे आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही प्यारी योजना ये इसके अंतर्गत जो है आप एनरोल कर सकते हैं। और इस योजना का जो मेन पर्पज़ है, मेन मकसद है, वो ये हुई कि भैया अपनी जो युवा है, इसका जो मेन मोटिव है, अपने जो यूथ है आज का, वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने खुद के जो एक सपने हैं, जो एक अपना खुद का एक ड्रीम लेके बैठे हैं कि मुझे खुद का अपना एक व्यापार करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उनके लिए एक बहुत ही ग्रेट चांस है। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है चेक इट आउट कर सकते हैं गूगल पर जाके, माय युवा योजना के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। एंड ऐसी बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए चला रही, बस वही है कि सही जानकारियां अगर मिल जाए तो सब कुछ सॉलिड और ईजी हो जाता है ना। क्या अब टेलीकॉलर पर होगी और भी मतलब जो है इन्फॉर्मेशन, आपको अलर्ट वाली जो एक नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगी? आपको बता दें ज़रूरी बैंक या सरकारी कॉल्स अब स्पैम नहीं दिखाएगा। हाँ जी, ट्राय ने प्रस्ताव दिया है, आपको बताते चलें भैया कि 140 टेली मार्केटिंग एंड 1600 बैंकिंग सरकारी सेवाएं सीरीज नंबर को कॉल मैनेजमेंट ऐप्स और जिससे ट्रू कॉलर स्पैम के तौर पर ना दिखाया जाएगा। मतलब जो लोग ज़रूरी कॉल लगता है कि उन्हें मिस नहीं करनी चाहिए वो डेफिनेटली नहीं होगी। और मुझे लगता है कि जो स्पैम से जो लगातार मार्केट में नए नए फ्रॉड साइबर ठगी हो रहे हैं, इससे बचने के लिए बहुत सारे फंडे हमारी गवर्नमेंट उठाती रहती है। कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल साझा ना करें। बैंक कभी भी आपका पर्सनल OTP नहीं मांगता है, कोई भी पर्सनल दस्तावेज आपसे नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी रॉन्ग नंबर से कॉल आता है और वो आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपका आधार नंबर, आपका OTP नंबर या आपका कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा यू नो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज उसे आप शेयर ना करें। बहुत जरूरी है सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि ये एक गलत मैसेज पहुंचा सकती है, उसको भी आप फॉरवर्ड करने से बचें। वेलकम बैक है वंस अगेन। ये बताना तो मैं भूल ही गया था कि भैया अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये ब्लू आधार कार्ड क्या है बेसिकली। तो आपको बता दें ये क्या है ब्लू आधार कार्ड। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ब्लू आधार कार्ड बनाया जाता है, स्कूल एडमिशन और कई सरकारी कामों में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक स्कैन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ बच्चे की फोटो और बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें जो है ऐड होती है और इसकी जो वैधता है वो 5 साल तक की होती है। 5 साल पूरे होने पर बायोमेट्रिक अपडेट कराकर आप नया आधार बनवाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ब्लू आधार आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे आधार कार्ड को बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं और आप इस आधार कार्ड को रेगुलरली आधार कार्ड की तरह भी 3 तरीकों से डाउनलोड कर सकते हैं। नए आधार ऐप के जरिए या फिर UIDAI की वेबसाइट से जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आधार ऐप जो है आप बहुत इजीली प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर अभी तक आपने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ये जो माय आधार ऐप है इसको इंस्टॉल कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये ऐप, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। चलिए, तो अगर आप ब्लू आधार कार्ड अपने बच्चे का बनवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनवाए तो प्लीज़ बनवाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे संदेश मेरे पास लगातार पहुंच रहे हैं आप लोगों के, थैंक यू सो मच। एक कड़क क्वेश्चन है जो मुझे आप तक पहुंचाना है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। अगर आप भी हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, कोई बढ़िया गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप करिए 9837896896 पे। हमें इंतजार है आपके प्यारे मैसेजेस का। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सुबह मैंने आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था, आपके दिमाग की बत्ती कुल मीटर चालू कर रहा था मैं, आपके घोड़े दौड़ाने के लिए दिमाग के। मैंने कहा था विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, कितने लोगों को पता है? आपको बताएं, आपको बताएं, आपको बताएं, मैसेज करो फिर मुझे बताओ, अभी भी मौका है आपके पास। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, मैसेज करो अपने नाम के साथ अपना सही वाला जवाब, मैं इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है फ्राइडे की सुबह, जुमा मुबारक हो, वही गुड मॉर्निंग आनंद के साथ हैं आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, आने वाला गाना एंजॉय कीजिए, स्ट्रैक हो।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला।
2: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
6: आप सुन रहे हैं
7: बिंदास मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं कुछ और खबरें हैं और एक कड़क सवाल है जिसका जवाब आपको यहाँ पर पहुँचाना होगा यानी कि मेरे शो पर। टाइम ट्रेवल आने वाला ट्रैक, दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग ट्रैक यार। ये गाना मेरा तो बड़ा ऑल टाइम फेवरेट है, आप में से बहुत लोगों का होगा आई एम श्योर।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो वेलकम बैक है जी। कहाँ हैं आप? मैं यहीं पर हूँ, आप कहाँ हैं आप बताएं? आप दिल्ली रोड हैं, स्टेशन रोड, या फिर आप हैं जीरो पॉइंट की तरफ? आप कहीं भी हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को। हाँ जी, 10 बजने को है स्टेशन क्लॉक में। फिलहाल आज का मेरा कड़क क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए निकल चुका है स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अगर आपने मेरे पहले सवाल का जवाब दिया था तो आपके लिए जोरदार तालियां। बहुत सारे लोगों ने एकदम ब्रिलियंट वाले सही सही जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप लोग कमाल कर देते हो यार। थैंक यू वेरी मच। अभी मेरा ये लास्ट सवाल है, जो लोग पहले वाले में रोल नहीं कर पाए, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन लोगों ने जस्ट अभी रेडियो ट्यूनिंग किया है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, शो है बिंदास मॉर्निंग। मेरा एक कड़क क्वेश्चन होता है, एक चुटकी सॉन्ग, इसमें एक छोटा सा गाने का बीच का पार्ट प्ले करूं, कौन सा गाना है ये आइडेंटिफाई करना है।
1: दिल पे चलाना जब जोर कोई, तो मेरे पास आ गई।
0: सा गाना है ये आपने मेरे को मैसेज करके बताना है। बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक है, बहुत ही प्यारा गाना है। ऑफ कोर्स आप कई बारी मेरे शो पे तो डेफिनेटली इसको सुनते हैं आप। अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
1: दिल पे चलाना जब जोर कोई, तो मेरे पास आ गई।
0: चलो जी, अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट वाला आंसर। यस, ये जो गाना चल रहा है अभी मेरे बैकग्राउंड में, ये कौन सा गाना है? पूरा गाने का नाम आपने मेरे को बताना है। बहुत ही अच्छा गाना है, आपने उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, है ना, उसके बाद अपने शहर का नाम, विच सिटी, कहाँ से हैं आप। आज की सुबह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप इमीडिएटली व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम के साथ, जल्दी से मेरे को सही वाला जवाब 9837896896 पे नंबर मैंने बता दिए। सवाल फिर से सुन लो।

0: सा गाना है, जरा जल्दी से मेरे को बताना है, व्हाट्सएप करो फटाफट से 9837896896। गानों में बड़ी नॉलेज शॉलेज है हमारे लिसनर्स को, मेरे को पता है डेफिनेटली आप बता दोगे, और वो बहुत ज्यादा टिपिकल भी नहीं है आज की मॉर्निंग, बट अगर आपको पता है तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से व्हाट्सएप करो, हो सकता है आज की सुबह आप जीत जाओ ढेर सारी तालियां और बहुत सारा आज का ये पूरी जनता का प्यार।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: अरे आनंद इज बैक।
0: चलो जी इंतजार कर रहे हैं हम आपके मैसेजेस का, फिलहाल एक अच्छा सा गाना प्ले कर रहा हूँ आपके लिए इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जल्दी से इस गाने के बाद लौट कर आता हूँ। फिलहाल घड़ी घड़ी घड़ी वक्त बता रही है सुबह के 10 बज चुके हैं।

0: गाने सॉन्ग क्या है, मधुमंती बागची की आवाज, आजाद फिल्म का गाना भी आप एंजॉय करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी गाने के साथ। वेलकम बैक है, 10:04 हो गए स्टेशन क्लॉक में, एंड ऑफ कोर्स अभी छोटे से एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, उसके बाद जल्दी से मैं वापस आ रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फटाफट से आप ट्यून इन रहिए मेरे साथ।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
0: चलिए फिलहाल एड ब्रेक का एंड हो गया है यहाँ पर, और अभी हमारी एंट्री तो हो ही गई है। 10:06 हो गए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने आज की मॉर्निंग, एंड आपको बस कुछ भी नहीं करना था, इस गाने को आइडेंटिफाई करना था। बहुत ही प्यारा ट्रैक है, ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी और खूबसूरत आवाज में जो है शानू दा ने गाया है।

इतना ब्यूटीफुल ट्रैक है यार, आप लोग गेस नहीं कर पा रहे हो, मतलब आई कॉन्ट बिलीव दिस, इतना अच्छा गाना है, इतना ब्यूटीफुल नंबर है यार, इतनी बारी आप सुनते हैं, कैसे आप भूल सकते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। एनीवेज, अगर अभी भी आपको याद नहीं आया तो याद कर लो यार, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, एक बार फिर से देखो, चला रहा हूँ आपके लिए, शायद कुछ समझ आ जाए। दिल

चलो जी, भी बस इतना ही काफी है, सफिशियंट है आज के लिए। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो वेरी गुड। वैसे बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं मेरे पास यार। मुझे पता है आप लोग डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड रहते हैं इस गेम के लिए। एक चुटकी सॉन्ग जहां पर आपसे छोटा सा गाना बजाकर आपके दिमाग का टेस्ट लिया जाता है कि बॉलीवुड की नॉलेज कितनी है यार, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है यार। नीरज श्रीधर अनुमली का म्यूजिक ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए निकल गया है, कम वक्त इश्क का ये गाना। शायद अब मुझे कोई मैसेज कर दे, मैं किसी के मॉर्निंग को बनाता हूँ सुपर डुपर लाउड। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं भैया, महान सिख योद्धा और महाराजा रणजीत सिंह की जो सेनापति सरदार हरि सिंह नलवर की जो एक भव्य प्रतिमा है, वो शहर के पीएससी तिराहे पर नगर निगम ने जो स्थापित की है, अगर आप पीएससी की तरफ जाएंगे तो आपको बड़ी सुंदर सी एक मूर्ति जो है वो दिखाई देगी। जी हाँ, सरदार हरि सिंह जी की ये मूर्ति यानी कि उनकी जो प्रतिमा है वो पीएससी चौराहे पर अब आपको दिखाई देगी। अगर आप इधर से निकल रहे हैं तो जरा एक नज़र डाल लीजिएगा, हो सकता है तो एक पिक्चर भी कैप्चर करिएगा। बहुत ही खूबसूरत लग रही है पीएससी पर ये जो लगाई गई है प्रतिमा। मुरादाबाद की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। 12 जुलाई को 20.45 लाख से अधिक जो है पौधे लगाए वन विभाग की तरफ से। जो है आपको बता दें, आने वाली 12 जुलाई को ये पौधारोपण होने वाला है, जिसमें इतने सारे पेड़ एक साथ लगाए जाएंगे। आई कॉन्ट बिलीव दिस यार। मैं कह रहा हूँ आप नहीं पहुंच पा रहे कहीं पेड़ शेड़ लगाने, आप घर में ही पौधे लगा लो यार। वैसे इस मॉनसून में एक पेड़ तो डेफिनेटली लगाना बनता है यार, है ना। चलो मैं फिलहाल लेकर आता हूँ एक लकी कॉलर को।

0: चलो भैया मेरे जाने के समय 10:12 हो गया है। खुशी आ चुकी स्टूडियो में। भैया पूरा माहौल सेट कर देता हूँ मैं ना, मजा आ जाता है ना, आपको कसम से बता रहा हूँ, मजा आना चाहिए आपको। आए, गाने चुन चुन के लेकर आता हूँ आज की सुबह। कौन है हमारे साथ? हाय गुड मॉर्निंग जी, नाम बताएं। हाय टीना, हाउ आर यू? हाउ आर यू, कैसे हो आप? वो सबको पता है।
1: मैं ठीक हूँ। ओके,
0: कहाँ जा रही है? वेयर आर यू राइट नाउ?
1: मैं अभी ड्राइव जिम के लिए जा रही हूँ।
0: अच्छा ओके, ऑल राइट अभी आप ऑन द वे हैं कॉलेज के लिए निकल रहे हो?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: वेरी नाइस। वैसे बताओ मौसम कैसा हो रहा है बाहर?
1: मौसम तो अच्छा हो रहा है फिलहाल। कल तो बारिश हो रही थी, आज तो बारिश नहीं है, वैसे बहुत अच्छा हो रहा है।
0: ओके, मतलब धूप धाप तो नहीं है ना फिलहाल?
1: धूप नहीं है, छाव है।
0: चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे मौसम में मजा भी आता है बाहर निकलने में ना फिर?
1: हाँ?
0: ऐसे मौसम में बाहर जाने में अच्छा भी लगता है। एब्सोल्युटली। तो मुझे बताओ जरा, जो अभी मैंने वो बीच में एक छोटा सा गाना प्ले किया था, वो कौन सा गाना था?
1: मेरा मेरा प्यार।
0: पक्का?
1: हाँ जी।
0: बहुत बढ़िया। आपने कितनी बार इसको सुना है?
1: एक दो बार सुना है, क्योंकि पुराना सॉन्ग है ना, मुझे पुराने सॉन्ग सुनते
0: हो। ओ, तो आप बहुत बहुत ध्यान से आप जो है डीकोड करती हो गानों को, है ना? बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन टीना, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप चलते चलते बात कर रही हूँ, मैं आपसे ज्यादा बात करूंगा नहीं। थैंक यू सो मच, मुझे मेरे कॉलेज वाला याद आ गया मोमेंट। हम भी स्कूल जाते जाते सुनते रहते थे गाने साने के, हेडफोन लगा के रेडियो।
1: सुबह उठते आपका रेडियो, मतलब रेडियो।
0: लेकिन सच बता रहा हूँ, वो स्कूल जाते टाइम जो रेडियो सुनने की मजेदारी वाली वाइब है ना, वो अलग ही है ना। थैंक यू।
1: तो सुबह मैं काम करती रहती हूँ, आपका रेडियो सुनती हूँ, बस आपका शो अच्छा लगता है बहुत।
0: थैंक यू, मजा आता है, मॉर्निंग होती है बिंदास या नहीं?
1: बहुत ज्यादा।
0: चलो बहुत अच्छा लगा मुझे ये टीना सुनकर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। क्या चल रहा है कॉलेज में? भी
1: कॉलेज में अभी हमारे पीएम मोदी जी की तरफ से कोर्स आया है।
0: अच्छा,
1: मतलब UPSDM।
0: ओके,
1: फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। मतलब हमें रोजगार देता है, ये रोजगार योजना के तहत चल रहा है। ये उन बच्चों के लिए जो कि मतलब अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर सकते, उनके लिए तो है ही है। वैसे ही सब लोगों के लिए इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। और जैसे कि आपने बताया था अभी, मतलब इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, ये फोर टू फाइव मंथ का है।
0: ओके ओके,
1: इसमें आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। जैसा मेडिकल का कोर्स है, इसमें थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। पहले थ्योरिकल आपको लिखवाया जाएगा, फिर उसका प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा।
0: वेरी नाइस है, वेरी नाइस।
1: इसमें CPR वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है आपको, कि किस कंडीशन में पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, वो सब आपको सिखाएंगे इस कोर्स में।
0: वेरी नाइस।
1: तो मुझे लगता है ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मतलब
0: बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है, बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव है, डेफिनेटली इसमें एनरोल करना चाहिए। थैंक यू टीना, आप निकल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहीं जा रहे हो। ओके ओके, ठीक है टीना, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय बाय बाय।

0: जाने का समय हो गया है दोस्त, मैं यहाँ से निकलता हूँ, कल सुबह फिर मिलेंगे हम सैटरडे सुबह में। 10:15 हो गए अभी के लिए, आई सी यू टुमारो मॉर्निंग। अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू वंस अगेन एवरीबॉडी। इतने सारे मैसेज थे, सब लोगों ने एकदम सही सही जवाब दिए हैं, बहुत सारे गलत जवाब भी हो गए, आप क्या ही कर सकते हैं। गाने को जो है यहाँ पर छोड़ के जाऊंगा आप सभी के लिए, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे और ऐसे ही रेडियो बजाते रहेंगे।
1: राधे राधे
0: जी। राधे राधे मैम।
1: आनंद जी, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो
0: एब्सोल्युटली,
1: और आपका प्रोग्राम सुनने से ये फायदा होता है कि हर तरीके की जानकारी मिल जाती है।
0: अरे वाह,
1: आप न्यूज एकदम अपडेट रहता है।
0: अरे वाह,
1: कि मेरे शहर में, मेरे प्रदेश में क्या क्या
0: चल रहा है,
1: हो रही है,
0: क्या चल रहा है,
1: हेल्थ के बारे में भी जो आप टिप्स देते हैं बहुत ही अच्छी टिप्स रहती है।
0: अरे वाह, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना, मतलब वो एक लीटर खून बढ़ा दिया ये बोल के, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि अब एक समोसा एक्स्ट्रा खा ही लूंगा, अब नहीं बोलना मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। लक्ष्मी जी सही जवाब के साथ जुड़ रही हैं लाइन पार से। राजा कश्यप जी जुड़ रहे हैं सही जवाब के साथ, हमारे साथ जुड़े हैं ईदगाह से शफी अहमद अंसारी, बबली अनजान, गीता कश्यप जी जुड़े हैं मेरे साथ, राधे राधे पहुंचाते हैं, शबीना खान जुड़ी है मेरे साथ सही जवाब के साथ, रणवीर जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज की सुबह बिल्कुल सही जवाब के साथ। रणवीर जी थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं, इन्होंने भी मेरे को सही जवाब दिया है। आई एम जानवी, हाय जानवी, गुड मॉर्निंग। हेलो आरजे आनंद, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, कश्मीर से मैसेज आया है। सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीज मेरे साथ जुड़े हैं, एंड दुर्गेश सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की मॉर्निंग। बाकी और भी ढेर सारे लिसनर्स जुड़ते जा रहे हैं, जिन लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा उसके लिए माफी चाहता हूँ। बेबी राधिका एंड साथ में हमारे साथ जुड़ी है, ये गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, सही जवाब के साथ जुड़ गए आज की मॉर्निंग। एंड ये मेरे पास जरीफ बाबू का मैसेज पहुंचा है सही जवाब। मोहम्मद कामिल जी जुड़े हैं रामपुर से, रेडियो वाला आनंद को विकी सागर गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मुझे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मैसेज आ रहा है, टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा एंड प्रतीक मल्होत्रा का गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। साथ में सही जवाब पहुँचा रही है ललिता कश्यप नवीन नगर से, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह। गाइस ऑल द वे बेस्ट, अभी के लिए मेरा टाइम हो गया यार, कल मिलते हैं ना, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखो। टेक्स्ट मैसेज आ गए, ये भी पढ़ने जरूरी है। हेलो सर गुड मॉर्निंग, आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है, माय नेम इज धीरज, हाय धीरज गुड मॉर्निंग। हेलो हाय गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, कैसे हालचाल है, सूरज पाल दत्त बात कर रहा हूँ, हाय सूरज गुड मॉर्निंग। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रेरणा आनंद, हाउ आर यू डूइंग, आपकी वॉइस अच्छी लगती है, आई एम गुड थैंक यू मैम। चलो गाइस बाय, कल मिलते हैं, अपना खूब सारा ख्याल रखें, एंजॉय करते रहिए, ओके। आरजे आनंद कहता है अभी के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग, बाय।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
5: सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
2: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
0: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना डर के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है आपके? फ्राइडे मॉर्निंग है, उम्मीद तो यही है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। एक नई सुबह, नई उम्मीद और एक फ्रेश बिगनिंग के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, फाइनली वीकेंड आ चुका है, यानी वीकेंड की वाइब्स शुरू हो चुकी हैं और मौसम भी इतना खूबसूरत हो तो दिन अपने आप स्पेशल बन जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादलों ने ना आसमान को अपनी बाहों में समेट रखा हुआ है और कभी कभी हल्की हल्की बारिश हो जाती है तो कभी बारिश रुक जाती है। सच कहूँ ऐसा मौसम दिल को ना रिफ्रेश कर देता है, क्यों दोस्तों? और आज का अब समय है एक प्यारे से थॉट ऑफ द डे का। लोग कहते हैं दोस्तों कि दुख बुरा होता है क्योंकि वह हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख भी अच्छा होता है क्योंकि वह हमें अपने और पराए का ना फर्क पता जाता है। लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि हमें लाइफ का हर एक्सपीरियंस चाहे अच्छा हो या फिर मुश्किल, हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। इसीलिए सिचुएशन को ना एक लेसन की तरह ही स्वीकार करना चाहिए दोस्तों। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग और हमेशा आगे बढ़ते रहिए क्योंकि हर एक पल, हर एक सिचुएशन जो हमारे साथ होती है तो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। अगर लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और उसे नेगेटिव ना लेकर उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, कुछ अच्छा सीखिए क्योंकि हर एक पल हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। और बाहर का मौसम बहुत ही औसम है, खुशी यहाँ पर हाजिर है। वक्त मैं बता देती हूँ, 10:32 हो चुके हैं और आज का शो हमारा बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही यूनिक होने वाला है। कुछ चीजें भी हम आपसे मालूम करने वाले हैं, या कुछ खास है धीरे धीरे आपको पता लगेगा। आप क्या चाहते हैं खुशी, एक बार में सब कुछ बता दे? ना, खुशी चाहती है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। और एक ब्यूटीफुल ट्रैक आज की मॉर्निंग मैं आप सभी को यहाँ पर डेडिकेट करती हूँ, आपके लिए प्ले करती हूँ, आप एंजॉय कीजिएगा क्योंकि बाहर का मौसम भी बहुत प्यारा है, छाँव है और ये गाना तो आज की मॉर्निंग बनता है ना। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल लिसनर्स।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
7: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है RJ खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद RJ खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का वंस अगेन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और आप सभी का फेवरेट शो लेकर हाजिर है मॉर्निंग मसाला। दोस्तों, वक्त हुआ है अभी राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में 10:48 और हमारे श्रोताओं के बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं सभी के, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, आज का मेरा सुबह सुबह ना कुछ जो मेरा माइंड है ना वो बड़ी खुराफाती करता है, तो मैंने सोचा कि आज की सुबह क्यों ना अपनी मुरादाबादी से एक क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत इजी सा है। एंड दोस्तों चलिए मुझे बताइएगा, आज का मेरा सवाल है, अगर आपके घर मुरादाबाद में कोई स्पेशल गेस्ट या कोई रिश्तेदार, हाँ जी, बाहर से आपके मुरादाबाद घूमने के लिए आए, तो आप सबसे पहले उन्हें घुमाने कहाँ पर लेकर जाएंगे? क्या मुरादाबाद की कोई ऐसी जगह है जो आपके दिल के बहुत करीब है? बताइए बताइए दोस्तों, आपके घर अगर कोई स्पेशल गेस्ट आए तो आप उनको मुरादाबाद में कहाँ घुमाने लेकर जा सकते हैं, जो जगह आपको बहुत ज्यादा पसंद है? अब आप बताइए, इससे अच्छा और रिलेटिवल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगा कि मुझे मालूम करना चाहिए, अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उनको कहाँ घुमाने लेकर जाते हो, और ये क्वेश्चन मेरा है जो मुरादाबादीज हमारे लोकल के सुन रहे हैं इस वक्त हमें, तो मुझे बताइएगा एवरीवन, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं जो मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे भी मालूम हो जाएगा और जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मुरादाबाद ही नहीं, मुरादाबाद के बाहर से भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, वो कभी मुरादाबाद अगर विजिट करें तो उनको जगह के बारे में मालूम होगा, तो शायद वो भी घूम सकते हैं। तो फटाफट से अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर मुझे पहुंचाइए। क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और आज बहुत कुछ स्पेशल है एवरीवन, सब आपको पता लगेगा यहाँ पर, लेकिन कुछ और मैसेज यहाँ पर आ चुके हैं तो उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया विकास नगर से पूजा जी का, और ये कहती है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, कहती है कि मौसम बहुत ही प्यारा है मैम, कभी तो बादल हो जाते हैं तो कभी बारिश हो जाती है हल्की हल्की, कभी थम जाती है तो कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, और ऐसे मौसम में ना मैम मुझे एक प्यारा सा ट्रैक सुनवा दीजिएगा, स्पेशली बारिश का गाना, कोई भी जो आपको पसंद हो। पूजा, एक गाना है बहुत ही प्यारा सा जो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि वो आपको भी पसंद आएगा, बट अभी नहीं सुनवाने वाली हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो यार। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, नेक्स्ट ये मैसेज हमें मिला है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, कार्ट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। कहते हैं, राधे राधे खुशी मैम, कैसी हैं आप? सब बहुत अच्छे हैं, आपके ब्लेसिंग्स हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर मुरादाबाद से, रणवीर सिंह जी का मैसेज आया है, खुशी मैडम जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है विकी सागर जी का मुरादाबाद से, कहते हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कल तो आपसे हमारी बात हुई थी। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है रामपुर से शबनम जी का, साथ में राहत अली जी हैं, नेहा भी हैं और लाइबा काजमी भी हैं। कहते हैं, खुशी मैम कैसी हैं आप? देखिए, खुशी तो हमेशा खुश रहती है और वो पूरी कोशिश करती है कि आप सभी को भी ढेर सारी खुशियां दे, हैप्पीनेस दे, आपकी मॉर्निंग को ब्यूटीफुल बनाए। और इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं कि मिल जाते हैं, मिल जाती है कितनों को खुशी, मिट जाते हैं कितनों के गम, मैसेज इसलिए भेजते हैं हम ताकि ना मिलने से भी अपनी दोस्ती ना हो कम। अरे वाह, क्या बात है शबनम जी, आप तो, आप सब हमारे दिल के करीब हैं, तो कैसे दूर हो सकते हैं? हाँ, नजरों से भले ही दूर हो लेकिन दिल के बहुत पास हैं हम आपके, बस आप यूं ही ऑलवेज मुस्कुराती रहिए। और दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपके घर अगर कोई गेस्ट आते हैं घूमने के लिए तो आप मुरादाबाद में सबसे पहले उनको कहाँ घुमाने लेकर जाते हैं, कोई ऐसी जगह जो आपके दिल के बहुत करीब है, अक्सर आप भी वहाँ जाते हो और जो भी मेहमान आपके घर आते हैं उनको भी आप वहाँ पर लेकर जाते हो? फटाफट से जवाब पहुँचाइए एवरीवन, मैं वेट कर रही हूँ आपका, इंतजार कर रही हूँ, और इतना इंतजार मत कराओ, जल्दी से मैसेज पहुँचाइए।

0: तुम्हें को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।
1: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं
1: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।

बहुत ही ऑसम हो रहा है और सुहाने से मौसम में ना लाइक भीगने का एक अलग ही मजा है। लेकिन हाँ, भीगने के साथ साथ ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। पता चला कि आप भीग गए हो और पूरे दिन आप ऐसे ही गीले कपड़े में रहे हो। देखो, ऐसा नहीं करना है आपको, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा बहुत भीगना ठीक है, पर उसके बाद आपको क्या करना है, घर जाकर तुरंत फ्रेश पानी से, वाटर से नहाना है। उसके बाद आपको कपड़े चेंज करने हैं। और हाँ, आपने बालों को भी वॉश करना है, क्योंकि बारिश के पानी में ना अक्सर जब हमारे जो बाल है ना वो गीले हो जाते हैं, तो फिर बालों में ना इचिंग होने लगती है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं ना, उनको कुछ भी हो। मैं चाहती हूँ कि हमेशा आप फिट एंड फाइन रहें, हेल्दी रहें एंड स्माइल करते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जब आप सब खुश होते हैं ना तो खुशी को बहुत खुशी होती है। और मैं वक्त बता देती हूँ, स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं राइट नाउ, 11:04 हो गए हैं। और आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था कि दोस्तों, आपके घर जब कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं एंड आपके चाहे फ्रेंड्स हो या गेस्ट हो, मुरादाबाद स्पेशली जब वो आते हैं, तो आप उनको कहाँ घुमाने लेकर जाते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप उनको लेकर जाते हैं, जहाँ आप अक्सर जाया करते हैं, आपको पसंद है वो प्लेस तो मुझे बताइएगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे पास यहाँ पर विनीत जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से, कहते हैं कि मैम, जब मेरे घर कोई गेस्ट आता है तो हम जाते हैं चटोरी गली वेब मॉल, एंड बारिश हो रही है खुशी जी, और मैं ग्राउंड में हूँ। गुड मॉर्निंग विनीत चंदेल जी का मैसेज हमारे पास आया राइट नाउ। ओके, चलिए अच्छी बात है, टाइम पास करने भी जाना चाहिए घूमने के लिए। वैसे पता है दोस्तों, जब हम अकेले होते हैं कार में ड्राइव कर रहे हैं और रेडियो भी चल रहा है, वहाँ आरजीएस भी बातें करते हुए, बारिश भी हो रही है, भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही है चारों तरफ से, और नेक्स्ट गाना भी अगर हमारी पसंद का हो जाए तो सफ़र और सुहाना हो जाता है ना। तो मैं ही आपके सफ़र को सुहाना यहाँ पर बनाने के लिए आई हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल दिन है। देखिए, हर दिन स्पेशल होता है, लेकिन आज और स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का बर्थडे है। जी हाँ, बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं, उनका आज जन्मदिन है। बहुत ही पॉपुलर अभिनेता हैं, उनके साथ साथ आज बहुत सारे जो इस समय हमारे लिसनर सुन रहे हैं, सबकी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लिसनर हैं जिनका आज बर्थडे है। तो बताएंगे धीरे धीरे सब कुछ, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए एवरीवन। इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास अभी आया है यहाँ पर राइट नाउ कश्मीर से, एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं महराजुद्दीन जी। कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हम आपकी आवाज को बहुत मिस करते हैं। सर, मिस करने की जरूरत नहीं है, मैं एवरी मॉर्निंग आती हूँ ना, अगेन 3 से 5 भी आती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपने मैसेज हमें पहुंचाया। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में इनके दोस्त भी हैं रईस दुल्ला अंसारी जी, और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खुशी मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें अलीशा ने पहुंचाया है मुरादाबाद से। ओहो, ये गाना सुनना चाहती है, थम की बरस। भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है क्या बाहर? डियर, हमने मुरादाबाद की बात पूछी है, तो आप

मुरादाबाद के बारे में बताइए कि मुरादाबाद में ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा ऐसा पार्क है जहाँ पर आप अक्सर जाया करते हैं, आपको पसंद है और आप अपने गेस्ट को भी ले जाना चाहते हैं वहाँ पर? वो कोई भी जगह हो सकती है, बताइए मुझे। आप मुरादाबाद के लोग हैं और आपको ऐसे कैसे हो सकता है आपको पता ना हो मुरादाबाद के बारे में? हाँ जल्दी से बताइए। एक मैसेज और हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी परवली जी। कहते हैं, खुशी जी आपको आदाब, आपको भी आदाब सर। और ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, धन्यवाद सर। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी लौट कर आऊंगी, बताऊंगी कि आज बॉलीवुड के पॉपुलर जो एक्टर हैं उनका बर्थडे है, किनका बर्थडे है उनका नाम, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे, बताएंगे आपको सब। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो मेरा बहुत फेवरेट है एंड आपको भी पसंद आएगा।

हाँ जी दोस्तों, जमकी डांस किया ना आपने, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक अभी मैंने प्ले किया फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम से, एंड बहुत ही प्यारी सी आवाज और गाना भी बहुत ही प्यारा था ना दोस्तों। मैंने कहा कुछ गाने ना ऐसे प्ले करते हैं जो अपने श्रोताओं को ना थोड़ा सा थिरकने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया है तो थोड़ा सा बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है ना एवरीवन। देखिए वक्त हुआ है 11:17 और मैंने कहा था ना कि आज का डे भी बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, वो हर दिन अपने आप में बहुत ही प्यारा होता है और आज का दिन भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे लिसनर सनी का भी बर्थडे है। सनी हमारी पूरी एफएम की फैमिली की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुआ है कि आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, सक्सेस और ढेर सारे स्माइल से भरा रहे, आपके हर ड्रीम पूरे हो और हर नया डे आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए और आपकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी ना हो। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू सनी, आज ही खुशी की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ऑलवेज खुश रहें एंड लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं सब आपकी कंप्लीट हो जाएं। दोस्तों अगर आपका भी बर्थडे है तो आप हमें बता सकते हो। और दोस्तों मैं बात कर रही थी आज बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता के बारे में। तो हम बता ही देते हैं, अब आपको बहुत ज्यादा हमने इंतजार करा दिया है ना, तो अब इंतजार बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, अब डायरेक्टली आपको बता देते हैं हम। कि आज किनका जन्मदिन है और किनकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के उस कलाकार का जिन्हें लोग प्यार से संस्कारी बाबूजी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेता आलोक नाथ जी की, जिनका जन्म 10 जुलाई 1956 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। आलोक नाथ के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनका सपना था अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाना। दिल्ली के हिंदू कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSDC से अभिनय की शिक्षा ली और यहीं से उनके सुनहरे सफर की शुरुआत हुई। साल 1982 में ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी में उन्हें एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला। इसके बाद 1986 में दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक एक धारावाहिक पॉपुलर सीरियल था बुनियाद ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। उनकी शुरुआत करियर में उन्होंने रोमांटिक और नकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई, लेकिन असली पहचान उन्हें पारिवारिक फिल्मों में आदर्श पिता के किरदार से मिली। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ और विवाह जैसी फिल्मों में उनके निभाए गए बाबूजी के किरदार आज भी लोगों के दिलों में बस चुके हैं। सिर्फ फिल्मों ही नहीं दोस्तों, उन्होंने बल्कि टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक सपना बाबुल का, बुनियाद, ये रिश्ता क्या कहलाता है और यहाँ उन्होंने बहुत सारे दूरदर्शन लोकप्रिय रहा है, उस पर भी उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, काफी काम किए हैं और आप जानते हैं कभी खुशी कभी गम, विवाह मूवी में उन्होंने पिताजी का रोल कितना खूबसूरती से निभाया है और भी बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन उनसे पहले सुनवाते हैं आपको इन्हीं के ऊपर फिल्माया गया एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। दोस्तों ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। देखिए आज बर्थडे तो है तो बर्थडे सॉन्ग भी चलना चाहिए ना, क्या कहते हैं आप, चलना चाहिए। ठीक है तो चलिए एक सुनते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक। आज इतने सारे हमारे लिसनर्स का भी बर्थडे है और एक्टर का भी बर्थडे है तो प्यारा गाना बनता है फ्रॉम द मूवी
एबीसीडी टू से वरुण धवन, साथ में श्रद्धा कपूर, बहुत सारे एक्टर्स इसमें नजर आए हैं। तो ये गाना सुनते हैं, उसके बाद हम लौट कर आएंगे। बस आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने मैसेज मुझे पहुंचाइएगा। मोबाइल नंबर मैं बताती हूँ 9883789689।

0: 18 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

क्या बात है दोस्तों, सुबह सुबह देखिए हमने आपको गाने सुनवा दिया इतना प्यारा सा, और बहुत सारे श्रोताओं हमें जिस वक्त लिसनर सुन रहे हैं ना, उनका फेवरेट भी ये गाना रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो पर ना हर तरह के ट्रैक प्ले होने चाहिए, क्योंकि हर किसी की जो पसंद है वो अलग होती है और हम सब की पसंद का ख्याल रखते हैं। दोस्तों प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना, हम आपके हैं कौन से, और आज आलोक जी का बर्थडे है तो उन्हीं की फिल्म का ये प्यारा सा गाना, उन्हीं पर फिल्माया गया ट्रैक हमने आप सभी को सुनवाया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे मालूम किया था कि दोस्तों मुरादाबाद में अगर आपके घर कोई गेस्ट आपके आए या फ्रेंड्स आपके घर पर आए मुरादाबाद के बाहर से मुरादाबाद में, तो आप उनको कौन सी जगह घुमाने लेकर जाएंगे, कौन सी जगह ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है मुरादाबाद में। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है बड़ा ही प्यारा सा, एंड ये कहती है, हेलो खुशी मैम, कैसी हैं आप? मैम आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं आपको जवाब देती हूँ। ये पहले तो अपना नाम बताती हैं, शबीना खान जी का मैसेज हमारे पास आया है रहमत नगर मुरादाबाद से। कहती है मैम आप कह रही थी कि अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो आप कहाँ लेकर जाएंगी घुमाने के लिए? तो मैम हम उन्हें लेकर जाएंगे सात अजूबा पार्क। ओए होए होए क्या बात है शबीना जी, वैसे बहुत ही खूबसूरत है वहाँ पर। एक्चुअली मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ मेरे बिग ब्रदर गए हैं तो उन्होंने मुझे दिखाया वहाँ पर, उन्होंने वीडियो बनाया और वो लेकर आए। कहते हैं कि खुशी आप भी चलना घूमने के लिए, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, लेकिन घूमने का मन तो हर किसी का होता है ना। बट हाँ कल सैटरडे है तो ज़रूर जाऊँगी मैं घूमने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं सर का मैसेज हमारे पास आया है और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं सौरभ अग्रवाल, साथ में आकृति अग्रवाल जी का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से और ये कह रहे हैं हनुमान वाटिका एंड कंपनी बाग। ओके आप वहां पर अपने गेस्ट को लेकर जाओगे, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज किया आज की सुबह। और ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप इतने प्यारे हैं ना इसीलिए आपको हमारी आवाज पसंद आ रही है, क्योंकि जो इंसान खुद अच्छा होते हैं ना तो उनको सारे इंसान प्यारे लगते हैं। और इन्होंने एक ट्रैक रिक्वेस्ट में भेजी है टिप टिप बरसा पानी, चलिए सुनवाएंगे गाना भी।

एंड दोस्तों आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं, मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। और एक और ट्रैक है जो मैं अभी आपको यहाँ पर सुनवाने वाली हूँ, ये गाना आपको मुझे बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक और मैं आपसे मालूम करती हूँ, ठीक है? अभी मालूम कर लें या थोड़ा सा ब्रेक ले लें? चलिए अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, आपको अभी थोड़ा सा हम म्यूजिक की तरफ लेकर चलते हैं, एक गाना सुनवाते हैं, बहुत ही प्यारा सा है ये और बादशाह पाजी की आवाज़ में एक ट्रैक है, तो चलिए सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही स्माइल करते रहिए।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। खुशी आपके साथ है और मैं टाइम भी आपको बता देती हूँ, 11:46 हो चुके हैं, 11:46 राइट नाउ। टाइमिंग हो गया है, अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं मौसम की। जी हाँ, देश भर में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार आज दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित 18 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावनाएं जताई गई हैं। कई इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंकाएं हैं। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो तैयारी कर ही बाहर जाएं। ठीक है दोस्तों, छाता या रेनकोट साथ रखना बिल्कुल ना भूलिए। पेड़ों, बिजली के खंभे और खुले मैदान से दूर रहें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगह पर ही रहें। बारिश का मौसम जितना खूबसूरत होता है उतनी ही सावधानी भी मांगता है, इसलिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें एवरीवन। और हाँ, अगर आपके शहर में भी बारिश हो रही है तो हमें जरूर बताइएगा। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। और दोस्तों मैं बात करने वाली थी अभी, देखिए मौसम अपडेट तो हमने दे ही दी है एंड हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, आज जन्मदिन है उस शख्स का जिसने ये साबित कर दिया कि अगर जुनून सच्चा हो तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। हम बात कर रहे हैं राघव ज्वाल की। जी हाँ दोस्तों, देहरादून के एक साधारण परिवार से निकलकर बिना किसी फॉर्मल डांस ट्रेनिंग के सिर्फ यूट्यूब से सीखते हुए राघव ने अपना अनोखा स्लो मोशन डांस स्टाइल बनाया और पूरे देश के दिलों पर छा गए। डांस इंडिया डांस डांस सीजन 3 से मिली पहचान ने उन्हें लाखों लोगों का पसंदीदा बना दिया। इसके बाद उन्होंने डांस प्लीज जैसे सुपर हिट शोज को होस्ट किया और अपनी शानदार कमिंग टाइमिंग से भी सबका दिल जीत लिया एवरीवन। फिर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और ABCD 2 एंड और बहुत सारी फिल्में हैं जिस फिल्मों में ना राघव जी ने काम किया है। और आप तो जानते हैं उनका डांस, उनकी कॉमेडी। जो इंसान ना मुस्कुराना चाहे ना, जो परेशान भी हो, वो जब उनके कॉमेडी हाँ जी देख लेता है ना, तो उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ ही जाती है। और दोस्तों उन्हीं की एक फिल्म का हम शानदार ट्रैक यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। दोस्तों किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन 2024 की फिल्म किल में उनके दमदार विलेन वाले किरदार ने सबको चौंका दिया। ये साबित कर दिया कि राघव सिर्फ शानदार डांसर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनकी जिंदगी यूं ही सफलता, मुस्कान और नए नए मुकाम से भरी रहे। हैप्पी बर्थडे राघव ज्वाल जी। और दोस्तों उन्हीं का एक प्यारा सा ट्रैक भी हम सुनते हैं यहाँ पर, मैंने सिलेक्ट किया है आज की मॉर्निंग, तो चलिए सुनते हैं। उसकी बात लौट कर आती हूँ मैं एंड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचानी है, तो आप बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। खुशी आती है छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: बिल्कुल दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप एफएम मुरादाबाद को दिल से सुनते हैं और दिल से प्यार करते हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद एवरीवन। और दोस्तों, आज के मॉर्निंग मैंने आपसे मालूम किया था कि मुरादाबाद में अगर कोई गेस्ट आपके आए तो आप कहाँ घुमाने लेकर जाएंगे, तो हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे आंसर आए हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है विकी सागर जी का, और ये कहते हैं कि खुशी जी, हमारे तो सब नियर बाय हैं, सभी चीजें पास हैं, तो हम जाते हैं घूमने के लिए। और इन्होंने बताया है कि हम जाते हैं हनुमान वाटिका एंड श्री राम पार्क, और इन्होंने बहुत सारी जगहें हमें बताई हैं जो घूमने के लिए जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जाना चाहिए। एंड अगर कोई गेस्ट आए घूमने तो उनको भी लेकर जाना चाहिए ना एवरीवन। अब मुरादाबाद में आए, कुछ खास चीजें ना घुमाए, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें भी मतलब फील होना चाहिए ना कि हाँ, हम मुरादाबाद गए थे और हम वहां घूम कर आए, बहुत ही खूबसूरत है। एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और ये मैसेज हमें पहुंचा है भूपेश शर्मा जी ने, नगर पंचायत बागवाड़ा से। कहते हैं कि रिश्ते और रास्तों के बीच एक अजीब सा रिश्ता होता है, रिश्ते और रास्तों के बीच एक अजीब सा रिश्ता होता है, कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं, इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। राधे राधे, आपको भी राधे राधे। बहुत ही प्यारी सी आपने लाइनें भेजी हैं सर आज की मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। कार्तिक गुप्ता का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद लाइन पार से। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और ये मैसेज हमें भेजा है अंसार हुसैन जी ने, दौलत बाग मुरादाबाद से। इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट आज की मॉर्निंग भेजी है। उसके अलावा आंचल का मैसेज हमारे पास आया है, और ये पीतल नगरी से अपना मैसेज हमें पहुंचाती हैं। कहती है, खुशी मैम, हमें घूमने का शौक है, और जब हमारे घर कोई भी मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो हम उनको लेकर जाते हैं बुद्धा पार्क। वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं एंड वॉक भी करते हैं। क्या बात है जी, एक ही जगह जाकर इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया। उसके अलावा अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर पिंकी का आया है, और ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं हनुमान नगर से। इन्होंने बस हमें गुड मॉर्निंग विश किया है। देखिए दोस्तों, 12 बज चुके हैं, तो गुड आफ्टरनून आपको भी। और अच्छा लगा आप सभी से जुड़कर बातचीत करके, एंड मैं आऊंगी अगेन 3 से 5, तब तक के लिए आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना और अपनों का भी ख्याल रखिए। हाँ देखिए, दिल्ली रोड पर ना बहुत ज्यादा पानी भर गया है, यहाँ पर बारिश भी हो रही है बहुत जोर से अभी, मुझे राइट नाउ यहाँ पर विकी सागर जी ने बताया है। तो बारिश का लुत्फ उठाइए लेकिन सावधानी के साथ, और अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मैं आपको सुनवाती हूँ। इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है शबीना खान जी ने। तो दोस्तों, इस गाने से पहले कुछ अपडेट भी है जो आप तक पहुंचानी है, न्यूज अभी हम यहाँ पर आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं, उसमें सारी अपडेट आपको मिलने वाली है, क्या पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। आप बस बने रहिए, चिपके रहिए मुरादाबाद 89.6 से। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एवरीवन।
1: 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
3: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजेरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
1: धन्यवाद आरजेरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजेरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन इतने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो इस विषय

0: साथ ही कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग डेढ़ महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया। अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
1: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है। यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
0: देखिए अर्जेरीना, टीवी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं, वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है, लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं क्यों?
0: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते, कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं, कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
1: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। और यह बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज रखिए।
1: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
0: निक्षय वास्तव में टीवी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलोअप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है। और और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
1: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे

0: लोग सबसे ज्यादा डरते हैं
1: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आर्जेरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीवी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि अधिकांश टीवी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं, लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है और ना ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखें, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है, डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे, लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छुपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
2: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
1: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
2: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
1: यही एक और बड़ी गलतफहमी है, इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
2: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
1: रीना, MDR TV यानी दवा प्रतिरोधी टीबी में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
2: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
1: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आर्जेरीना, सरकार भी मानती है कि टीबी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकता है, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
2: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
1: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है। इसलिए सरकार निक्षेप पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
2: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
1: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीबी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षेप और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR टीवी भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
2: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीबी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 साल में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चों का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ पाते कि बच्चे को कब, क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यह सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में सही तरीका क्या है?
3: देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
2: मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी ही हो जाता है?
3: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है। अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरह का खाना खिलाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
2: अच्छा भाभी, तो बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
3: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे पहले अच्छा विकल्प है। और जैसे ही मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दालें, ये बच्चे को ताकत देगी और उसका शरीर स्वस्थ बनेगा। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती है, ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के फोलेट, कैल्शियम, अनाज, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व तो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचने और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहारी नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूध और दूध से बने पदार्थ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियाँ बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम, ये बच्चे की आँखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इस सब को मसल कर बच्चे को दिया जा सकता है।
2: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या और कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए?
3: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है।
2: भाभी, लोग ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितने खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
2: हाँ भाभी, ये तो जरा विस्तार से समझाइए।
3: देखिए आरजे खुशी, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो जाए तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
2: सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बराबर खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
3: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा।
2: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखती हूँ, कई बार माँ बच्ची को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं। कुछ तो उसके खेलते समय मुँह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
3: नहीं आरजे खुशी, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिर सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
2: हाँ, ये तो सही बात है। बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
3: ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चों को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी में और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है।
2: भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं। सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाए।
3: यही तो सबसे बड़ी गलती है आरजे खुशी। ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुंचाती है। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसे चीजों से भर गई तो असली पोषण खाना वो खा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे को इससे दूर ही रखना चाहिए।
2: और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चे के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
3: हाँ बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ को दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषण तत्व और एंटीबॉडी होती है जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
2: भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है?
3: नहीं आरजे खुशी, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पल पाता है।
2: पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
3: देखिए, पिता की जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है और पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषण वाला सामान जरूरी हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
2: सही कहा भाभी। और दादी की क्या भूमिका होती है?
3: दादी को होना चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर ले तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है और उसे दुलार सकती है ताकि माँ थोड़ी राहत पा सके।
2: भाभी, आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत अहम होता है ना?
3: हाँ, दादा का रोल बहुत बड़ा होता है। वो अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बातें करते हैं या उसके साथ खेलते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। दादा घर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उसे समझाते हैं कि हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसे बातें बार बार याद दिलाते हैं।
2: श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताज़ा आहार देना शुरू कर देना है। यह क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताज़ा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसलकर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह पिसी दाल, पका हुआ गाजर, इन सबको मसल दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
3: बच्चे का हाइजीन बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए, सोच जाने के बाद खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें। इससे सफाई रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक बनती है। और सबसे जरूरी बात ये है कि परिवार के हर सदस्य, माँ पिता, दादा दादी सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग दे, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
2: दोस्तों, याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होंगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाएंगे।
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
3: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा, सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत से लाभ कई,
2: तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ। धन्यवाद। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें ग्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे RJ आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त RJ रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों RJ रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
5: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो? इस गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
4: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
5: हाँ, यही कहने वाली थी मैं।
4: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से AC में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी मैं लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है, एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खान पान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार,
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं, तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों महिलाओं की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आए,
1: वहाँ के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी,
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है,
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
1: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
0: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
1: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
0: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
1: और स्टूडियो में ना तभी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
0: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गाँव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बहता रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम

0: इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए, कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना। हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं, हाँ, और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गाँव में फिर से वो गाँव हरा भरा लगने लगा, नदियां साफ लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी
0: है, बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा, आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में, किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था,
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज से। तो श्रोताओं, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने, पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं,

0: अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते हैं ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते हैं जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो पर उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट
1: पानी
0: होता है,
1: वेस्ट होता
0: तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा अभी हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें चाहनी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सकें। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

वेलकम बैक एक बार फिर से. यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे. आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं. प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो. रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी. साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है. अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी. कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए. और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है. पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला. लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली. लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए,

0: हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पॉल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा के वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों के वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों, आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए,
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते, वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, ये है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
4: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम आल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
3: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
4: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

0: से किया है. देन आई हैव वर्क इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली. देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद.
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. सो देखा, मैंने कहा था ना मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी हूँ कि आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में. और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे. तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है.
0: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी.
1: एब्सोल्युटली.
0: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन. आप नहीं है तो हम नहीं है. तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए. एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है. आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू. थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते. बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%. मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं. आप मुझे सब चीज बताओ. जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम. और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच. क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? सो गाइज, आई होप आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में. और आज बहुत सारी बातें होंगी और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली. और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन. ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है.
0: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानती
1: है.
0: एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है. हाँ, जैसे पुराने जमाने
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है. तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. देर आर लॉट ऑफ चीजें, देर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आप आ सकते हैं. मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं. बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड. तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है. तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है. इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर. एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल.
1: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए. अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है. सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है. इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है.
0: Exactly.
1: सब लोग बहुत भाग रहे हैं. बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है. अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है. उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल है, पर उन्हें खुद को नहीं देखना है. बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा.
0: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है. सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
1: बच्चे को दिखा लाते.
0: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स. अभी कल की कहानी बताती हूँ. देयर वर टू पीपल, ठीक है? हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है? अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो. तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है. शी डिनाइड, बोली नहीं मैम, घर में मेरे सब बीमार है. मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती. अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड. तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट, ताकि हम इंटरवीन कर लें. तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ. एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो. डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके. क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे. आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे. तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ. अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की

0: केयर नहीं कर सकती और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
1: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज, वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जैसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते वो चेकअप, उन्होंने कब कब कराने चाहिए?
0: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
1: ठीक है
0: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 टू 65 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, तो बहुत बड़ा एक साइड से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं, वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के 2 क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है, और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
4: And we've always had a good close relationship with India in playing hockey and the early Indian teams that came here 100 years ago.
3: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
5: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह की हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
6: टुडे भारत इज मार्चिंग कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स द विजन सेट बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ए विकसित भारत बाय 2047। नेशनल इंटीग्रेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन एज रिलेवेंट एज एवर। सरदार वल्लभभाई पटेल जी बिलीव्ड फॉर ए रिच डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, ए स्ट्रांग सेंटर वाज एसेंशियल टू मेंटेन यूनिटी एंड सिक्योरिटी।
2: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
7: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी

0: पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 1 महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की भावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के 2वें क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित

0: करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहां आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहां 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हर बार की तरह हम इस महिला मंच में और भी एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और इस शो में मैं अकेली नहीं हूँ, मैं RJ रीना और मेरे साथ RJ खुशी है, जहाँ हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजिटल सुविधा की जो आने वाले समय में आपकी मेडिकल फाइल, आपकी जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची और आपके इलाज रिकॉर्ड को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। क्या आपने कभी अस्पताल में पुरानी रिपोर्ट्स ढूंढने में परेशानी झेली है? क्या कभी डॉक्टर ने कहा कि पुरानी जांच फिर से करानी पड़ेगी क्योंकि रिपोर्ट्स नहीं मिली? अगर हाँ, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे आभा ID क्या है, क्यों बनाई गई, कैसे बनती है, क्या यह आयुष्मान कार्ड से अलग है, इसके फायदे क्या है, डेटा कितना सुरक्षित रहता है और इससे जुड़े कई मिथकों का भी सच जानेंगे। तो बने रहिए RJ रीना के साथ और RJ खुशी के साथ। RJ खुशी से जानना चाहती हूँ कि मैं आखिरकार आभा ID है क्या?
1: श्रोताओं, आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए, खुशी एंड रीना दोनों कुड़िया यहाँ पर आती हैं आपके लिए एवरी डे कुछ ना कुछ खास लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं आभा ID क्या होती है, रीना जी का सवाल है। तो और श्रोताओं, आपका भी यही सवाल होगा ना कि आभा ID क्या है? बहुत सारे श्रोताओं को पता है, कुछ ऐसे भी हमारे श्रोता हैं जिनको नहीं मालूम है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। साथियों, आभा ID का पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 अंकों की एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID है। यह आपकी मेडिकल पहचान बनाती है। इसके माध्यम से आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अब आसान उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है जिससे आपकी पहचान होती है, उसी तरह आभा ID आपकी स्वास्थ्य पहचान है। अब श्रोताओं, मेरा भी आपसे एक सवाल है, क्या आपने आभा ID का नाम पहले सुना था? अगर सुना था तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है? मैं आपको बताती हूँ, आप निश्चिंत रहो। मैंने कहा ना आपसे, जिनको मालूम है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी बल्ले बल्ले, क्योंकि हम उनको बताने वाले हैं आभा ID की जरूरत क्यों पड़ती है। पुराने समय में फाइल खो जाती थी, रिपोर्ट बार बार बनवानी पड़ती थी, इलाज का रिकॉर्ड अलग अलग अस्पतालों में बिखरा रहता था। डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए की गई है। सोचिए, अगर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक सुरक्षित डिजिटल खाते में उपलब्ध हो जाए तो इलाज कितना आसान हो सकता है। आभा ID और आयुष्मान कार्ड में अंतर क्या है, ये बताने के लिए रीना यहाँ पर है। पर बताने से पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

तो देखिए श्रोताओं, हर दस्तावेज का अपना अलग अलग काम होता है। ठीक उसी तरह आप आईडी और आयुष्मान कार्ड में भी दो अलग अलग चीज है। नाम में आयुष्मान शब्द आने की वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानेंगे पहले आयुष्मान कार्ड के बारे में। सो हम सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। आयुष्मान कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ा हुआ कार्ड है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है तो वह आयुष्मान कार्ड के माध्यम से तय नियमों के अनुसार कैशलेस इलाज का लाभ ले सकता है। अब बात करते हैं आभा आईडी। आभा आईडी का पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यह आपकी एक डिजिटल हेल्थ पहचान है। इसका उद्देश्य है इलाज का खर्चा देना नहीं, बल्कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जैसे डॉक्टर की पर्ची, लैब रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी और अन्य हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से व्यवस्थित रखने में मदद करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपकी अनुमति से उन्हें आसानी से देखा जा सके। तो श्रोताओं, आइए हम इसके कुछ मिथकों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और जानेंगे और भी ढेर सारी बातें। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं। सुनते रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम आपका शो फेवरेट लेकर हाजिर हैं महिला मंच। आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में, आभा आईडी के बारे में और अभी हमने बात की थी मिथक के बारे में। तो दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, जहां नई चीज आती है वहां उसके बारे में तरह तरह की बातें भी फैलने लगती हैं। कोई कहता है ये सही नहीं है, कोई कहता है मत बनवाओ, तो कोई बिना पूरी जानकारी के ही दूसरों को सलाह देने लगते हैं। आभा आईडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज हम ऐसे ही कुछ मिथकों की बात करेंगे ताकि सही और गलत का फर्क साफ हो जाए। सबसे पहला मिथक है आभा आईडी बनवाने में पैसे लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में कोई कहे कि भाई आभा आईडी बनवानी है तो 300 या 500 रुपए लगेंगे, तो क्या आप मान लेंगे? असलियत ये है कि आभा आईडी बनवाना पूरी तरह निशुल्क है और अगर कोई इसके नाम पर पैसे मांगता है तो सावधान हो जाइए, हो सकता है वह गलत जानकारी दे रहा हो, आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा मिथक है एवरीवन, ये सिर्फ आयुष्मान कार्ड वाले के लिए नहीं, ये भी पूरी तरह गलत है। मान लीजिए किसी परिवार में एक व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है और दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, क्या दूसरे व्यक्ति की हेल्थ हिस्ट्री महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है, इसीलिए आभा आईडी हर भारतीय नागरिक बना सकता है। अब तीसरा मिथक, सरकार मेरी सारी मेडिकल जानकारी बिना पूछे देख लेंगी। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन सच ये है कि आपकी स्वास्थ्य जानकारी पर आपका अधिकार होता है। किसी डॉक्टर या अस्पताल को आपका रिकॉर्ड देखने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत होती है, यानी फैसला आपके हाथ में है कि आप किसके साथ अपनी जानकारी साझा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले सही जानकारी जरूर लें, जागरूक बनिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही निर्णय लेने में मदद करती है। रीना, आप मुझे कल एक महिला की कहानी सुना रही थी, तो हमारी श्रोताओं को भी उनके बारे में बताइए।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे फिर बताएंगे। तो श्रोताओं बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: क्या बात है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत ही शानदार गाने के बाद फिर से कनेक्ट हो गए हैं और एक छोटी सी कहानी जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए श्रोताओं, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। यानी कि मुरादाबाद के पास एक छोटे से गांव में सीमा नाम की महिला रहती थी। दो बच्चों की माँ, घर की जिम्मेदारियां और खेत का काम। दिन कब शुरू होता था और कब खत्म उसे खुद भी नहीं पता चलता था। एक दिन उसके बेटे को तेज बुखार हो गया। वह उसे अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने पूछा, पहले कभी ऐसा हुआ था? कोई पुरानी रिपोर्ट्स हैं? सीमा ने बैग खोला, कुछ कागज थे लेकिन जरूरी रिपोर्ट घर पर रह गई थी। डॉक्टर को इलाज शुरू करने में थोड़ी कठिनाई हुई और कुछ जांच दोबारा करानी पड़ी। कुछ महीने बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई। उन्होंने लोगों को आभा आईडी के बारे में बताया। पहले तो सीमा ने भी सोचा, ये भी कोई नया कागज होगा, मुझे इसकी क्या जरूरत। लेकिन जब पूरी जानकारी मिली तो उसने अपनी आभा आईडी बनवा ली। कुछ समय बाद उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हुई। इस बार अस्पताल में डॉक्टर ने पूछा कि क्या डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध है और परिवार की सहमति मिली। वहां डॉक्टर को इलाज समझने में सुविधा हुई। घर लौटते समय सीमा ने अपने पति से कहा, अगर हमें पहले सही जानकारी मिल जाती तो शायद पिछली बार इतनी परेशानी नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम समय रहते सही जानकारी ले, डिजिटल सुविधा तभी उपयोगी होगी। तो श्रोताओं, जब हमें सही जानकारी होगी तभी हम अपने सारे काम आसानी से करवा पाएंगे। इसीलिए आभा आईडी आयुष्मान कार्ड बनवाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: तो दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए। दोस्तों, आज हमने जाना आभा आईडी केवल एक कार्ड नहीं बल्कि भविष्य की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव है। यदि आपने अभी तक आभा आईडी नहीं बनवाई है तो सही जानकारी लें और अधिकृत माध्यम से इसे निशुल्क बनवाएं। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसी तक को भी ये जानकारी पहुंचाइए। मैं अब आपसे लेती हूं जाने की अनुमति। मिलेंगे हम अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
0: सुनते रहिए
1: FM मुरादाबाद
0: 89.6।
1: रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहिए।
1: बाय बाय,
0: टेक केयर।
2: हाय दया ननद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
7: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
6: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
7: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
6: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
7: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
6: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
7: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
6: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
7: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
6: EKCC, साख से समृद्धि।
7: नियम और शर्तें लागू।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। रिमझिम बारिश में आप सभी का स्वागत है। एफएम मुरादाबाद 89.6 सुन रहे हैं आप। और समय में आपको बता देती हूँ साथियों, वक्त हुआ है 3:07। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। और शुरू हो चुका है आपका अपना शो हेलो फरमाइश। बाहर रिमझिम बारिश, तो दिल को भी थोड़ा सा सॉफ्ट, दिल भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो ही गया है एवरीवन। लेकिन मुरादाबाद की बारिश मुझे समझ में नहीं आ रही है। कभी तो बारिश हो जाती है तो कभी बारिश रुक जाती है। और दोस्तों, अगर आप ऑफिस में हैं, शॉप पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं या फिर घर पर चाय की पहली सिप एंजॉय कर रहे हैं, तो अगले 2 घंटे तक मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। आपके सफर को सुहाना बनाने वाले हैं, मौसम के साथ खूबसूरत बनाएंगे। और दोस्तों, करते हैं अपने शो की शुरुआत। बात करेंगे अपने कॉलर से भी, लेकिन उससे पहले सुनवाती हूँ मैं आपको एक शानदार सा गाना। आप भी मुझे कॉल लगाइए। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। और मुझे बताइएगा दोस्तों, क्या आपके शहर में भी बारिश हो रही है? देखिए, मुरादाबाद में बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। एंड हल्की हल्की फुहार पड़ती है तो उसके बाद क्या होता है, रुक जाती है, लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाती है। गैप लेती है, शायद घर जाने का मौका आपको देती है। दोस्तों, एक प्यारा सा गाना आपके लिए, एंजॉय कीजिएगा। बस मैं आती हूँ अभी।

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना सत्विन साथ में श्रेया घोषाल जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में, प्यारा सा गाना। आप सभी का अगेन वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, बाहर हल्की फुल्की बारिश तो हो ही रही है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि हर बारिश सिर्फ कपड़े ही नहीं भिगोती। जी हाँ, हर बारिश सिर्फ कपड़े ही नहीं भिगोती, कभी कभी थोड़ी सी जिद और बहुत सारी थकान भी ढो देती है। बस एक मुस्कान संभाल कर रखिए, बाकी मौसम खुद ठीक कर देगा। आप टेंशन ना लें, बस मुस्कुराते रहिए। और करते हैं अभी सिलसिला शुरू। हमारे पास यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे जुड़े हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते
0: मैम। हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा आप।
1: जिला रामपुर तहसील स्वार से जावेद अली बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, बारिश हो रही है, बारिश का मजा ले रहे हैं।
0: अच्छा, बारिश का आनंद ले रहे हैं, वेरी गुड। क्या करते हैं सर आप, अपने बारे में बताइएगा।
1: मैं ई रिक्शा चलाता हूँ।
0: अच्छा, तो अभी कहाँ पर हैं आप?
1: अभी तो घर पे आया था, खाना खाने के लिए आए थे। मैंने देखा टाइम, तो टाइम भी हो चुका था, मैंने आपकी कॉल लगाई, तो लग रहा है फर्स्ट कॉलर मैं ही हूँ अभी।
0: हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट कॉलर आप ही हमारे शो के हैं।
1: जी जी,
0: तो बताइएगा आज आपकी क्या फरमाइश है सर।
1: फिल्म का नाम है कुर्बान, गाने के बोले हैं तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़िया नदिया किनारे। ये गीत सुना देना मैम।
0: जी ठीक है, ये गीत आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया सर।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए जावेद जी की पसंद पर सुनते हैं प्यारा सा गाना, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी चली आऊं नदिया किनारे। बहुत ही प्यारा सा गाना है। बस मैं तो अभी वापस आने वाली हूँ, आपको मुझे कॉल लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे खुशी जी कॉल तो हम लगाएंगे, लेकिन नंबर तो बताइए। तो मोबाइल नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896 9837896 8 ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है, इस पर आपको मुझे कॉल लगाना है। बाकी आप अपने फेवरेट गाने तो यहाँ पर एंजॉय करेंगे जब आपका कॉल लग जाएगा।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी वक्त हुआ है 3:20। आपने अभी बहुत ही प्यारा सा गाना सुना और इस गाने के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश। दोस्तों, अगर आप भी कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं राइट नाउ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी बात करते हैं कॉलर से अपनी, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका?
1: मेरी रिहाना बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी बताइए रिहाना जी, कैसी हैं आप?
1: दीदी हम तो अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हाँ जी रिहाना जी,
1: फैमिली में सभी लोग कैसे हैं?
0: बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा। कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी रामपुर से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो बताइएगा कैसा मौसम है आपकी साइड, बारिश हो रही है या नहीं?
1: दीदी मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है फिलहाल, तो गर्मी बहुत है।
0: गर्मी है, बारिश नहीं है वहाँ पर?
1: रुकी हुई है इस टाइम।
0: अच्छा, बारिश रुकी हुई है
1: जी।
0: ओके, तो बताइएगा आपकी परिवार में सब ठीक है?
1: जी दीदी बहुत अच्छे हैं
0: जी। आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहती हैं आप? हेलो, लगता है रिहाना जी कहीं गुमसुम सी हो गई हैं। उनका मुझे भी ऐसा लग रहा था बात करते हुए कि उनका ध्यान कहीं और भी था शायद, आई डोंट नो। बट उन्होंने एक प्यारे से गाने की हमें रिक्वेस्ट भेजी थी, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। ये ट्रैक सुनने का इनका मन था, तो मैंने कहा चलिए इतने प्यारे गाने की रिक्वेस्ट भेजी है तो हम प्ले ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे। एवरीवन, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

दोस्तों अभी आपने ये गाना सुना फ्रॉम द मूवी हमको तुमसे प्यार है। अर्जुन रामपाल साथ में अमीषा पटेल जी खूबसूरत नजर आई इस गाने में, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे अमीषा जी और साथ में हैंडसम लग रहे।

0: थे अर्जुन रामपाल जी। दोस्तों ये प्यारा से गाना अभी आपने सुना उदित नारायण जी, साथ में अलका याग्निक जी की आवाज और सपना अवस्थी भी दे रही थी साथ। म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद राज आनंद, लिरिक्स थे देव कोहली जी के। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी मैं जिला मुरादाबाद सम्मल रोड दस्तौर से अतर सिंह सैनी बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: बढ़िया है सर, मौज आ रही है, बस गाने सुनने हैं आपके और आनंद आ रहा है। गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई, बारिश पड़ गई।
0: जी तो अभी बारिश रुक गई है या हो रही है कंटिन्यू?
1: बारिश रुकी हुई है इस टाइम तो।
0: अच्छा बारिश रुकी हुई है जी, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज।
1: जी आज मैं फिल्म का नाम तो मेरे याद नहीं है लेकिन गाने के बोल याद हैं, घटा छा गई है बाहर आ गई है, ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी बताइएगा कौन सी ये जो गाना है, मैं आपको बताती हूँ फिल्म का नाम है बारिश।
1: जी जी।
0: और आप किनके साथ ही गाना सुनना चाहते हैं?
1: फैमिली मेंबर्स मेरे घर के सदस्य हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल बताइए।
1: मीना मुन्नी, पवित्रा, अजय, आचल, आकांक्षा, आकाश, घाटमपुर, रामपुर से रामभजन सैनी और पंडित नंगरा मुरादाबाद से हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन, और जितने भी सुनने वाले सभी के लिए सुनवाना चाहता हूँ।
0: ठीक है सर, आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका। सुनवाते हैं गाना ना, बहुत प्यारा सा आपकी पसंद का। तो श्रोताओं सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं आप भी अगर कोई भी गाना सुनना चाहते हो तो मुझे बिना किसी देरी के कॉल लगा सकते हो। मोबाइल नंबर है 9837896896। फटाफट से कॉल करूँ।

0: बिल्कुल जी, घटा छाई हुई है बाहर, रिमझिम कभी बारिश आती है कभी रुक जाती है। और आज यूपी में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश हो रही है, कहीं ऐसा है कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन उमस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, और मुझे बता सकते हैं आप कोई अगर गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का एंड अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर फैमिली के साथ, वो तो आपकी चॉइस है, आप इनके साथ कौन सा गाना सुनना चाहते हो। मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना प्ले करने के लिए आपका फेवरेट सॉन्ग, तो जल्दी से मुझे कॉल कीजिएगा। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी पसंद का गाना। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैम जी आदाब।
0: हाँ जी, आपको भी आदाब, बताइएगा कैसे हैं आप।
1: मैम एकदम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो।
0: जी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप अपना नाम भी बताइएगा और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए।
1: मैम मैं जिला रामपुर ग्राम के टांगे से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: जी कामिल जी, अभी तो राइट नाउ आप गुड़गांव में है ना।
1: यस मैम, इस टाइम तो मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ।
0: जी तो बताइएगा गुड़गांव का मौसम कैसा है।
1: मैम 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी लेकिन आज बारिश नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन उमस बहुत है।
0: अच्छा, उमस बहुत ज्यादा है।
1: हाँ, जिससे भपका पड़ रहा है, गर्मी काफी लग रही है।
0: ओके, तो बताइएगा सर कैसे चल रहा है आपका कारोबार।
1: मैम काम ठीक चल रहा है, कारोबार अच्छा चल रहा है मैम।
0: ओके, तो आज आपने कॉल किया, अभी फ्री थे आप।
1: जी मैम फ्री था, मैं प्रोग्राम सुन रहा था, काफी दिनों से मैं जुड़ नहीं पा रहा था आपके प्रोग्राम में, कॉल नहीं कर पा रहा था लेकिन प्रोग्राम में सुनता रहता हूँ।
0: थैंक यू
1: जी, मैं सोचा लाओ कॉल करता हूँ, कॉल लगाई और लग गई, आपसे बात करी मैम, काफी अच्छा लग रहा है।
0: शुक्रिया सर, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज।
1: मैम ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है जाल।
0: हाँ?
1: उसका है सोना सोना सोनी रूपी तेरा नजारा, इसी तरह के गाने के बोले हैं, ये सॉन्ग सुनवा देना।
0: जी सर सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।
1: मैं कुछ सुनने वाले हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइएगा।
1: जैसे हैं ये लाइबा काजमी, मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीसुर रहमान, और रामपुर से हमारे दोस्त हैं, और सब जिसने भी प्रोग्राम सुना है सबके लिए सॉन्ग।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गीत, शुक्रिया आपने कॉल किया।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, कामिल जी की रिक्वेस्ट पर हम आपसे भी बातचीत करेंगे, बस आप मुझे कॉल लगाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। आप कॉल लगा रहे हैं ना, वेरी गुड।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी का. वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का एफएम मुरादाबाद 89.6 और आप सभी का फेवरेट शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना पसंद का गाना कोई भी जो आप सुनना चाहते हो वो रिक्वेस्ट मुझे कर सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको कॉल तो मुझे करना होगा ना, तो जल्दी से कॉल कीजिएगा. मोबाइल नंबर है 9837896896. और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर. हेलो फरमाइश.
1: हेलो नमस्कार मैम.
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर. क्या नाम है आपका?
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान बात कर रहा हूँ मैम.
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी ब्लेसिंग से. आप बताइएगा क्या कर रहे हैं इस वक्त आप?
1: बस कार्यक्रम सुन रहे थे मैम आपका.
0: जी कार्यक्रम सुन रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा. आज तो फ्राइडे है, आपका ऑफ होगा ना सर?
1: हाँ फ्राइडे में तो छुट्टी रहती है मैम.
0: जी जी जी, तो बताइएगा कैसा लग रहा है, घर पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ?
1: घर पे टाइम मैम, छुट्टी वाले दिन मैंने कहा था ना बहुत ज्यादा काम होता है, आज तो वैसे भी नहीं कर पाया मैं आपके कार्यक्रम में.
0: अच्छा,
1: ज्यादा व्यस्त था.
0: ओके कोई बात नहीं सर, हो जाता है कभी कभी. बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी है राजमहल, उसमें रफी साहब की आवाज में एक सॉन्ग है मेरे प्यार की आवाज, चले आना.
0: ओके तो चलिए सर सुनवाते हैं प्यारा संगीत आपको.
1: जी धन्यवाद मैम.
0: मोस्ट वेलकम सर. तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं प्यारा संगीत, तब तक आप मुझे कॉल लगाइए. मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 98378-96-896. ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है. तो अभी फिलहाल इस गाने को सुनिएगा.

0: लीजिए दोस्तों, आपने इतने प्यार से खुशी को बुलाया और खुशी चली आई। इतना प्यारा गाना अभी आपने सुना, मोहम्मद रफी साहब साथ में लता मंगेशकर जी दे रही थी साथ। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: फातिमा।
0: फातिमा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद में कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद से।
0: नहीं, मुरादाबाद में कहाँ से बात कर रहे हो? मुरादाबाद तो बहुत बड़ा है ना।
1: छोटी मजली।
0: अच्छा, बताइएगा क्या करती हैं आप?
1: कढ़ाई करती हैं।
0: अच्छा, डिजाइन बनाते हैं आप? हाँ
1: जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक स्किल है जो कि हर कोई नहीं कर पाएगा, बहुत बारीकी का काम है। तो ये बताइए, आपने किसी अपने फ्रेंड के लिए भी कभी कुछ कहार के दिया है, सूट वगैरह?
1: हाँ, मम्मी पापा के लिए।
0: अच्छा, ओके। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो हमें अच्छा लगा जानकर कि आप डिजाइन बनाते हैं कपड़ों पर। अभी ये बताओ, आपका कौन सा गाना सुनने का मन है?
1: ये प्यार, प्यार।
0: अच्छा, तो आपकी परिवार में सभी रेडियो सुनते हैं या सिर्फ आप ही शौकीन हैं रेडियो सुनने की?
1: नहीं, मेरी आती है, बड़े भाई हैं।
0: अच्छा, सब फैमिली रेडियो सुनती है। कैसा लगता है बताइए हमें फातिमा?
1: बहुत बढ़िया लगता है।
0: अच्छा लगता है। ओके, शुक्रिया आपने कॉल किया। इतने शर्मा कर आप जवाब दे रही हैं हमें। हाँ, मोस्ट वेलकम। तो चलिए सुनते हैं ये फातिमा जी की रिक्वेस्ट पर बहुत ही प्यारा सा गाना, उदित नारायण जी साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गाना। बस मैं आती हूँ अभी वापस।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों घड़ी में 4 बज चुके हैं और आपके पास अभी पूरा 1 घंटा है। आपने अगर अभी अभी रेडियो को ऑन किया है तो आप मुझे अभी कॉल लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा रहेगा 9837896896। इस पर आप मुझे कॉल लगाइए। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नीरज कुमार।
0: नीरज कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: लोधीपुर मुरादाबाद।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
1: अच्छे हैं मैम।
0: ओके, अच्छा ही रहना चाहिए हमेशा। बताइएगा,
1: बारिश हो रही है ना? हल्की हल्की बारिश हो रही है।
0: हाँ जी, कभी बारिश हो जाती है हल्की हल्की, कभी रुक भी जाती है।
1: बारीक बारीक झल्ला पड़ रहा
0: है। जी जी जी, तो बताइएगा सर आप कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: आई लव माई इंडिया।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारा ट्रैक आपने सेलेक्ट किया है।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए नीरज जी, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक आई लव माय इंडिया। एंड हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं कि हमें इंडिया में जन्म मिला है। बहुत ही खूबसूरत है। और मैं बस आने वाली हूँ वापस, आप मुझे कॉल लगाइएगा।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का एफएम मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने पहला सा ट्रैक सुना आई लव माय इंडिया। वतन मीडिया से। और दोस्तों, यही तो है हमारे भारत की सबसे खूबसूरत पहचान। यहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग त्योहार, अलग अलग संस्कृतियां और परंपराएं हैं, लेकिन दिल एक ही है। विविधता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। प्यार और भाईचारे को हमेशा बनाए रखना, तभी तो सब दिल से कहते हैं ना आई लव माई इंडिया। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। हाय दी, केम छो माजा मा।
0: हाँ जी, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइएगा आपकी कैसे हाल चाल है।
1: दी, मेरे हाल चाल भी बहुत अच्छे हैं और आपका शो सुन रहे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू। क्या नाम है आपका?
1: जी दी, मैं अक्का भीकनपुर जिला मुरादाबाद से अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: अफरोज फातिमा जी बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं सब आपके परिवार में?
1: मेरे परिवार में तो सब बहुत ही अच्छे हैं। भी आप बताओ, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी, बहुत ही अच्छे हैं। सब बोल रहे थे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, एंड अब तो बारिश हो गई है। आप कैसे लग रहे हैं बताइए?
1: अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भी, इतनी बारिश हो गई है कि अब पानी की जरूरत नहीं है। आज दिन तक बारिश नहीं होनी चाहिए।
0: अच्छा, अभी कंटिन्यू बारिश हो रही थी काफी, है ना?
1: हाँ जी, क्योंकि 4 दिन हो गए लगातार बारिश हो ही रही है।
0: अभी कैसा मौसम है आपके साइड?
1: अभी भी बारिश हो रही है दी।
0: अच्छा, बारिश हो रही है, हल्की हल्की या तेज हो रही है?
1: जी दी, इस टाइम पे तेज बारिश तो नहीं हो रही, तेज सुबह में हुई थी।
0: अच्छा, अभी हल्की बारिश हो रही है।
1: हाँ अभी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है।
0: ओके, तो बताइएगा आज अफरोज आप क्या सुनोगे इस बारिश के मौसम में?
1: जी दी, मैं पहले शायरी सुनाऊंगी फिर उसके बाद में सॉन्ग।
0: ओके इरशाद।
1: जी दी, मैं आज अपनी नज़्म आपकी के लिए और लाइबा के लिए कुछ खास लाइनें लेकर आई हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल, फरमाइए।
1: पहले नज़्म आपकी के लिए सुनाऊंगी अपने सिस्टर के।
0: ओके
1: जी दी। होश अपने गवा देते हैं तुम्हें खुश देखकर, होश अपने गवा देते हैं तुम्हें खुश देखकर, हम भी नज़्मे सुना देते हैं तुम्हें खुश देखकर, और तुम उदास ना रहा करो नज़्म आपकी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम तो अपने गम भुला देते हैं तुम्हें खुश देखकर।
0: अरे वाह, क्या बात है, सुपर यार, वेरी गुड। नेक्स्ट सुनाइए, नेक्स्ट सुनाइए।
1: जी दी, ये लाइन में लाइबा के लिए बोलना चाहती हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल सुनाइएगा।
1: जी दी, वो क्या पता सुन रही हो।
0: हाँ श्योर, कुछ भी हो सकता है भाई।
1: कुछ भी हो सकता है दी।
0: या
1: जी, अर्थ किया है, जरा सी बात आंखें भिगो कर बैठ जाते हो, जरा सी बात पर आंखें भिगो कर बैठ जाते हो, छुपाते हो जो दिल में वो जताकर बैठ जाते हो, तुम्हारे नाम की खुशबू महकती है फिजाओं में, तुम्हारे नाम की खुशबू महकती है फिजाओं में, जहाँ तुम जरा सा मुस्कुराकर बैठ जाते हो, जहाँ तुम जरा सा मुस्कुराकर बैठ जाते हो।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है फिरोज, ये आपने खुद लिखा है?
1: जी दी, मुझे लगा, मैंने पता है दी लाइबा ने, मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कुछ खास लाइनें हो जाए नज़्म आपकी और लाइबा के लिए।
0: बहुत अच्छा किया आपने, बहुत प्यारी लाइनें हैं आपकी। बताइएगा आप क्या सुनेंगे आज?
1: जी दी, और मैं कुछ गुनगुनाकर सुनाना चाहती हूँ।
0: श्योर, गुनगुनाइए।
1: जी दी,

0: अरे वाह, अमेजिंग यार, बहुत प्यारा गुनगुनाया है आपने।
1: आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे लगा मैं गुनगुनाकर सुनाऊंगी।
0: श्योर, अच्छा किया आपने। जब दिल करता है ना गुनगुनाने का, तो मुझे ऐसा लगता है खुशी के मौके को ना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए।
1: हाँ दी बिल्कुल, और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है दी, क्योंकि आज बहुत पुराने पुराने रिश्तेदारों की कॉल सुनी, बहुत अच्छा लगा।
0: ओके, तो चलिए ये प्यारा सा गाना आपको सुनवा देती हूँ। बताइए।
1: जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड लायका और साथ में मेरी नजमा की
0: हाँ हाँ
1: राफिया, रुपया और आसिया और खुशी दी।
0: ओके, तो चलिए सभी के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गाना, और हमेशा आप ऐसे ही खुश रहिए।
1: जी, मेरा तो मन करता ही रेडियो पर बस शायरी करती जाऊं करती जाऊं।
0: हमें भी अच्छा लगता है जब आप अपनी शायरियां सुनाती हैं।
1: हाँ दी, मुझे बहुत शौक है ना दी।
0: हाँ, ये शौक ऐसे ही हमेशा बरकरार रखिएगा आप। नई नई चीजें लिखते रहिए, इस क्रिएटिविटी को और इम्प्रूव कीजिए। हम सुनने के लिए आपका इंतजार करते हैं, आपकी शायरियों का। नेक्स्ट टाइम जरूर कॉल करना, ठीक है?
1: इस टाइम तो लास्ट टाइम बात हुई है आपसे, मैंने सोचा कल खुशी भी नहीं आएंगे, आज मैं बात कर लेती हूँ।
0: बहुत अच्छा किया आपने। हाँ जी, मैं फ्राइडे ही आप आती हूँ, सैटरडे मेरा ऑफ होता है
1: जी,
0: जी।
1: और भी जाते जाते क्या मैं एक शायरी और बोल सकती हूँ?
0: हाँ, बिल्कुल, याद आई क्या अभी? ओके,
1: याद तो भी है लेकिन भाई के लिए है वो।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, सुनाइए।
1: हाँ, आज मेरा मन कर रहा है भाई के लिए मुझे कुछ बोलना चाहिए।
0: हाँ, बोलिए ना।
1: जी, काश खुशियों की दुकान होती, मुझे भी उसकी पहचान होती। काश खुशियों की दुकान होती, मुझे भी उसकी पहचान होती। खरीद लेती अपने भाई के लिए सारी खुशियां, चाहे उन खुशियों की कीमत मेरी जान होती।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। आज स्टूडियो में आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, चेयर खाली एक हमारी।
1: दीदी, जब मैं स्टूडियो आऊंगी ना तो दी मैं खुद लाइव शायरी करूंगी।
0: ओके श्योर, हम ये मौका आपको देंगे। अफरोज, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू कॉल करने के लिए। डियर,
1: थैंक यू दी, बाय।
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, करते हैं इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद हम भी आपसे बात करेंगे। ये मौका आपको भी मिल रहा है, बस आप कॉल लगाओ बेफिक्र होकर। मोबाइल नंबर मैं बता रही हूँ, 9837896896।

0: क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
4: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: मुझे लगा ऐसा यू नो हो जाता है, यू नो क्या होता है ना जब एक्साइटमेंट होता है ना बहुत ज़्यादा, हमें यकीन नहीं होता कि हमारा कॉल लग गया है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसी खुशी में हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। हमारे पास अभी ऐसा ही हुआ था, एक कॉलर का कॉल आया था प्रिया का, तो प्रिया कहती है कि मैम मुझे जो गाना सुनना था मैं सच में भूल गई हूँ, लेकिन गाने से फ़ोन लगाने से पहले मुझे सब कुछ पता था कि क्या बातें करनी है क्या सुनना है, इतनी प्यारी लिसनर थी, पर पता नहीं कैसे उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या जब आप मुझे कॉल करते हैं तो कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं? अगर ऐसा होता है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं बात करती हूँ अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: आपसे पिंटू बात कर रहा हूँ मैम, आपका रेगुलर सुनता।
0: जी बताइए पिंटू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ प्रभु का आशीर्वाद, आप बताइए आप कैसे हैं, आपके स्टाफ में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आप बताइए पिंटू जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने फोन लगाया है और आप जो कहने वाले होते हैं, जो गाना सुनने वाले मतलब सुनना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं, ये कभी भूले हूँ आप, ऐसा हुआ है आपके साथ?
1: जी मैम, कभी कॉल है ना काफी टाइम पहले हुआ था।
0: अच्छा ओके,
1: मतलब जैसे कि हमने किसी से बात करी, हम एकदम अंदर से अंदर ज्यादा खुशी हो गई हमें, उसके बाद हम क्या खुशी के हमारे वो चीजें हमें भूल गए, या हमें ऐसी थोड़ी सी घबराहट होने लगी हम कैसे बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं।
0: हाँ नर्वस हो जाते हैं,
1: हमारे मुंह से कुछ निकल जाए, ऐसे ऐसा ना निकल जाए वैसा ना निकल जाए,
0: बहुत ज्यादा जब हम सोचने लगते है ना, तब ये चीजें होती है राइट।
1: जी जी
0: तो बताइएगा आप आज क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैम दो सॉन्ग है, दोनों में से आप एक दोनों में से आपको अच्छे लगे चला देना।
0: अच्छा ठीक है,
1: वाला है सादगी तो हमारी जरा देखी है, एतवार आपके बाद ऊपर कर लिया।
0: नेक्स्ट
1: और एक ये वाला है दोनों रातों खुदा का सहारा मिल गया।
0: दोनों ही गाने अच्छे हैं और चूज करने की अगर बात आए तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी। आप ही बताइए आप कौन सा सुनेंगी? सो
1: मैं शादी वाला सुनना चाहूंगा।
0: अच्छा ठीक है,
1: मैं एक शायरी याद करना चाहूंगा।
0: इरशाद सुनाइएगा।
1: आई ना क्यों ना दूं के तमाशा कहें जिसे, आई ना क्यों ना दूं के तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुस्सा कहे जिसे, गाली बुरा ना माने जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे जिसे।
0: क्या बात है, बड़ी प्यारी लाइनें हैं आपकी।
1: मैं पढ़ लेता हूँ कभी कभार, जो अच्छी लाइन होती है कहीं ना कहीं से लिख लेता हूँ, उसको नोटिस कर लेता हूँ, बाकी और कुछ नहीं मैम।
0: ओके,
1: जो थोड़ा बहुत ऐसी हो कि पढ़ लेते हैं मैम थोड़ा सा।
0: हाँ नहीं अच्छी बात है, अगर हमें कोई चीज पसंद आती है ना तो करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है शायरी वगैरह करना भी बहुत अच्छी बात है। जी आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गाना, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं हम, आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा और ना ही आपको ये सेशन मिस करना है। देखो एवरीवन, जो टाइम बीत जाता है ना वो दोबारा नहीं आता, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने टाइम का यूटिलाइज करें, हमें फ़ोन करें और इस टाइम को ना आप मेमोरेबल बनाएं।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, लेकिन टाइम में आपको बता देती हूँ, वक्त हुआ है 4:40 और हमारे साथ कौन जुड़े हैं, आइए उनसे लाइव बात करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैडम मेरा नाम उबैर अहमद है
0: जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: मैडम मैं जिला रामपुर से बात कर रहा हूँ, मोहल्ला ऊंचा नक्कलान से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: मैडम बेहद ठीक हूँ मैं।
0: ओके, ठीक ही रहना चाहिए हमेशा। बताइएगा आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम मैं जो हूँ सलमान खान का फैन हूँ और फिल्में सलमान खान की देखता हूँ।
0: ओके,
1: सलमान खान मेरा फेवरेट हीरो है।
0: अरे वाह, आपके फेवरेट एक्टर हैं सलमान खान जी, तो बताइएगा कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: तेरे नाम फिल्म तूने साथ जो मेरा छोड़ा।
0: अच्छा, इतना सैड सॉन्ग क्यों सुनना चाहते हैं आप?
1: मैडम ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है।
0: अच्छा ओके, आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो चलिए सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको।
1: मेरे दोस्त जो है इन्होंने आपका नंबर दिया था।
0: हाँ
1: भाई
0: जी,
1: उनको आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: हाँ जी,
1: बारादरी महमूद खान से।
0: जी जी जी हाँ, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, वो हमें कॉल भी करते हैं।
1: जी जी, वो उन्होंने नंबर दिया था मुझे एफएम आपका।
0: ओके,
1: मेरे मेरे बड़े भाई जरीफ भाई बैठे हुए हैं, मेरे भाई जुबैर भाई हैं।
0: जी
1: ठीक है, और मेरा मेरी शॉप जो है कैप की शॉप है।
0: अरे वाह, ओके, तो आपकी शॉप है, कैसी चल रही है बताएगा सर?
1: मैडम ठीक चल रही है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है।
0: चलिए अच्छी बात है, हमेशा ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए और अपनी मेहनत को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तो उसमें सफलता हमें मिलती ही है। और दोस्तों चलो भी प्यारा से गाना सुनते हैं अभी, फ्रॉम द मूवी तेरे नाम से लौट कर आती हूँ मैं।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और साथियों, समय हुआ है अभी 4:48 और हमारी अगली कॉलर भी वेट कर रही है, बहुत देर से इंतजार कर रही है, तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं अभी। हेलो फरमाइश। हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, नाम बताइए अपना।
1: मुरादाबाद जांगन से यास्मीन बात कर रही हूँ।
0: यास्मीन बात कर रही है, बताइए यास्मीन जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं करती, बस घर पे रहती हूँ और अम्मी के साथ थोड़ा काम वगैरह कराती
0: थी। अच्छा, तो कहाँ तक स्टडी की है आपने, पढ़ाई कहाँ तक की है?
1: पढ़ाई तो सिर्फ मैंने 7th क्लास तक की है अभी।
0: अच्छा अच्छा, ओके। तो रेडियो आप कब से सुन रही हैं यास्मीन, बताइएगा, कितना वक्त हो गया है आपको?
1: लगभग 3 साल हो गए।
0: ओके, 3 इयर्स हो गए हैं। तो बताइए, आज कॉल लगा है आपका, कैसा लग रहा है आपको?
1: अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद मेरा कॉल लग पाया, मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो मेरे पापा
0: को
1: था।
0: ओके, अच्छा, तो आपके परिवार में सभी रेडियो सुनते हैं और सब बहुत खुश हैं कि आज यास्मीन का कॉल लग गया है? अच्छा, तो आप बताइएगा आज अपनी मम्मी पापा की पसंद का है, फिर अपनी फैमिली की पसंद का कोई गाना जो सुनना चाहते हो यास्मीन।
1: गाना मेरे भाई की पसंद का है।
0: बताइए।
1: वो गाने के बोल हैं, आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है। और बताइएगा आपकी फैमिली में सब खैरियत से हैं?
1: अच्छे हैं, आप बताइए।
0: हाँ जी यास्मीन, यहाँ पर भी सब बहुत ही अच्छे हैं। तो ये प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं। अच्छा, घर में मम्मा के साथ आप हेल्प कराते हो, उसके अलावा और क्या करते हो, क्या शौक है आपके?
1: मेरे शौक हैं मेहंदी लगाने के और सिलाई वगैरह करने के।
0: अरे वाह, आप तो फिर मेहंदी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी लगाते हो। हाँ
1: हाँ,
0: हमारे भी कभी लगाइएगा हाथों में मेहंदी।
1: बिल्कुल,
0: ओके यास्मीन, थैंक यू, आपने हमें कहा। तो चलो अभी फिलहाल मोस्ट वेलकम डियर, सुनवाएंगे प्यार से गाना आपको। नाइस टॉकिंग टू यू, ख्याल रखो अपना अच्छे से। तो यास्मीन की पसंद का सुनते हैं प्यारा से गाना और इस वक्त उनकी फैमिली भी सुन रही है रेडियो। देखिए, रेडियो पर ना गाने सुनने की बात ही अलग है दोस्तों। हम कहीं भी गाना सुन लें, उसकी वाइब अलग है, लेकिन रेडियो की वाइब अलग है। बहुत अच्छा लगता है जब कॉल लगता है, घंटों फ़ोन लगाने के बाद फाइनली जब ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद जब कॉल रिसीव होता है, हेलो की आवाज़ आती है जब आरजी की, तो इतना खुश होते हैं ना कि पूरे घर को हम सर पे उठा लेते हैं, नाचने लगते हैं खुशी के मारे, सबको बताते हैं, भैया को, मम्मा को, पापा को, हमारा कॉल लग गया है आज हेलो फरमाइश में। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये फीलिंग जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, अमेजिंग। चलो, मैं बातें करना बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की हूँ, बहुत बातें करती हूँ। अभी गाना सुनते हैं, उसके बाद आपसे भी बातें करेंगी, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आपने अभी बहुत ही प्यारा गाना सुना फ्रॉम द मूवी क्रिश से सोनू निगम साथ में श्रेया घोषाल जी की प्यारी सी आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: ग्राम करेली, जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी बोल रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सर?
1: बहुत बढ़िया है, आप सुनाएं, आप कैसे हो?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: फरमाइश फिल्म का नाम है बुलहा।
0: हाँ जी,
1: और इसमें गीत है हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम,
0: ओके
1: सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत आपको। शुक्रिया आपने कॉल किया। तो चलिए एवरीवन, ये गाना तो हम सुनेंगे ही, लेकिन अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी आपको संडे को, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए, और इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर भी यहाँ पर आने वाली हैं, आरजे रीना जी, जो आपकी शाम को बनाएंगी और भी ज्यादा शानदार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। देखिए, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। जब जिंदगी में मुस्कुराते हैं ना, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए वो भी आसान लगने लगती है। और सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गन गनाते रहिए। और हाँ, तुसी टेंशन ना लो, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। बाय बाय।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: अवशेषों की वापसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहर को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता शाखाएं बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा का निर्माण किया गया है और अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। दिल्ली मंडल के रेवाड़ी दिल्ली और शाकुर बस्ती भटिंडा खंडों पर कवच प्रणाली का चौथा चरण लागू किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र लोकोमोटिव के तय समय पर होने वाले सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने के आह्वान किया था, जिसके बाद बालोद जिला जल संचयन जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने प्रस्तावित 8 वनों से कम 20% वृक्षारोपण औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए समर्पित करने या 2 वनों को समर्पित औषधीय वनों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित होगी। ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। इसका पुनर्प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। यह पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेरेव और यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। कल कैरोलिना मखोवा और लिंडा नुस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है कि हमने तुमको दिल दे दिया ये भी ना पूछा कौन हो तुम। जब पहली बार प्यार होता है तो हम ऐसे दिल दे बैठते हैं, कभी ये नहीं पूछते कि तुम कौन हो क्या नहीं हो, बस ये देखते कि पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, और अच्छा लड़का कुछ कर रहा हो तो फिर हम फिर नहीं पूछते भाई कहाँ से हो क्या हो कुछ नहीं, और उस प्यार में इतना मगन हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि जो इंसान हमें 2 दिन पहले मिला है वो ऐसा लगता है बरसों पहले से हम इसको जानते हैं, और उसके बिना मतलब 1 सेकंड भी नहीं रह जाते, ऊपर से कॉल मैसेज इतने कर देते हैं, ये कहते हैं ना इरिटेटिंग वाला, लेकिन वो इरिटेटिंग वाला प्यार नहीं होता, यानी कि वो केयर वाला प्यार होता है। सो आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए जी इवनिंग मस्ती शो में, 2 घंटे के लिए ढेर सारी बातें करेंगे। समय की बात करूँ तो 5:11 हो चुके हैं। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा प्यार जो भैया आप पहली बार मिले और पहली बार में ही अपना दिल घायल कर बैठे, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा प्यारा नंबर है 9837896896। और भैया आज का जो वेदर है वो बहुत ही फिंटास्टिक वाला है, क्योंकि मुरादाबाद के जगह जगह पर कहीं ना कहीं बारिश तो जरूर हो रही है। फिलहाल इधर नहीं है, यानी कि हल्का बूंदाबांदी है, लेकिन टेंशन मत लीजिए अभी बरसात जारी रहने वाली है। तो आज का क्या स्पेशल डे है, देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले श्रोताओं आपसे यही कहना चाहेंगे कि बस कितने नहीं जाना है जी, आज रीना के साथ कनेक्ट रहना है, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए एक प्यार से गाना सुनते हैं।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं
3: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है
3: कॉल 9045912348

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। कभी कभी श्रोताओं ऐसा होता है आपके साथ मैं गाइस, क्योंकि कभी कभी आप बिना गलती के भी आपको सुनना पड़ जाते हैं, और ऊपर से ये कहा जा रहा है, अच्छा तो इसकी बातों में आ रही है, बताऊंगा तुझे, आ घर तो मम्मी से पिटवाऊंगा तुझे, आ तुझे आज बताऊंगा मैं कि आपके साथ भी होता है गाइस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मतलब नहीं मन करता है कहीं जाने से, ऐसा मन करता है कि बस थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाओ, कोई हमें परेशान ना करे, बस हमें शांत माहौल चाहिए, थोड़ी देर रिलैक्स चाहिए। लेकिन उस रिलैक्स के बीच में ना अगर कोई बीच में एंट्री कर जाए और ऊपर से आपको सुना के दो बातें चला जाए, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? फिलहाल आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896। और देखिए, बरसात का मौसम है, गाड़ी होले होले चलाना है, हेलमेट और सीट बेल्ट बिल्कुल लगा के रखने हैं, और जो भी भाई साहब या फिर पापा की जो परी है वो अगर स्कूटी से जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, बरसात के मौसम में ना स्कूटी पर ज्यादा आपको सुपर फास्ट बन के नहीं दिखा रहे, क्योंकि स्कूटी के जो पहिए होते हैं वो स्लिप एकदम, अगर आप टर्न लेते हैं, वेव में चलाते हैं, तो वो कब स्लिप खा जाते आपको भी नहीं पता चलता है। इसीलिए ज्यादा इस बरसात के मौसम में ना स्कूटी के साथ बड़े प्यार से दोस्ती रखिए, तभी वो आपके साथ भी बड़ा अच्छा दोस्ती रखेगा, अदरवाइज आपको भी लेके डूबेगा और चोट भी लग जाएगी। इसीलिए स्कूटी को आराम से चलाना है। फिलहाल चलिए हम एक गाना सुनवाते हैं आप सभी को, बहुत ही शानदार वाला।

0: नेहा कक्कर की आवाज में भैया इनके जो गाने होते ना, माइंड ब्लोइंग, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल। एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजेरीना के साथ कनेक्ट है आप इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 5:29 हो चुके श्रोताओं, और आज की तारीख यानी कि 10 जुलाई अपने आप में बहुत ज्यादा और बेहद खास है, क्योंकि आज मनाया जाता है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। यानी कि उस ऊर्जा, सिर्फ बिजली नहीं बल्कि हर घर की रोशनी, हर सपने की उड़ान और हर देश की ताकत होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही ऊर्जा प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? कभी हम ये सोचते ही नहीं है। लेकिन आज का दिन हमें याद दिलाता है कि समय आ गया है पारंपरिक ईंधनों पर यानी कि निर्भरता कम करने का, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने का। एक छोटा सा कदम जैसे बेवजह लाइट बंद करना, ऊर्जा बचाने वाले उपकरण इस्तेमाल करना या फिर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना भविष्य को बेहतर बना सकता है। याद रखिए, ऊर्जा की बचत सिर्फ बिजली का बिल नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य रोशन करना भी है हमें। सो आज का दिन यानी कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे पर संकल्प लीजिए, ऊर्जा बचाइए, स्वस्थ ऊर्जा अपनाएं और हरित आत्मनिर्भरता यानी कि भारत बनने में अपना योगदान दे। और भी ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं, बस आरजेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। और आज मैंने आप सभी से बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है कि बेवजह कभी आप बैठे हो और एकदम कोई आके आपके ऊपर एकदम शोर मचाने लगे, आपके ऊपर डांटने लगे, डांट फटकार लगाने लगे, तो आपको उस टाइम क्या आपके दिमाग में चलता है कि यार बेवजह, मतलब आपने कुछ गलती भी नहीं की और फिर भी सुनना पड़ गया, आखिरकार क्यों ऐसा होता है? आप बता सकते हैं जी। नंबर है 9823789698296। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है श्रोताओं, लौट कर आते हैं इस स्टेशन पर, कहीं नहीं जाना आपने।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हेलो जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना इंजॉय किया है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से। देखिए जी, फर्स्ट क्लास ही रहना चाहिए आपके जिंदगी में, और आप भी यूं ही खुश रहे और अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। आज जो रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:41 हो चुके हैं। और आज यानी कि वेदर की बात कर लेते हैं कि भैया आगे वेदर कैसा रहने वाला है ना। हर किसी को बस यही टेंशन होती है कि कल का वेदर कैसा होगा, क्या बारिश होगी, क्या हल्की फुल्की धूप के हमें दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगले 4 दिनों तक जमकर बारिश होने वाली है। कहाँ कहाँ होने वाली, अरे जरा ध्यान से सुन लीजिए कि ये बारिश है वो कहाँ कहाँ होने वाली है, बहुत ही तेज रफ्तार में।
1: दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजर रही रहते,
0: यानी कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में भारी अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसमें मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल भी कनेक्ट इंक्लूड है भैया। और बारिश की अगले 4 दिन तक रेड अलर्ट है, तो जरा ध्यान दीजिए क्योंकि अगले अगले राज्यों में बारिश ज्यादा ही आने की संभावना जताई जा रही है अगले 4 दिन तक। तो बस इसमें, इस बरसात के मौसम में आपने ध्यान रखना है, जो काफी पुराना पुल है उस पर आपने बिल्कुल भी अपनी गाड़ी को नहीं लेकर जाना है, वहां से थोड़ा आपने कट ऑफ कर देना है जी, क्योंकि बरसात के मौसम में कुछ नहीं कह सकते हैं। और अभी इस टाइम बरसात के मौसम में अगर आप पहाड़ों में घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी यानी कि वेट कर लीजिए। फिलहाल अगर मैं बात करूं, भक्त यानी कि आस्था की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, और वैष्णो देवी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भैया ये सावधानी जता दी गई है जो श्रद्धालु है वहां पर जाने वाले, कि अभी कुछ दिन के लिए रुक जाइए, उसके बाद आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। बहुत जगह जगह पर यानी कि रेलवे स्टेशन की तरफ आप देखेंगे तो पटरिया, मतलब उसके नीचे से जो जमीनें हैं वो घिसक चुकी है, तो इसीलिए अगर आप कहीं लंबे रूट पर जा भी रहे हैं तो पहले सर्च करिए क्या उस रूट पर हमें जाना सही होगा या फिर कुछ और गड़बड़ है। ऐसी जगह पर आप जाने से बचे, खुले एरिया में जाने से बचे जहां पर बिजली के तारे वगैरह बहुत ज्यादा है, ऐसे समय पर यानी कि जब आंधी तूफान आए वहां पर जाने से बचे, क्योंकि आप जाने से बचेंगे तो सेफ रहेंगे। चलिए जी, ऐसे ढेर सारी बातें करते रहेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए और ढेर सारी बातें सुनते रहिए जी, और गाने भी, ओह क्या बात है जी, बातों के साथ साथ गाने होना तो बड़ा ही मजा आ जाता है जी। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि भैया हाँ एक गाना हम किसी को डेडिकेट करें, अरे तो बिल्कुल डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए उसके लिए तो मैसेज करना पड़ेगा, अगर मैसेज नहीं करेंगे तो कैसे सुन पाएंगे। चलिए फिलहाल आप सभी के लिए गाना है बहुत ही शानदार, अगर आप की जिंदगी में न्यू प्यार हुआ है या फिर पहले हो चुका है, ये गाना उनके लिए, क्योंकि जब उसकी लत लग जाती भैया तो वो छूटती नहीं है। तो चलिए गाना सुनते हैं।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और कुछ गाने इतने लाजवाब होते हैं ना भैया कि आप कैसे भी बैठे रहो लेकिन डांस करने का आपका मूड तो कर ही जाता है। फिलहाल आप आज जरीना के साथ कनेक्ट है हो और ऐसा ना हो कि आप डांस ना करें, पॉसिबल ही नहीं है भैया। कि कोई जब आर्जेरीना आती है तो हर किसी का वेट जरूर कम करवा देती है। समय की बात करूं इवनिंग मस्ती शो में तो 5:50 हो चुके हैं और एक बेहद बहुत ही फैंटास्टिक वाला अपडेट है, मैंने सोचा कि चलिए आप सभी तक पहुंचाना यानी कि बहुत जरूरी है। हम अक्सर परेशान रहते कि ओहो, हम जो मेडिसिन है वो लेने जाते हैं वो महंगे हैं या फिर सस्ते हैं, इस चीज का बहुत हमारे दिमाग में यानी कि खुराफात चलता रहता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जो डायबिटीज के मरीज है उनके लिए एक बड़ी राहत है। और वो बड़ी राहत क्या है, उनको हफ्ते में लगेगा सिर्फ एक इंसुलिन इंजेक्शन, जो कि जिसकी कीमतें है ना वो भी बहुत कम होने वाली है। तो देखिए, जो डायबिटीज के मरीज है उनके लिए थोड़ी सी राहत आ चुकी है। श्रोताओं, और भी ढेर सारी बातें करेंगे और अपनी मुलाकात होती रहेगी, बस आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। क्योंकि देखिए, आप सभी का कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इसी के साथ मेरे पास मैसेज भी आ गए हैं। हेलो रीना जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। और धूप निकल रही है हल्की हल्की, क्या बात है जी, हल्की वाली धूप निकल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ दीपक जी कनेक्ट हो गए हैं मुरादाबाद से। और इनका कहना है कि गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कि आप कैसे हैं? आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और इनका कहना है कि अभी ऑन द वे हूं और आपका रेडियो सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये मैसेज आता है हमारे पास यानी कि विवेक जी कनेक्ट होते हैं लाइन पार से। और इनका कहना है कि आपका रेडियो सुन रहा हूं, गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कि आप कैसे हैं? और फिलहाल श्रोताओं, कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून्ड रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जाँच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है आर्जुनी ने। एफएम मुरादाबाद 89.6 से रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो यानी कि 6:19 हो चुके हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई भैया। और अब हम बात करने वाले, देखिए ऑफिस से यानी कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है और

ऑफिस से घर आते ना तो कभी कभी तो इतना गुस्सा होता है कि बस भैया कोई मुझसे बोले ना। और कोई कोई तो ऐसे होते कि ठीक है यार, ऑफिस की बातें ऑफिस तक, घर की बातें घर तक, बस अपने को सुकून चाहिए और इस सफर को एंजॉय करते जाते हैं, है ना। पता है, बताए मुझे, यानी कि आपने क्या करना है, दिन भर की भागदौड़, मीटिंग्स, डेडलाइंस और जिम्मेदारियों के बीच अगर आप अभी ऑफिस से घर की ओर निकल चुके हैं तो सबसे पहले खुद को एक छोटा सा शुक्रिया जरूर कीजिए, क्योंकि आपने आज का दिन पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। जो भी आपने काम करा है वो पूरी ईमानदारी के साथ। और हाँ, मुझे पता है बहुत से लोगों के लिए घर पहुंचकर भी काम खत्म नहीं होता है। किसी को परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, किसी को बच्चों को होमवर्क देखना है, उनका होमवर्क करवाना है, किसी को यानी कि अगले दिन की तैयारी करनी है। लेकिन इस सब बीच में यानी कि अपने लिए दो पल जरूर निकालिए और इस सफर को जरूर एंजॉय करिए। अपनी मुस्कान को बिल्कुल भी पीछे ना होने दीजिए। और आज वैसे बच्चों की छुट्टियां थी, जिनकी सरकारी सरकारी छुट्टियां थी, क्योंकि इस मौसम को देखते हुए भैया यानी कि छुट्टी कर दी गई थी, तो आज तो वैसे बच्चों के बल्ले बल्ले हो रहे होंगे, है ना। पता है जी, क्योंकि जब पता चलता है कि भाई आज स्कूल की छुट्टियां हैं तो अलग ही मजा आ जाता है। और ये होता है ना कि छुट्टी वाले दिन हम जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन स्कूल जिस दिन जाना होता है उस दिन भैया ना ना ना, मम्मी चार आवाज लगाती रहती है लेकिन नहीं जाते हैं। चलिए जी, फिलहाल स्कूल जाना बहुत जरूरी है, जब छुट्टी हो जाए तो एंजॉय करिए, बस फुल ऑफ एंजॉय। फिलहाल एक और गाना आप सभी के बीच।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: हेलो जी, गर्ज वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ। समय की बात करूं तो 6:18 हो चुके हैं। और चलिए जी, आपको लेकर चलते हैं यानी कि बॉलीवुड के गलियों में। आखिरकार ये मूवी आपको कैसी लगने वाली है? इस मूवी का जो टीजर है वो बहुत ही जल्द यानी कि 18 जुलाई को रिलीज होने वाली है। आखिरकार आप ये सोच रहे होंगे ना कि कौन सी मूवी है भैया जिसका टीजर बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, यानी कि रणवीर कपूर की फिल्म और शाही पल्लवी जी उस मूवी में है, यानी कि रामायण फिल्म का जो टीजर है वो 18 जुलाई को रिलीज होने वाली है। तो आपको बताना है भैया कि टीजर, देखिए कोई भी मूवी हम देखने जाते हैं ना तो सबसे पहले हम टीजर देखते हैं, आखिरकार उस मूवी के अंदर है क्या। हम हर चीज सर्च करने के बाद ही मूवी देखने जाते हैं। तो ये जो मूवी है यानी कि रामायण, ये देखने के बाद ही पता चलेगा भैया कि ये मूवी कैसी है। फिलहाल तो बहुत अच्छा बताया जा रहा है, रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। और ये इसका टीजर यानी कि 18 जुलाई को रिलीज हो जाएगी और साथ ही साथ ये मूवी रिलीज होने वाली है दिवाली के मौके पर, यानी कि 6 नवंबर को रिलीज होने वाली सिनेमा घरों में भैया रिलीज हो जाएगी।

चलिए फिलहाल कुछ मैसेज उनको भी शामिल करते हैं। हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, वेरी गुड इवनिंग जी, कैसी है इवनिंग? मस्ते शो में बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। ललिता कश्यप जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि मैम हल्के हल्के धूप के साथ, यानी कि बारिश भी है हल्का हल्का, क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। और मैम चाय पी लीजिए। बिल्कुल जी, हम चाय पी लेंगे, आपने पूछ लिया और हमने चाय पी ली। और जैसे कि मैंने आप सभी से पूछा था कि बिना गलती के अगर आपको कोई डांटे तो आप उस टाइम क्या करेंगे, तो इन्होंने लिखा है कि मैम आपने पूछा था कि अगर बिना गलती के अगर आपको कोई डांटता है तो मैम बहुत गुस्सा आता है और फिर लगता है कि इससे बात ही नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए अब नहीं बात करूंगी, क्योंकि ये बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं, हमारे पास सुना रहे हमें, तो इसलिए उसे बात नहीं करनी है, क्या बात है।

और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं ईदगाह मुरादाबाद से सफी अहमद अंसारी सी अंसारी जी और इनके दोस्त हैं रईस दूला अंसारी। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? और शो सुन रहे हैं, बहुत ही शानदार पेश कर रही हो। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट सॉन्ग। ओके जी, अच्छा अच्छी बात है कि आपको पसंद आ रहा है। और ये आगे लिखते हैं, यानी कि वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलता है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलते अपनों के साथ, बस अपने हो अपने साथ मजा आ जाता है। चलिए जी, फिलहाल इसी के साथ धुरंधर मूवी से एक गाना, उसके बाद एक कड़क सवाल।

जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। क्योंकि देखिए, समय की बात करूं भैया तो 6:29 हो चुके हैं और अर्जुरीना के साथ अब कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और अब इसी बीच रीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है कड़क सवाल। और कड़क सवाल बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि जब ये बरसात शुरू होती है ना तो उनकी आवाजें आने लग जाती है, गूंजने लग जाती है। आखिरकार कौन है जिसकी आवाजें गूंजने लग जाती है? तो चलिए आज का कड़क सवाल जानते भैया कि आज का कड़क सवाल क्या है, क्या बेहद खास है इसमें, सुनिए जरा। ऊंट की बैठक, हिरन की चाल, अजीब है वह जानवर, दुम है ना बाल। आपने सोचना है और हमें मैसेज करना है, नंबर है 9837896896। अगर आपके आसपास कोई थोड़ा सा, यानी कि कहते कि तालाब हो या फिर जंगल टाइप का हो, तो वहां से बहुत ज्यादा इसकी आवाज आती है। और ये बरसात के मौसम में ही इसकी बहुत ज्यादा आवाज आती है। किस इसकी कैसी आवाज आती है वो अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन आपको इतना जरूर बता दिए कि बरसात के मौसम में ही इसकी बहुत ज्यादा आवाज आती है। यानी कि वंस अगेन एक बार और सुनिए आप। ऊंट की बैठक, हिरन की चाल, अजीब है वह जानवर, दुम है ना बाल। सोचिए आखिरकार क्या हो सकता है इसका राइट आंसर और हमें मैसेज करिए 9837896896 पर। आप राइट आंसर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं श्रोताओं। सोचिए, आय हाय, क्योंकि आज का जो आंसर है ना बहुत ही फैंटास्टिक वाला होने वाला है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं एक और गाने की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है भैया, बहुत ही शानदार।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। अर्जरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:39 हो चुके हैं भैया, यानी कि समय पूरी कगार पर है। और देखिए, आप सभी अगर नारियल पानी पीने के दीवाने हैं तो कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नारियल खरीदने जा रहे हैं, नारियल पानी अगर आप वहीं पी रहे हैं तो ठीक है, अगर आप खरीदने जा रहे हैं और घर के लिए ला रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सा नारियल पानी लेने से आपको उसके अंदर भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा, तो सुनिए जरा। क्योंकि हम नारियल पानी लेने तो चले जाते हैं और जो भैया हमें दे देते हैं वही लेकर घर पर आ जाते हैं, लेकिन आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो मैं बता रही हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बातें सिर्फ काम के लिए है जो नारियल खरीदने जाते हैं। सो देखिए, नारियल पानी खरीदते समय हमेशा लंबे या त्रिभुजा आकार के बजाय गोल और छोटे आकार का नारियल चुने। यानी कि कहा जाता है कि गोल आकार के नारियल के अंदर अधिक खोखलापन होता है, जिसमें उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। वही बड़े या त्रिकोणीय नारियल अगर आप लेते हैं तो उसमें कम मात्रा में नारियल पानी होता है। तो इसीलिए जब भी आप लेने जाए तो गोल वाला और छोटा नारियल आपने लेना है, जो कि अंदर से खोखला भी होता है और उसके अंदर आपको पानी भरपूर मात्रा में मिलेगी, ताकि आप नारियल खरीदेंगे और पानी पियेंगे बिना तो आपको सुकून मिलेगा कि चलो यार, एक गिलास तो भरपूर मात्रा में हमने पी लिया है। और साथ ही साथ आप मुझे देखिए, जो नारियल पानी हम पीने के बाद उसके अंदर आपने देखा होगा कि मलाई भी होती है, जो कि बहुत फैंटास्टिक होती है, वो और भी फायदेमंद होता है। बहुत से ऐसे हैं कि जो नारियल पानी पी लेते हैं लेकिन उसके अंदर का जो मलाई है वो कहते हैं कि नहीं यार, मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं से नहीं हो पाएगा ये। लेकिन उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, उसको भी हमें जरूर खाना चाहिए। देखिए, मुझे तो बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आप भी मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9823789689 श्रोताओ। और साथ ही साथ इसी के साथ आज का कड़क सवाल भी बहुत ही आसान है, आपने सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप ऐसे चुटकियों में आंसर दे पाओगे क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो। आज का कड़क सवाल है, यानी कि ऊंची ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजीब है वह जानवर, दुम है ना बाल, क्या है भैया जो बरसात में भी उसकी आवाज हमें हमारी कानों में सुनाई देती है। सोचिए और महसूस करिए, अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है, क्योंकि अभी समय यानी कि 6:41 हुए हैं, समय है आपके पास सोचने के लिए कि आखिरकार ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजीब है वह जानवर, ना दुम है ना बाल, कौन है वो, सोचिए। फिलहाल एक और गाना आप सभी के बीच, बहुत ही शानदार।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: हेलो जी, साथ चल। गुड वाली इवनिंग है और समय की बात करूं तो 6:49 हो चुके श्रोताओं, यानी कि अभी हमारे पास 10 मिनट है। आराम से आप सोच सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि एक चांस और आपके पास है, एक मौका और आपके पास है सोचने के लिए कि आज का जो कड़क सवाल है उसका आंसर कड़क क्या होने वाला है। फलक तक तो तभी साथ चलेंगे ना जब आप महसूस करेंगे श्रोताओं। और आज की कड़क सवाल है, ऊंट की बैठक, हिरन की चाल, अजीब है वह जानवर, दुम है ना बाल। जो बरसात के मौसम में हमें बहुत ज्यादा उसकी आवाजें सुनाई देती है, इंडिया में तो बहुत सुनाई देती है जी। सोचिए और एक मौका और आपके पास है। फिलहाल एक और शानदार गाना, उसके बाद आप सभी के मैसेज जरूर शामिल करेंगे।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जुरीना के साथ हैं जी, यानी कि इवनिंग मस्ती शो में। और चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज का कड़क सवाल फैंटास्टिक वाला मैंने आप सभी से पूछा है। ऊंट की बैठक, हिरन की चाल, अजीब है वह जानवर, दुम है ना बाल। चलिए जी, देखते हैं कि निका हमारे पास क्या मैसेज।

0: आंसर आता है ललिता कश्यप जी का मेंढक। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और आपके सवाल का उत्तर है मेंढक। आपके सवाल का आंसर है मेंढक। राधिका जी हम बेबी राधिका जी कनेक्ट होते हैं। विक्की सागर जी का कहना है कि अगर कोई बिना बात आपके ऊपर गुस्सा करे तो उसे कुछ देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। क्या बात है। और राइट आंसर है इनका मेंढक।
1: लबदी तुझे
0: शिवम कुमार हमारे साथ कनेक्ट होते हैं पीतल नगरी से। आपका जो सवाल है वेरी सिंपल है और इसका आंसर होता है मेंढक। ओके जय श्री राम। रीना जी क्या हाल चाल है आपके। बहुत अच्छे हैं जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से और इनका कहना है कि कड़क सवाल का आंसर है बबली अंजान। गीता कश्यप ललिता जी लक्ष्मी कश्यप मेंढक है जवाब।
1: सोता जट दो सराने गन्ना पर के।
0: रूपाली जी का कहना है कि मेंढक है। ओके आरती जी का कहना है कि मेंढक है। ओके जी आरती जी कनेक्ट हो गई है मुरादाबाद से। सुहानी जी का कहना है कि राइट आंसर होता है मेंढक। ओके चलिए जी आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज है उसके लिए धन्यवाद शुक्रिया। और हमारे पास यानी कि आज सबसे पहले कनेक्ट हुए थे अभी बताते हैं राइट आंसर आया था हमारे पास रणवीर सिंह जेठालाल जी का। तो आप होते हैं आज इवनिंग मस्ती शो के विनर। सो एंजॉय करिए और आप सभी ने राइट आंसर दिया है दिल से थैंक यू सो मच तहे दिल से। आप सभी का जो प्यार भरा मैसेज आता है मजा आ जाता है उनको शामिल करके। और श्रोताओं इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। हम आपके साथ मिलेंगे कल यानी कि मिलने वाले हैं मॉर्निंग में मॉर्निंग मसाला शो में क्योंकि कल है सैटरडे आज फ्राइडे यानी कि जो मेरा इवनिंग मस्ती शो है मंडे तो यानी कि फ्राइडे आता है और सैटरडे को यानी कि आप सभी के जो शो है मसाला यानी कि मॉर्निंग मसाला और फरमाइश शो में हम कल कनेक्ट होने वाले हैं। सो आपने जो भी गाना सुनना है बिल्कुल सोच लीजिए अपने पिटारे में उस गाने को स्टोर करके रख लीजिए क्योंकि कल जब भी हम कनेक्ट होए तो आप मैसेज कर सके कि हमें ये वाला गाना सुनना है। चलिए जी अभी के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर अपना ध्यान रखिए और इस बरसात में मच्छरों से जरूर बच कर रखिए और साफ पानी हो उसको भी ढक कर रखिए और जो गंदगी पानी है उसको सफाई रखिए घर के आसपास सफाई रखिए गमलों की सफाई रखिए ताकि कोई भी मच्छर ना पनप पाए। साथ ही साथ कूलर का जो पानी है उसको डेली चेंज करिए। ये नहीं कि आपने आज चेंज कर लिया तो कोई बात नहीं अगले दिन हम चेंज कर लेंगे ऐसा नहीं करना है आपको। कूलर की पानी डेली आपने ललिता कश्यप जी का कहना है कि मैंने पहले जवाब दिया था लेकिन आपसे पहले यानी कि यहाँ पे जेठालाल जी का मैसेज आ गया था जी। तो कोई बात नहीं विनर हर कोई बन जाता है कोई और हर किसी का मौका मिलना चाहिए और आज जेठालाल जी बनते हैं। तो एंजॉय करिए आप सभी और यूं ही अपने जिंदगी में रोक मचाते रहिए खुश रहिए। बाय बाय जी।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधा कृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
8: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
9: जी कैसे हालचाल है, नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आरजे आनंद के साथ मतलब अखिल भाई भी मौजूद हैं। तो अखिल भाई हेलो हेलो, कैसे हैं आप?
10: मैं बढ़िया हूं आनंद, और आप बताइए क्या?
9: मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आज का ये जो सेगमेंट है बहुत अच्छा होने वाला है। जब मैं अखिल भाई के साथ आता हूं तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता हूं। आज भी हम कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। स्पेशल हम लेकर नहीं आए, किसी स्पेशल पर्सनालिटी को ही लेकर आए, क्यों अखिल भाई?
10: बिल्कुल सही कहा।
9: एंड आज का ये जो शो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है कि जिंदगी जीने के लिए ना बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर एक सही डायरेक्शन मिल जाए, एक सही लाइफ कोच मिल जाए तो लाइफ जीने का मजा आ जाता है।
10: बिल्कुल सही कहा,
9: है ना?
10: और कोच भी ऐसा जो आपको उस वक्त पे आपका साथ दे जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत
9: है। एब्सोल्युटली, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है यार कि जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारे साथ हो। ऐसा होता नहीं है, हम इंडियंस के साथ तो बहुत कम ऐसा होता है। वेल, आज हमारे साथ एक ऐसे ही कमाल के पर्सन होने वाले हैं जिनसे हम ढेर सारी बातचीत करेंगे। एंटरप्रेन्योर हैं एंड लाइफ कोच हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी उनकी यू नो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो वो करते हैं, और कुछ लिखते लिखाते भी हैं
10: और खाते भी अच्छे हैं। सोनू अच्छा। निगम के भाई नहीं है मगर हैं पूरे निगम।
9: क्या बात है, जैसे मैं डांस करने में शाहरुख खान का भतीजा हूँ, वैसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो सोनू निगम के भाई नहीं है।
10: मगर
9: भतीजे मत बोलो यार, वो मेरा टैग है, चाचा भतीजा है। एनीवेज, थोड़ा भी बताओ यार अखिल भाई उनके बारे में, बाकी तो फिर हम उनको ऑन एयर करने वाले हैं अभी।
10: उनके बारे में मैं चाहूंगा कि उन्हीं से ज्यादा अच्छे से पता चले।
9: ये तो यार आपने बहुत अच्छा बोला है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि अगर किसी अच्छी पर्सनालिटी को हमने बुलाया तो उनका वार्म वेलकम करने के लिए उनसे जानना बहुत जरूरी है ना। तो आइए मुरादाबादीज आपको मिलवाते हैं अमेजिंग लाइफ कोच
10: शोधम निगम जी।
9: निगम जी क्या बात है, हेलो सर, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद, कैसे हैं आप?
11: बिल्कुल बढ़िया आनंद एंड अखिल, इतनी सारी बढ़ाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज बताना चाहूंगा
9: जी, जी
11: अपने सारे मुरादाबादी भाइयों को कि मुरादाबाद मेरी ससुराल है और अरे, बहुत करीब है।
10: इन्होंने पहले ही बम फेंक दिया है, बोले भाई साहब कोई कुछ मेरे लिए कह मत देना, तुम मेरा ससुराल है ये।
11: हाँ जी, और अखिल हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं।
9: अच्छा जी, क्या बात है, तो ये दोस्त को क्रेडिट देना तो बनता है
11: जी।
9: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पुरुषोत्तम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिल और आनंद के साथ। मुरादाबाद की जनता आपको सुन रही है, सबसे पहले अपने हालचाल जरा साझा करें हमारे सुनने वालों के साथ।
11: बिल्कुल बढ़िया हूँ, और मैं सभी मुरादाबादियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत तरक्की मिले उनके करियर में, उनके बिजनेस में, जैसा वो चाहते हैं वैसा मिले उन्हें।
9: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, नो डाउट।
11: क्यों अखिल, गाना भी गाते हैं भाई?
9: हाँ, मुझे पता लगा, वो तो डेफिनेटली आपसे फिर सुनेंगे ही,
10: जाते जाते इनसे एक आध नगमा तो जरूर।
9: एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा पुरुषोत्तम जी आपके बारे में, हमारी जनता को थोड़ा सा अपने बारे में आप प्लीज बताएं।
11: सिंपली बताऊं भाई तो बड़ा सीधा साधा जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ।
9: क्या बात है,
11: एक ही मोटिव है मेरी लाइफ का कि जो कुछ भी मैं सीखता हूँ वो मैं दूसरों को सिखा दूँ, लोगों की हेल्प करूँ। और एक मिशन लिया है मैंने अपना लाइफ टाइम, जिसमें मैं 10 मिलियन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। और मिशन आप जानते हो आजीवन होता है।
9: बिल्कुल,
11: जब सांस चलेगी तब तक किसी ना किसी की हेल्प जरूर करता रहूँ।
9: और
11: आप जैसे लोगों की इसका साथ मिल जाए उसके थ्रू ये कारवां बढ़ता रहेगा, क्योंकि अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत सारे लोग चाहिए अपने साथ।
10: जरूर जरूर,
9: बिल्कुल ऑलवेज सर। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लेते हो तो उसमें बिल्कुल बहुत मैटर करता है आपके लिए, आपके साथ वो लोग जो आपको एक टीम की तरह कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट दे, और मिलके वो चीज को किया जाए तभी वो सफलता भी मिलती है।
11: जी बिल्कुल
9: बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हमने यहाँ पे जिक्र किया एंटरप्रेन्योर, उससे भी इम्पोर्टेंट बात हमने लाइफ कोच का जिक्र किया, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे।
11: देखिए मेरा मानना ये है कि इंसान जो है बहुत ही अनमोल क्रिएचर है, भगवान की जो कहते हैं ना सबसे खूबसूरत जो उन्होंने रचना करी वो इंसान की करी। इंसान करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, दुनियादारी में बहुत उलझा हुआ है, जो मैं देख पा रहा हूँ आज के टाइम पे कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, आपस में ही झगड़े कर रहे हैं, और पैसों के लिए, और कभी कभी तरक्की के लिए, कभी कभी खुशियों के लिए।
9: करेक्ट करेक्ट,
11: लोग परेशान है, किसी के पास बहुत पैसा है वो खुश नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं

0: बंदे की वो जहाँ पर हैं, कहाँ पर वो खड़े हैं और कहाँ पर उन्हें जाना है, उसके बीच में क्या गैप है, उस गैप को अगर मैं फिल कर पाऊँ तो वो मेरा मोटिव है। और इसी में मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैंने बुक भी लिखी है।
1: अरे वाह
0: जी,
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम जी, अभी तक आपने जो भी बातें बोली है बड़ी रिलेटेबल है और मुझे लगता है कि रेडियो सुनने वाला हर दूसरा इंसान अपने आप को रिलेट करेगा। एंड आई एम श्योर ये सबकी लाइफ का पार्ट है कि किसी के पास बहुत कुछ है फिर भी वो परेशान है, जिसके पास बहुत कुछ नहीं है वो भी परेशान है। अब परेशानी तो दोनों तरफ है, लेकिन अब ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन कैसे लेकर आए जो एक्चुअली उसे चाहिए।
0: एक छोटी सी टिप दूंगा।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: जब भी परेशान हो फोन स्विच ऑफ करिए, घर में बता दीजिए कि थोड़ी देर के लिए कोई मुझे तंग ना करे।
1: बहुत बढ़िया।
0: एक पेपर और

0: वहाँ जाइए, अगर आप अपने शहर में हैं तो वहाँ बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठिए, सोचिए अपने बारे में कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मेरा लाइफ का जो गोल है वो क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे खुशी देती है। अगर वो दोस्तों का साथ है पर वो नहीं मिल पा रहा है तो अपने दोस्तों को फोन करिए, उनसे बात करिए, अपना दुख साझा करिए। कई बार होता है आप अपनी पत्नी को नहीं बता पाते लेकिन अपने दोस्तों को बता देते हो।
1: Absolutely.
2: तो पुरुषोत्तम जी, जो आपने किताब लिखी है ले ऑफ करके,
0: हाँ जी,
2: एज अ डिजास्टर और अपॉर्चुनिटी, तो कृपया, एक तो होता है ना क्या, जैसे कभी कभी एक मैसेज आ जाता है या एक मेल आ जाता है आपके पास कि नाउ यू आर लेड ऑफ, तो जैसे ये शब्द आ जाते हैं तो एकदम कहते हैं ना, दूसरे बंदे की तो दुनिया हिल जाती है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, उसके तो रातों रात उसे दिन में तारे दिख जाते हैं।
2: हाँ, तो ये जब ये चीज होती है तो क्या किसी घटना ने आपको प्रेरित किया ऐसा कुछ लिखने के लिए या

0: था आपके पास ये, आपको मोटिव कहाँ से मिला कि इस तरह का जो आपने लिखा और इतना अच्छा लिखा?
1: तो बताना चाहूँगा अखिल भाई और आनंद भाई,
0: हाँ जी,
1: जो आपने बोला वो मेरे साथ 3 बार हुआ है।
0: ओके।
1: मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और जितनी बार भी मेरे साथ में ले ऑफ हुआ उतनी बार फॉर श्योर कहीं ना कहीं झटका लगता है कि यार आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हो कई बारी कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं केपेबल नहीं हूँ इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन 99.9% आपकी गलती नहीं होती है। कई बार ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन छटनी कर रहा है क्योंकि उसको

0: जिस कंपनी ने मुझे अवार्ड दिया था उसी कंपनी ने मेरे को बोला कि अब आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है। ध्यान से जब मैंने सोचा, क्योंकि पिछले जो 20 साल में 3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार हर बार पुरुषोत्तम आपने बाउंस बैक किया है, हर बार ही उस एडवर्सिटी से, उस प्रॉब्लम से आप निकले हो और एक उभर के निकले हर बार ही, तो आपने अपने लिए जो काम किया, आपने अपने को इम्प्रूव किया और आपने अपनी हेल्प करी, तो व्हाई नॉट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से मैंने किताब लिखनी शुरू करी कि जिन लोगों का भी ले ऑफ हो रहा है उनकी मेंटल स्टेट क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टेट क्या है और उनको कैसे वहां से उभरना है, कैसे वो उस एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही मैंने इसीलिए टाइटल डाला ले ऑफ डिजास्टर और अपॉर्चुनिटी। आप कैसे देखते हो उसको, आप उसको डिजास्टर में देखते हो या आप उसको अपॉर्चुनिटी में देखते हो? और इस पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप सब लोग मुरादाबादी हैं तो क्रिकेट के शौकीन होंगे आई बिलीव।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
0: तो अपने एक बड़े घातक बैट्समैन हुए हैं वीरू पाजी।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: वीरू पाजी जो थे, वीरू पाजी से पूछा गया कि यार आपसे कैसे मार लो यार इन लोगों को, बॉलर्स को।
2: हाँ।
0: टेस्ट मैच में भी आप वैसे ही खेलते हो, आप T20 भी वैसे ही खेलते हो, क्या राज है आपका? तो वीरू पाजी कहते हैं कि देखो भाई, जब टेस्ट मैच में बॉल नहीं होती है, मैं हूँ ओपनर, ठीक है, मैं बॉल को दो तरह से पुराना कर सकता हूँ, या तो मैं उसे छोड़ता जाऊँ या फिर मैं उसे पीट पीट के पुराना कर दूँ। तो उन्होंने बोला मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, आप जब टेस्ट मैच में नई बॉल खेलने आते हो तो बॉलर जो होता है स्विंग करा रहा होता है दोनों साइड, इन स्विंग आउट स्विंग, ठीक है, पीछे आपके स्लिप लगी होती है ढेर सारी, ठीक, और वो चाहते हैं कि बॉल आप मारो जिससे कि बॉल आपके बैट पे लगे और पीछे जाए, कैच हो जाओ या बोल्ड हो जाओ। वीरू पाजी ने बोला कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, आपने सारे प्लेयर पीछे लगा रखे हैं, सामने खाली छोड़ा हुआ है, मैं मारूंगा।
2: बिल्कुल सही।
0: और उन्होंने सामने मारना चालू किया और मार मार के उन्होंने जब रन बनाने शुरू किए तो बॉलर परेशान हुआ। बॉलर ने बोला यार अब तो ये सामने मार, अब मैं सामने लगा देता हूँ। उन्होंने जैसे ही सामने प्लेयर लगाया, उन्होंने बोला वेरी गुड, मेरे लिए पीछे मारने की अपॉर्चुनिटी है, अब मैं पीछे अपर कट मारूंगा। तो उन्होंने पीछे मार के उसकी पिटाई करी। तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हो। नई बॉल से अगर आप डर रहे हो कि कहीं एज ना लग जाए, कैच आउट ना हो जाओ, तो आप डरते रह जाओगे। पर अगर वीरू पाजी वाला एटीट्यूड ले लोगे कि नहीं मारूंगा मैं, देखी जाएगी,
2: मैं तो फ्रंट पे आके खेलूंगा,
0: यस, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी बना लोगे। अब मैं देखो, मैंने बेस्ट सेलिंग बुक लिख ली, बेस्ट सेलर बन गई अमेज़न पे। किसी ने सोचा नहीं था कि एक इंसान जिसका ले ऑफ हो जाएगा वो किताब लिख देगा और आज वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, लोगों की हेल्प करेगा। शायद एक टाइम को मैंने भी नहीं सोचा था, बट पैक लेना शुरू किया और हो गया।
2: नहीं नहीं, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि क्या कहते हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप उसे एज अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं या फिर उसे आप ऐसी छोड़ से डर के आप पीछे हट जा रहे हैं। तो इसी के साथ एक दूसरा सवाल और है हमारे साथ आपके लिए कि ये है कि ये जो आपने किताब लिखी थी, या क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी नौकरी चली गई है, या हर वर्किंग प्रोफेशनल को भी इसे पढ़ना चाहिए?
0: ये किताब हर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, इवन स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें एक चैप्टर मैंने डाला है कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस। अगर आप किसी बीमारी को, किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करते जाते हैं तो वो बढ़ती जाती है।
1: करेक्ट करेक्ट राइट,
0: है ना। तो ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ को, अपने करियर को संवारना चाहता है। अगर प्रॉब्लम में है, ले ऑफ होने वाला है या ले ऑफ हो चुका है, तो भी पढ़ ले। और गारंटी है मेरी इस बात की, जिसको जिसको मैंने ये किताब दी है, किताब खत्म होने से पहले उसकी नौकरी लग गई है।
2: क्या बात है साहब, तो ये तो मैं सोच रहा हूं।
1: अखिल भाई और मैं प्लान कर रहे हैं कि इस किताब को हमें पढ़ लेना चाहिए और खरीद लेना चाहिए, अखिल भाई, है ना। मुझे लगता है कि हमारा भी लक काम कर जाए।
2: नहीं, तुम इस पे वो वाला गाना चला सकते हो, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर
1: ये जो पुरुषोत्तम जी ने लिखी है ना, ये वाली नहीं पढ़ी होगी, इसे पढ़ लिया तो लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी। वेरी नाइस।
0: आप एड्रेस भेज दो भाई, मैं भिजवा दूंगा।
1: ठीक है, एड्रेस बहुत सिंपल है, आपकी ससुराल में आप आते हैं तो यहाँ रामलीला ग्राउंड तो आपने देखा ही होगा, एफएम मुरादाबाद तो फिर आपको पता चल ही जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सो थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अखिल भाई आपसे ढेर सारे क्वेश्चन की बारिश कर रहे हैं, एंड एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ ना सर?
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
1: ठीक है, मैं एक्चुअली ये आजकल आपको पता है लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा लोगों का बिजी है, एंड इसी बीच लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है जॉब का। जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी दिमाग में ये रहता है यार कहीं जॉब ना चली जाए, जॉब चलेगी तो मैं क्या करूंगा, कैसे अपने आप को फिर मैं यू नो मतलब दोबारा से खड़ा करूंगा, बहुत सारी अलग अलग क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं।
2: इनसिक्योरनेस
1: इनसिक्योरनेस हाँ एग्जैक्टली। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, किसी की मतलब किसी के पास जॉब तो है बट वो फिर भी अभी भी सुरक्षित है या नहीं आपको, और अगर उसकी जॉब चली जाती है तो ऐसे में वो क्या करे?
0: देखिए भाई, जॉब सिक्योरिटी आजकल बिल्कुल खत्म हो गई भाई जॉब सिक्योरिटी जैसा कोई वर्ड रहा नहीं है। हमारे पापा लोगों के टाइम पे होता था, वो लोग बोलते थे कि यार सरकारी नौकरी लग गई, अब तो मैं यहीं से रिटायर होऊंगा। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सरकारी नौकरियां बची नहीं है, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी तो आप भूल जाओ। जो मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, एक वर्ड है आई,
1: ओके,
0: आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। आप ये सोच के चलो कि अपनी लाइफ का मैं सीईओ हूँ, आई एम द सीईओ ऑफ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ है। और जब आप जॉब करते हो ना यार, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हो किसी को,
1: राइट।
0: आप अपना टाइम बेच रहे होते हो, उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको सोचना ये है कि मैं अपना टाइम, जो 8 घंटे का टाइम बेच रहा हूँ, इस टाइम को मैं कैसे वैल्यूएबल बनाऊं, मैं खुद कैसे इतनी वैल्यू क्रिएट कर दूं कि या तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कमा के दे ढेर सारा पैसा, या मैं उसको बचा के दे दूं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो काम, जितने भी रिपीटेटिव काम है, जैसे कोई इंसान क्लर्क है, क्लर्क का काम AI कर सकता है। अगर वो दिन भर एंट्री कर रहा है तो वो एंट्री AI से भी कराई जा सकती है। अगर कोई कस्टमर के है और वो कॉलिंग कर रहा है, तो उसको हटा के आप वॉइस वाला आप चैटबॉट लगा सकते हो,
2: वॉइस मॉड्यूल
0: लगा सकते हो, जिसमें वो बिल्कुल आपकी आवाज में बात करेगा और वो थकेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं, उससे 24/7 365 आप काम करा सकते हो उससे, ठीक है। तो आदमी को तो आपने रिप्लेस कर दिया AI से। तो आदमी अपनी वैल्यू कैसे दिखाए, वैल्यू वो ऐसे दिखाए कि जो काम AI नहीं कर सकता वो काम वो करे, और वो काम ऐसा करे जिससे कि वो कंपनी को कमा के दे या फिर बचा के दे। और मेरा जो सजेशन रहता है प्रोफेशनल्स को कि किसी भी कंपनी में 2-3 साल से ज्यादा मत रुको। रुकने लग गए तो आदमी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा, बोलेगा यार ये तो कहीं नहीं जाने वाला, इसको पैसे भी मत बढ़ाओ, ये कम्फर्ट में है, पढ़ा रहे हम तो इसे।
1: राइट, एब्सोल्युटली सही कहा आपने। जी अखिल भाई, आप तो कुछ पूछने वाले हैं।
2: ये बात तो आपने बहुत सही कही कि अगर कहीं भी आप 2-3 साल काम कर रहे हो तो उसे आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, मतलब कहीं और दूसरी जगह लोकेशन अपनी बदली, अपनी वर्क प्रोफाइल बदली। मगर क्या पता कि वो 2-3 साल काम करते करते उसे भी एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि चलो यार इस कंपनी में मेरी तो कुछ वैल्यू है और मैं जो है यहाँ से और भी ग्रोथ ले सकता हूँ।
0: अब इसमें आता है एक वर्ड, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने विजिबल हैं। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन 1000 लोगों का है और टॉप 3 लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चला रहे हैं ऊपर से, तो क्या आपकी विजिबिलिटी उन 3 जनों तक है? अगर आपको लग रहा है आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या वो सही लोगों के कानों में पहुंच रही है वैल्यू की? ये इंसान अखिल आनंद पुरुषोत्तम, ये इस टाइप के लोग हैं जो कंपनी के लिए बड़े वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, इनको हटाने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा।
1: राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने।
0: ये करना पड़ेगा अगर आप रुकना चाहते हैं किसी कंपनी में, लॉन्ग टर्म में करियर बनाना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आपकी विजिबिलिटी है और जहाँ से आपने शुरू किया था उस सीढ़ी पे आप नहीं है, उस पायदान से आप कई स्टेप ऊपर जा चुके हैं, तब आप समझिए कि आप ग्रोथ पाथ में हैं। अगर आप वहीं फंसे हुए हैं, भले ही सैलरी बढ़ रही है, डेजिग्नेशन नहीं चेंज हो रहा, आपका सीईओ आपको नहीं जानता, तो भाई किसी भी दिन भी साफ कर दिया जाएगा, ऊपर से एक मेल आएगी और कौन पुरुषोत्तम, कौन आनंद, कौन अखिल, कोई नहीं जानता।
1: राइट, एब्सोल्युटली सही कहा आपने।
2: तो ये बात तो रही कि अगर हमें अपने आप को कम से कम इतो कंपनी में, उस प्रोफेशनल में अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा कि कम से कम जो टॉप नोच है वहाँ के लोग, तो वो हमें अपने उसमें उनकी नजर में हम हमेशा रहें। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आज नौकरी खो चुका है, ठीक है, या अपने करियर में खूब स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो क्या कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसे वो फॉलो करके वापस उसी मुकाम पे पहुंचे या वापस अपने आप को स्टेबल करे?
0: बिल्कुल है अखिल भाई, बड़ा सिंपल सा तरीका है
1: जी,
0: ठीक है। आप मुरादाबाद में बैठे हो,
2: हाँ,
0: आपको अगर दिल्ली आना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए?
2: हमारे पास कोई ना कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट मीडियम होना चाहिए जिससे हम दिल्ली पहुंच सके।
0: वेरी गुड, प्लस आपको दिल्ली पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए।
2: हाँ, ये तो जरूरी है,
1: सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है है ना
0: सर। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ और दिल्ली कितनी दूर है।
1: राइट,
0: ठीक। अब मैं कौन सा ट्रांसपोर्ट ले सकता हूँ जिससे मैं बिल्कुल फास्ट पहुँचूँ? तो अगर मुरादाबाद से दिल्ली की फ्लाइट उड़ती है कोई, तो उस फ्लाइट पे आप फास्टेस्ट तरीके से पहुँच सकते हैं, ठीक है।
2: बिल्कुल सही।
0: तो जो सिंपल 3 स्टेप है वो आपको बता देता हूँ, ये हमारे दर्शकों के लिए भी है। सबसे पहला काम करिए, एक पेपर लीजिए, पेपर में आप बनाइए 3 गोले,
2: ठीक है,
0: एक गोला अंदर, उसके ऊपर एक गोला, उसके ऊपर एक गोला, तो 3 गोले बना लिए। सबसे अंदर वाले गोले में लिखिए अपना गोल, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली, ठीक है। उसके बाद लिखिए असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, मतलब मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ। और थर्ड गोले में आप बनाइए एक्शन, मुझे एक्शन क्या लेना है. तो सेटिंग द गोल नंबर वन, सेल्फ असेसमेंट नंबर टू, टेकिंग द एक्शन, स्टार्ट टेकिंग द एक्शन, दिस इज नंबर थ्री. इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए, अपना गोल डिसाइड कर लीजिए मेरे को कहाँ जाना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. एक आदमी कहता है कि मुझे ना 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी चाहिए, वो एक ये गोल बनाता है. ठीक है, और वही दूसरा इंसान बोलता है कि मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी चाहिए जो कि मैं 6 महीने में करूंगा और मेरी डेजिग्नेशन XYZ होगी. मान लो सॉफ्टवेयर बना रहा है तो सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा, मुझे 5 लोगों की टीम रिपोर्ट करेगी. इस गोल में क्लियर कट आपने टाइमलाइन सेट करी है, कितना पैसा कमाना चाहते हो वो सेट किया है आपने, और इसके साथ में आपने ये सेट किया है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे होगे आप. ठीक है,
2: ठीक है.
0: तो गोल सेटिंग जब आप करते हो तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए. उसके बाद आपको ये पता करना चाहिए आप कहाँ खड़े हो, अभी वहां तक जाने के लिए आप पे गैप्स कितने हैं, क्या सीखना पड़ेगा आपको, क्या लर्निंग है, और उसके लिए जो भी सीखना है आपको उसके लिए क्या एक्शन लेने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि अगर फ्लाइट से उड़ना है तो आपको फ्लाइट देखनी पड़ेगी, कौन सी फ्लाइट पकड़ूं जो जल्दी से पहुंचा दे. आप जाने को साइकिल से भी जा सकते हो, रिक्शा से भी जा सकते हो, और स्कूटी से और कार से भी जा सकते हो. बट अगर फास्टेस्ट वे चाहिए तो शायद कहीं ना कहीं आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, एक गाइड की जरूरत पड़ेगी जिसने कई लोगों को ट्रांसफॉर्म किया हो, ऐसे ही लोगों को वहां से उठा के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया हो और बहुत कम टाइम में पहुंचाया हो. क्योंकि आप अपने आप भी कर सकते हो सारी चीजें, लेकिन अगर गाइड मिल जाता है तो आपको स्पीड मिल जाता है. तो ये है.
2: ओके ओके, तो जरूर मतलब यही होता ना कि गुरु का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पता चलता है कि हाँ एक लाइफ में गुरु तो ऐसा होना ही चाहिए जो कम से कम आपको इतना तो गाइड करे कि हाँ भाई आप किस स्पीड से और कहाँ तक पहुँच रहे हो.
1: बहुत बहुत सही करने. एंड मुझे ऐसा लगता है अभी तक जितनी आपने बातें कही है ना पुरुषोत्तम जी, उसमें से मुझे लगता है कि 99% हर वो बात है जो हर दूसरा इंसान रेडियो के बाहर सुन के रिलेट कर रहा है आपकी बातों से. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो आपने ऐसे भी बोल दी है इसमें जो मुझे लगता है कि सिर्फ इंसान दिमाग में सोचता है, कभी वो अपने जहन में सोचता रहता है जुबान पे नहीं ला पाता है. जैसे अभी जॉब के बारे में आपने ढेर सारी बातें बता दी, आपने लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें बता दी. अच्छा, आजकल की लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है, बहुत सारा स्ट्रेस है लोगों की जिंदगी में, है ना. लोग खुश तो है लेकिन खुश होके भी खुश नहीं है. जो लोग बेवजह की ओवर थिंकिंग करते हैं, बेवजह का टेंशन स्ट्रेस लेते हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे.
0: भाई बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल सा टिप है.
1: आपके पास हर चीज के प्रैक्टिकल और सिंपल ही टिप्स कैसे होते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मुझे ये भी जानना है आपसे कहाँ से आ रहे हैं.
0: मैं बड़ा सिंपल इंसान हूँ. मैंने जब पढ़ना शुरू किया था तो
1: हाँ जी
0: मुझे बड़ी पिटाई पड़ती थी यार घर पे. मैं बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती थी, उन्हें समझ नहीं पाता था. पापा कई बार होता था, एक दो बार जमा देते थे, कानों को मेट दिए जाते थे.
1: हाँ जी हाँ,
0: मैं सोचता था यार मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ. फिर मुझे ये समझ आया कि यार तुमको सिंपल चीजें समझ में आती हैं तो तुम चीजों को स्टोरी के फॉर्म में या कोई सिंपल से एग्जांपल्स के फॉर्म में रिलेट करके समझ लो और वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा. तो वही चीजें मैंने अपने अंदर एक तरह से अडेप्ट कर ली और वैसे ही मैं समझा भी देता हूँ लोगों को, इस वजह से लोग रिलेट कर पाते हैं. तो आपका जो क्वेश्चन है कि स्ट्रेस बहुत है और ये सारी समस्याएं हैं, भाई स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यू आर अ कंटेंट कंज्यूमर.
1: ओके,
0: दिन भर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, फोन आपका आपके साथ में है, दिन भर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसमें 80% 90% थिंग्स आर नेगेटिव, वो आप कंज्यूम किए जा रहे हो और उससे आपकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है. आप इसका उल्टा कर दो, आप कंटेंट बनाना शुरू कर दो. अब अखिल हैं और आरजे आनंद हैं. अखिल आरजे आनंद कंटेंट कंज्यूम करने से ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं.
1: बिल्कुल राइट.
0: तो अखिल और आनंद अपना पैशन जी रहे हैं.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: ठीक है
1: करेक्ट.
0: उसमें उनको मजा आ रहा है, वो लाइफ में हैप्पीनेस है उनके.
1: ट्रू.
0: ठीक है
1: बिल्कुल. तो लाइफ जीने का बेसिकली एक मोटिव है हमारे पास, यू नो कह सकते हैं.
0: खुशी आपको तब मिलेगी जब वो इंटरनली आए. कुछ आप ऐसे काम करें जिसमें आपको आपका मन कहे कि हाँ ये काम मैं बिना रुके बिना थके कंटिन्यूस कर सकता हूँ, इसमें मुझे बहुत मजा आता है.
1: राइट राइट.
0: और ऐसे ही आप बिजनेस बनाते, कोई भी बिजनेस आप देखो तभी सक्सेसफुल होगा जब उसमें फाउंडर जो है ना बिल्कुल ऐसे इन्वॉल्व है जैसे बिल्कुल उसने एक दिल एक जान कर दिया है सारी चीजों को.

एम्प्लॉयर आपको ले नहीं रहा है. एम्प्लॉयर चाहता है, जैसे आप होता है ना रील, रील इंस्टेंट चल जाती है, एक बटन दबाओ चल जाती है, वैसे ही आजकल नौकरियों में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो मांग रहे हैं प्लग एंड प्ले टैलेंट, इंस्टेंट. आप आओ, आप आके तुरंत परफॉर्म करना शुरू करो, मैं आपको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा सिखाऊंगा नहीं. अब वो काम कोई तो करेगा ना भाई, तो वो काम करने के लिए एलिवेट्स है,

0: ये तो हम करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए. अब इसी में जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनमें भी गैप होते हैं. बिकॉज जो रुका हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी हमेशा गंदा हो जाता है. आप एक लेवल पे सीखना छोड़ देते हो, इसलिए आपकी ग्रोथ रुक जाती है. तो हम उन्हें हेल्प करते हैं. इसके साथ में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेशनल अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो हम उनके साथ एनालाइज करते हैं कि वो जिस बिजनेस में हाथ डालने की सोच रहे हैं, क्या वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, वो रेवेन्यू कैसे लाएंगे, उसमें वो सेल्स कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो सारा ज्ञान हम उन्हें देते हैं. और अगर उन्हें और हमारी हेल्प लगी है तो उसमें हम उनको पूरा सपोर्ट कर देते हैं. उन्हें जो टूल्स चाहिए होते हैं, जो स्किल्स चाहिए होते हैं, वो भी हम दे देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो लोग अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएं. तो इस तरह से हम लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों की.
1: क्या शानदार सोच है आपकी. तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि ले ऑफ जो है आपकी पहचान नहीं है. आपकी पहचान है आपकी सोच, आपकी मेहनत और दोबारा उठ खड़े होने का साहस. तो निगम जी, चलने से पहले एक छोटा सा नगमा तो आपने जो कहा था हमने शुरुआत में कि आप सुनाएंगे.
2: तो फिर हम जाने भी नहीं देंगे ना फिर ऐसे. हाँ. बिना सुने हम भी तो सुने. हमारे जो निगम साहब है वो मुरादाबाद में उनकी ससुराल है. कितना मुरादाबाद को जो है वो आज नचा के जाएंगे या फिर उनको एंटरटेन करके जाएंगे.
0: बिल्कुल जी.
2: जी
0: दो गाने सुना देंगे, ऐसी क्या बात है.
2: जी बिल्कुल. अभी आप एक सुनाइए पहले, हम चेक करेंगे.
0: आप मना नहीं कर पाएंगे दूसरे.
2: अरे वाह, क्या बात है सर. बिल्कुल
0: चलिए. अभी ना जाओ छोड़ कर

0: वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया आज तो,
0: बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, वाह वाह वाह वाह,
2: क्या बात है।
0: तो बहुत मजा आया प्रस्तुति आपसे बातचीत करके, मतलब हमें लग रहा है कि हमें और लाइफ के फंडे जानने चाहिए और मंत्रा लेना चाहिए, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है हमें। सो वेल, बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे ऐसा लगता है अखिल भाई कुछ चीजें बात के लिए भी बचा के रखनी चाहिए,
1: और जरूर हम जो है एक और दोबारा एक सेशन करेंगे अपने निगम पुरुषोत्तम जी के साथ।
0: डेफिनेटली। अच्छा पुरुषोत्तम जी, बहुत सारे लोग जो किताब के बारे में जिक्र कर रहे थे, जो मैं आपसे मैजिकल किताब लेने की बात कर रहा हूँ, जिसे पढ़ने के बाद लाइफ सेट होने की बात हो रही थी अभी, बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे हम भी लें, हमें भी मिले, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस बुक को, कैसे वो पकड़ सकते हैं अपने हाथों में?
2: आप अमेजोन पे जाइए, उस पे लिखिए ले ऑफ, लिख दीजिए मेरा नाम आ जाएगा, बुक आ जाएगी।
0: हाँ,
2: और बेस्ट सेलिंग बुक है, अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, हम जो है बाकी लिसनर्स को हम इसके सर से लिंक लेंगे एंड उसको शेयर कर देंगे सोशल मीडिया पे, एंड जिसको भी चाहिए होगा वो वहाँ से जाके भी कर सकता है कनेक्ट। बाकी अगर कोई सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्ट होना चाहे, किसी को अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानना हो, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो कैसे वो लाइफ कोच पुरुषोत्तम जी से संपर्क कर सकता है?
2: आप मेरे को इंस्टा पे कनेक्ट कर लीजिए।
0: ओके,
2: फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली,
2: शेयर कर दीजिए और कभी भी वो लोग रीच आउट कर सकते हैं।
0: परफेक्ट परफेक्ट, लवली टॉकिंग टू यू सर, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, एंड सीरियसली कॉन्वर्सेशन बहुत ही कमाल की और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, एंड आई एम श्योर आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही बीच बीच में हमारे लिसनर्स को ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बताते रहेंगे, लाते रहेंगे
1: और गाइड भी करते रहेंगे।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली,
2: बिल्कुल जी, कभी भी किसी को कोई भी हेल्प लगे, पुरुषोत्तम उनका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझ लो खड़ा हुआ है उनके लिए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए सर, फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, लवली टॉकिंग टू यू सर वंस अगेन।
2: प्रीमियर भाई, थैंक यू, बहुत बहुत कामनाएं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खूब तरक्की करिए, इसी तरह से लोगों की हेल्प करिए।
0: चलिए, हमारा क्रेडिट आपने फाइनली दे दिया, हम बहुत खुश हैं, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। चलते चलते बहुत मजा आया और आपने बहुत अच्छा गाया, एंड आगे कभी आप मुरादाबाद अपनी ससुराल आए तो हमारे स्टूडियो भी आए गाना गाने।

0: स्टूडियो आके दर्शन जरूर दें।
1: हाँ हाँ जरूर जरूर दर्शन दें। चलिए सर फिर जरूर आपसे मुलाकात करेंगे सर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए ढेर सारा, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच गाइस। तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। मैं और अखिल भाई आपको मिलते रहेंगे ऐसी मजेदार बातों के साथ, बीच बीच में मतलब आते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे। क्यों अखिल भाई चले अभी?
0: हाँ अब तो चलने का टाइम।
1: चलिए गाइस आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो गुनगुनाते रहो। बाय बाय।

0: बात का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त आरजी आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं विकास, विरासत, उद्यमिता और स्वाद के प्रेरक कहानियों की,
3: के साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस शहर में इंडस्ट्रियल हब के रूप में माना जाता है, लेकिन आज अपनी थाली के स्वाद से भी पहचान बना चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद।

0: چلیے شوتاؤں، اب ہم لیتے ہیں آپ سے جانے کی اجازت۔ آپ سنتے رہیے آپ کے شہر کا اپنا سامودائک ریڈیو ایف ایم مراد آباد 89.6 ریڈیو، بجاتے رہیے گنگناتے رہیے۔
1: مراد آباد کے لیے ایک بڑی خوشخبری، اب وشوستریہ روبوٹک گھٹنا پرتیاروپن کے لیے دلی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سری سائی ہاسپٹل مراد آباد میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی والا جانسن اینڈ جانسنز ویلس روبوٹ کے ساتھ روبوٹک گھٹنا پرتیاروپن کی اتیادھونک سویدھا، 20 ورشوں سے انوبھوی جوائنٹ ریپلیسمنٹ ایم روبوٹک ایکسپرٹ ڈاکٹر انکور گوئل دوارا مریضوں کو ملے گا بھروسے مند اپچار۔ آج ہی سمپرک کریں سری سائی ہاسپٹل دلی روڈ مراد آباد، کال 7055011681۔
2: ارے سنو، وہ پڑوس کا لڑکا ہے نا، اس کے سر میں بہت چوٹ آ گئی ہے۔
3: چوٹ آئی ہے تو کوئی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہے؟ نہیں
2: یار، کوئی اچھا ڈاکٹر مل ہی نہیں رہا۔
3: تو آج ہی آئے مراد آباد کے بھروسے مند اور وشوسنیہ ڈاکٹر نریندر کمار سنگھ، نیورو سرجن پہ آروش نرسنگ ہوم، پورا پتا سیکٹر 9B بدھی وہار فیز 2 دلی روڈ مراد آباد،
4: کال 7500153841۔
5: انٹیشن کارشالا کا ادگھاٹن کیا۔ दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 75 सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की पहल शुरू की। दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा पर बढ़ाई सख्ती। यातायात नियम तोड़ने पर इस वर्ष अब तक 48,42,000 से अधिक चालान जारी किए। और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारम्भ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से दिल्ली के विकास और जनसेवा के संकल्प को नई शक्ति मिली है। दिल्ली भाजपा कार्यालय में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने भाजपा में शामिल हुए सभी पार्षदों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सामूहिक प्रयासों से राजधानी के विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजधानी के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए पार्षदों ने ये निर्णय लिया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।
6: केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इससे बेहतर समय शायद दिल्ली के लिए कोई ना हो कि जब हम मिलकर के काम यदि करेंगे तो वो जितनी लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की थी, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे यमुना की सफाई हो, इन सभी विषयों पे काम करना आज की डेट में ज्यादा सुलभ है, ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। और ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लक्ष्य में जुड़ना सच में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए एक शुभ संकेत है।
5: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम तीनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में सभी मिलकर राजधानी की वर्षों पुरानी समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकते हैं और विकास कार्यों को नई दिशा दे सकते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा परिसर में संस्कृत महाकाव्य मंगल महर्षि चरितम का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत चेतना और सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन का प्रत्येक प्रयास देश के भविष्य में किया गया निवेश है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित भाषाओं में से एक है। इसकी तार्किक व्याकरणिक संरचना आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के दौर में भी प्रासंगिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। विश्व बैंक और पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 8,300 करोड़ रुपए का 7 वर्षीय कार्यक्रम राजधानी में वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम की 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35% योगदान दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर गति और दृढ़ संकल्प के साथ सतत विकास को गति दे रहा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। श्री जाधव ने 70 लाख से अधिक स्वदेशी और जलवायु प्रतिरोधी वृक्षों के प्रस्तावित वृक्षारोपण, 70 से अधिक जल निकायों के विकास और लगभग 6,000 हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र घोषित करने की सराहना की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की पहल शुरू की है। इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL और NGO एहसास के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में हुए इस समझौते के अंतर्गत IGL अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR पहल के माध्यम से परियोजना के लिए

0: वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट।
1: यातायात पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक 48,42,000 से अधिक चालान जारी किए गए हैं, जबकि रेड लाइट और ओवर स्पीड उल्लंघन का पता लगाने वाली तकनीक आधारित प्रणाली के माध्यम से 17,21,000 से अधिक ई चालान जारी किए गए हैं। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामलों में 2,187 FIR भी दर्ज की गई है। राजधानी में ट्रैफिक की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए 8 प्रमुख सड़क कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बना दिया गया है। अनावश्यक ट्रैफिक सिग्नल हटाने, यू टर्न की सुविधा देने और चौराहों को फिर से डिजाइन करने जैसे उपायों से इन रास्तों पर ट्रैफिक का प्रभाव बेहतर हुआ है। यातायात जाम को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर कश्मीरी गेट, आनंद विहार, आश्रम चौक, मजनू का टीला और अन्य प्रमुख स्थानों पर आधारभूत ढांचे में सुधार किए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हुई है। यातायात पुलिस ने कहा है कि इंजीनियरिंग सुधार, आधुनिक तकनीक, प्रभावी परिवर्तन और जन भागीदारी के माध्यम से राजधानी में सुरक्षित और यात्री अनुकूल यातायात व्यवस्था विकसित करने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली परिवहन निगम DTC ने महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा व्यवस्था को पूरी तरह स्मार्ट कार्ड आधारित बनाने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त 2026 से केवल वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड धारक महिलाओं को ही DTC और क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस महीने के अंत तक ही कागजी पिंक टिकट जारी रहेगा। जिन महिलाओं के पास ये पिंक कार्ड नहीं होगा, उन्हें निर्धारित किराया देकर सामान्य टिकट लेना होगा। इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की सुविधा बिना किसी बाधा के जारी करने के रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब तक 15 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दक्षिण दिल्ली की महत्वपूर्ण मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसके विकास की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी को लिखे पत्र में कहा कि लगभग 8.8 किलोमीटर लंबा मांडी रोड दिल्ली NCR का महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़क गलियारा है। ये मार्ग छतरपुर मेट्रो स्टेशन के निकट मेहरोली गुरुग्राम रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 148A को गुरुग्राम फरीदाबाद रोड से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ये सड़क दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच अंतरराज्यीय यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी है। चांदनी चौक नागरिक मंच ने दिल्ली सरकार द्वारा शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम किए जाने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया है। मंच के महामंत्री और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पुरानी दिल्ली के नागरिकों और व्यापारियों की लंबे समय से ये मांग थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नाम परिवर्तन के साथ ही पुरानी दिल्ली के संरक्षण, विकास और रखरखाव के कार्यों को नई गति मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज नजफगढ़ स्थित गोयला डेयरी संपीड़ित जैव गैस CBG प्लांट की प्रगति की समीक्षा की और पश्चिमी जोन की प्रमुख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की साइबर सेल ने नकली दवाओं के निर्माण और अंतर्राज्यीय आपूर्ति से जुड़े एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी इस गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता था। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की वर्षा के साथ साथ बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच दक्षिण दिल्ली में मॉनसून की तैयारियों को लेकर आज दक्षिण जिले की दिशा समिति की बैठक भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली सरकार, नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के अधिकारियों ने बताया कि जलभराव से निपटने के लिए नालों की गाद हटाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। ये वार्षिक महोत्सव अनानास उत्पादकों को उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, खाद्य व्यवसायों और निर्यात बाजारों से जोड़ने का राज्य का प्रमुख मंच बन गया है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम व्यापार को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक स्तर पर किसानों की क्षमताओं को नई गति प्रदान करते हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। वे कई दशकों तक आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहे। उन्होंने देश विदेश में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हुए रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक बजकर 8:00 ये लीजिए पूरे हुए 20 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, और इस क्रम में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और उम्मीद करते हैं ये जो गीत हम पिरो कर लाए हैं, ये सभी नगमे जो हैं आप सभी को पसंद आएंगे। तो आइए गीत मालिका का आगाज करते हैं लता जी की आवाज में गाई एक खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड।

0: मुरादाबाद। कॉल नाउ 94122-11111।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: हाँ जी, कैसे हालचाल? आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ पर जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है। और दोस्तों, आज तो मैं भी एक शायर बन के आ गया हूँ।
4: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की, जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
5: और हूं आपकी दोस्त प्राची।
4: मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
5: दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है, जो गांव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
5: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
4: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद, मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देशी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गाँव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, कान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया, इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख खा देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोल्हू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात के कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ, सुनिए। छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गाँव का युवा अब अपने जिले में काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम दोनों की तरफ से
1: नमस्कार।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्द ही मिलेंगे श्रोताओं, ना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
3: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
4: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
3: And then we can sell to further markets as well.
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
5: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 पैसे पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: கண்ணையாரு.
1: नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, सिर्फ और सिर्फ एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां हर रात हम बात करते हैं दिलों की, मुस्कुराती बिखरती यादों की, और हाँ जी साहब, आपकी वो बात जो आपके दिल से निकलती है और हमारे दिल तक पहुँचती है। तो आज एक प्यारा सा सवाल है हमारा, और वो ये है कि जब भी आपको थोड़ा सा खाली समय मिलता है ना, तो आपका फेवरेट पास्ट टाइम क्या होता है? जी खाली समय तो वैसे रहता नहीं है, हम पूरे टाइम कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में बिजी रहते हैं। सुबह से निकल जाओ ऑफिस के लिए, ऑफिस में जाओ तो भाई साहब ऑफिस के काम, फिर ऑफिस से बाहर आ जाओ तो रास्ते में भाई साहब सब्जी भी लेनी है और घर के काम भी निपटाने, तो खाली समय तो मिलता नहीं। मगर जब भी कभी मिल जाता है ना खाली समय, तो कुछ लोग आज भी कैंडी क्रश खेल लेते हैं या कोई किताब पढ़ लेते हैं, कोई म्यूज़िक सुन लेता है, एफएम मुरादाबाद ही लगा लेता है, तो कोई दोस्तों से बातें करता है, और कुछ लोग तो किसी खास की प्रोफाइल को बार बार देखते रहते हैं। तो बताइए आज कि आपका फेवरेट टाइम क्या है, फेवरेट पास टाइम। 9837896896 पर हमें मैसेज करिए और हमें कॉल करें सीधे और बता दें, हाँ जी मैं जब भी थोड़ा सा मौका मिलता है या समय मिलता है तो मैं ये काम कर लेता हूँ। एक शायरी आप सभी के लिए। खुशियों का कोई मौसम नहीं होता, मुस्कुराने का कोई कारण नहीं होता, जो पल दिल को सुकून दे जाए वही हमारा सबसे खूबसूरत पास टाइम होता है। तो जी हाँ, मैसेज का वेट कर रहा हूँ, आपकी कॉल का इंतज़ार हो रहा है, अभी कोई लाइन बिजी नहीं है। 9837896896 चलिए आते हैं, तब तक सुनते हैं आज क्या है।

एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और इस समय मौसम भी आज कह रहे हैं ना कि आपकी बात तो सुनी रहा है, थोड़ी बहुत बरसात कर देता है रिमझिम, फिर कहता है जी थोड़ा सा

तो पसीना आने दो, उसके बाद कहता है थोड़ी हवा भी आने दो। तो होता तो है ये हम लोगों के साथ कि जो चीज़ पहले कहते हैं ना कि धूप बहुत आ रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी, अब मौसम ऐसे हो गया तो अब पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, मगर नहीं, करनी तो हमें है मस्ती, तो मौसम ने तो दे दिया आज साथ। कभी सोचा है कि हम भी दिन भर कितने व्यस्त रहते हैं, लेकिन जैसा ही थोड़ा समय मिलता है दिल वही करता है जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद हो। किसी को पेंटिंग, किसी को कुकिंग, किसी को क्रिकेट खेलना और किसी को सिर्फ अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक लिसनर, चलिए करते हैं उनसे कुछ बात, पूछते हैं उनका फेवरेट पास टाइम क्या है। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं, अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं सर? हेलो, हाँ जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, या तो आप स्पीकर पे से हटाइए और बात। हाँ जी, बोलिए बोलिए। क्या बात है साहब, क्या बात है। तो आज आपको पता है हम बात कर रहे हैं कि खाली समय मिलता है जब कभी कभी, तो अपना आपका क्या शौक, क्या जी? हाँ नरेंद्र जी, चलिए चलिए, तो आपका फेवरेट सॉन्ग बताइए आज, कौन सा चाहते हैं कि कौन सा सुनना चाहते हैं आप, अपना पसंदीदा गाना। जिंदगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नरेंद्र जी, करते हैं आपसे अभी बात। धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, आपका भी गाना प्ले होगा आज। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ नरेंद्र जी, जिनकी आवाज़ आ तो रही थी मगर थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होके आ रही थी, और कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट जो पास टाइम है ना, कभी कभी मैं आपका FM ही लगा लेता हूँ और आपको सुनता हूँ। तो धन्यवाद नरेंद्र जी, जो आप अपने थोड़े से भी खाली समय में हम लोगों को सुनते हैं और हम लोगों की बातों का, हम लोगों के साथ इस गाने का, इस माहौल का आनंद लेते हैं। तो उनका फेवरेट सॉन्ग जिंदगी की टूटे ना लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, तो ज़रूर इसे प्ले करते हैं और मिलते हैं आपसे भी, करते हैं गुफ्तगू। तब तक आपने मैसेज करें और बताएं 9837896896 पे कि कौन सा ऐसा पास टाइम है जो आपके दिल के बहुत करीब है।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, जहां आप सुन रहे हैं अपने फेवरेट गाने, अपनी फेवरेट पास टाइम भी बता रहे हैं और हमसे अपनी सारी फरमाइशें भी। जो कहते हैं ना कि भैया मेरे आज पसंद का गाना चला दो, आज वैसे ही कुछ ना कुछ चल रहा। मौसम भी अच्छा हो रहा है, हाथ में चाय का गिलास है और साथ में आपका पसंदीदा गाना भी है। हमारे पास मैसेज आता है रिया जी का, कहती है मेरा फेवरेट पास टाइम बारिश में चाय के साथ पुराने गाने सुनना है। हाँ तो रिया जी, अभी हम यही बात कर रहे थे और कहते हैं ना बारिश, चाय और पुराने गाने, मतलब इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता ही क्या है। साथ में अगर मैगी आ जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाए साहब। चलिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक श्रोता, करते हैं उनसे कुछ बात। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग। अनिल वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया भाई साहब।
0: क्या ऐसा मौसम का आनंद ले रहे हैं आप, हमें ही बताइए।
1: मौसम तो आज बढ़िया हुआ है, आज दिन से
0: मौसम अच्छा ही है। तो भीगने के बाद क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ?
1: अरे साहब आजकल आप भूल रहे बात है, आदमी सर बचाता है अपना, खराब ना हो जाए
0: कि कहीं अगले दिन मेरा कोई पर्चा नहीं बन जाए
1: आप तो जानते ही हैं।
0: तो आज बताइए, हम बात कर रहे हैं आपके जो खाली समय में कहते हैं ना मस्ती करते हैं, आपका पास टाइम जो होता है फेवरेट, कुछ करते हैं खाली समय में? कभी कोई गेम खेल लेते हैं या किसी को फोन मिला लिया?
1: घर पे बैठ रहे हैं, बातचीत कर लो समय का, तो बाहर निकलने का जमाना कहाँ है।
0: तो सर सही है, फिर तो उसी समय जैसे हैं दूर दूर के रिश्तेदारों को फोन मिल जाते होंगे।
1: वो तो चलता रहता है ऐसे।
0: सही है सर, बहुत ही बढ़िया,
1: आता जाता रहता ही है।
0: चलिए आज हमें अच्छा लगा, आपने कम से कम फोन करके हमें बताया कि आप भी फेवरेट पास टाइम में जो है खाली समय में कभी कॉल मिला लेते हैं तो कभी गाने सुन लेते हैं। तो एक गाना हम आपको डेडिकेट करते हैं आज, ठीक है सर? कोई शायरी सुनाना चाहेंगे आप?
1: मैं शायरी से दूर रहता हूँ।
0: आप शायरी से दूर रहते हैं तो कोई गाने गुनगुना दीजिए।
1: अरे यार क्या कह रहा हूँ,
0: अरे गुनगुना दीजिए, एक दो लाइन गुनगुना दीजिए। अभी आप इतना अच्छा गाना गुनगुना रहे थे, मैं सुन रहा था, मगर बहुत ही है, अगर एक दो लाइन ऐसे गुनगुना देंगे तो क्या आवाज है आपकी भी।
1: अरे नहीं भाई
0: साहब। चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे अनिल जी, जो अभी शर्मा रहे थे, मगर मैं कहूँगा गुनगुनाते बहुत अच्छा है और इतना प्यारा गुनगुना रहे थे कि अगर सुन मैं उस समय उनको अपनी लाइन पे ले लेता तो आप भी कहते हैं हाँ जी गाना तो यही बढ़िया गा रहे हैं। तो इनका फेवरेट पास टाइम है फ़ोन पे दोस्तों से बात कर लेना, रिश्तेदारों को कॉल कर लेना या फिर पुराने गाने सुन लेना, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज इनको एक गाना डेडिकेट करते हैं, बढ़िया सा मस्ती भरा वाला। तब तक आप भी हमें कॉल करें 9837896896 या फिर मैसेज करें और बताएं पास टाइम क्या है फेवरेट। जब कभी कभी हो जाते हैं बोर तो क्या कर लेते हैं, ऐसा काम जो आपको मुस्कुरा देता है, जो आपके दिल के भी करीब होता है। तो चलिए तब तक ये गाना जो हमारे दिल के करीब है अनिल जी के लिए।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये जो हमारा ट्रैक था ये विनीत जी के द्वारा एक रिक्वेस्ट पे प्ले किया गया था, और वो राज जी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हमारे, वही राज जो थे हमारे साथ, जो रात में करते थे आपसे दिल की बात। तो उनके दोस्त विनीत जी की रिक्वेस्ट पे ये गाना प्ले हुआ था। और हाँ, एक शायरी हमारे पास अभी आई है, कहते हैं, तेरी आरजू में हमने बहारों को देखा, तेरी जस्तजू में हमने सितारों को देखा, ना मिला तुमसे बढ़कर इन निगाहों ने हज़ारों को देखा। तो मोहम्मद कामिल जी ने बहुत ही बढ़िया शायरी भेजी है हमारे पास, ग्राम खेड़ा रामपुर जिला से। और उम्मीद करता हूँ कामिल जी, आज रामपुर में भी मौसम अच्छा रहा होगा और आपने खूब एंजॉय किया होगा। चलिए, हमारे साथ हमारे एक वो लिसनर जुड़े हैं जो हमेशा हमें मैसेज करते रहते हैं, हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, मतलब कहते हैं कि शायद कोई जुड़े ना जुड़े, मगर ये जो हमारे श्वेता हैं ये हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। और इनकी खास बात यही है, जेठालाल इनका नाम है, और ख़ास बात इनकी ये है कि जब भी आते हैं, चाहे वो मैसेज पे हों या कॉल पे हों, बात बहुत मस्त करते हैं। चलिए जुड़ते हैं उनसे और करते हैं कुछ दिल से दिल की बात। नमस्कार रामवीर जी, कैसे हैं आप?
1: सही है, आप सुनाइए सर।
0: बढ़िया है सर, बढ़िया। और क्या कर रहे हैं इस समय आप, मौसम में क्या आनंद ले रहे हैं आप? मौसम तो अच्छा हो गया है।
1: मौसम आपका प्रोग्राम सुन सुनकर, आप इतने गाने सुनवाना है तो मौसम तो सुहाना होने ही है सर।
0: चलिए ये तो है। और आज बताई दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को कि आपका फेवरेट पास टाइम क्या है।
1: जी हमारा टाइम बस ये है, सब लोग खुश रहे हैं
0: और
1: दुख ना दे।
0: हाँ जी बिल्कुल सही,
1: बस और क्या।
0: और इस समय आज जो है कहाँ, मतलब मौसम के आनंद के साथ साथ खाना डिनर विनर हो गया आपका?
1: अभी नहीं हुआ सर, आपके प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम में सुन लेंगे सर, खाना कैसे खाऊंगा सर।
0: रामवीर जी बस आज आज कोई ऐसी शायरी बता दीजिए जो आप हमेशा हमें भेजते रहते हैं, कोई ऐसी शायरी जो बहुत दिल के करीब हो आपके और हम सब सुनना चाहेंगे आज।
1: सच्चा प्यार कभी बद्दुआ नहीं देता।
0: क्या बात है।
1: सच्चा प्यार कभी बद्दुआ नहीं देता, वो बिछड़कर भी सामने वाले की खुशियों की दुआ करता है।
0: क्या बात कही आपने, बहुत ही दिल से निकली हुई बात कही है रामवीर जी आज आपने। ये
1: आप नाम बोल रहे सर क्या? रणवीर की जगह रामवीर कह रहा
0: है। अच्छा सॉरी सॉरी रणवीर जी, मैं होता है ना कभी कभी एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं हम नाम। हो जाता है ऐसा हमारे साथ, हम तो ज्यादा ही भूल जाते हैं। हम तो कहते हैं ना वो मूवी आई थी गजनी, जिसमें हर 15 मिनट बाद वो मेमोरी भूल जाती है, तो बस थोड़ी बहुत उसी से दोस्ती हुई है हमारी।
1: जी,
0: तो बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, क्या फरमाइश है आपकी?
1: सारी फिल्म का गाना है सर, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह।
0: क्या कोइंसिडेंस है, इससे पहले भी एक गाना जो था शराबी के ऊपर ही था और अब ये शराबी मूवी से है।
1: जी
0: चलिए बहुत जरूरी, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ रणवीर जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए रणवीर जी, जरूर बोलिए।
1: बहुत बुरी बात है सर।
0: क्या बुरी बात है?
1: और क्या नाम है, धूम्रपान करते हैं ये सब, मुझे बेकार लगते
0: हैं सर। हाँ हाँ सर, ये तो बिल्कुल बात है, ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए एक अच्छा व्यक्तित्व के लिए, ये सब चीजों को बिल्कुल अपने से दूर रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने रणवीर जी।
1: जी हमने तो बीड़ी सिगरेट गुटखा रम नहीं है हमें इससे कोई गम।
0: क्या बात कही, बहुत ही बढ़िया। और ऐसी से रहिए हमेशा, हमेशा दूर रहिए सर। किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे घर परिवार में, सभी के किसी का नाम लेना चाहेंगे जिसे डेडिकेट करना?
1: सर हमारे तो बहुत सब अपने हैं जो रेडी सुनना है सर, हम तो सबको उन्होंने सुनवाना कहते हैं सर।
0: चलिए चलिए धन्यवाद साहब, तो
1: अपने हैं
0: तो चलिए सर। ओके रणवीर जी धन्यवाद, बहुत बहुत जुड़ने के लिए
1: धन्यवाद आपका।
0: तो दोस्तों हमारे साथ रणवीर जी हमेशा जुड़ते थे मैसेज के थ्रू, मगर आज कॉल के थ्रू भी जुड़े और उन्होंने भी क्या शायरी, खूब शायरी, बढ़िया एकदम, कहते ना दिल से निकली हुई शायरी बोली है, और ये गाना भी उनके दिल से ही निकला। तो आप भी हमें मैसेज करें या कॉल करें और बताएं आपका फेवरेट पास टाइम क्या रहा है, 9837896896। तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: इतना प्यारा ट्रैक, दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है, ये फरमाइश थी भावना जी की नैनीताल से। और कहती हैं वो, सर कैसे हैं आप, कैसा है मुरादाबाद का मौसम, जय श्री राम। तो भावना जी, जय श्री राम, मौसम भी बहुत अच्छा है और आपका ये गाने का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। आपने लिखा है एवरी टाइम इज़ माई फेवरेट टाइम, क्योंकि कोई भी पल को अगर उसी पल में जीना शुरू किया तो वो हर पल खूबसूरत है। लोग कहते हैं वीकेंड का वेट, हम कहते हैं ये पल ही वीकेंड है। क्या बात है भावना जी। और लोग कहते हैं राइट टाइम आएगा, हम कहते हैं इससे अच्छा राइट टाइम और क्या है। बस इतना ही फ़र्क है मुझ में, जब मैं प्रेजेंट में जीती हूँ तो घड़ी भी स्लो हो जाती है और खुशी दोगुनी हो जाती है। तो भावना जी, आप ऐसी ही जिएं और खूब खुश रहें, खूब मस्ती से रहें। और जो जिस गाने, जो ये गाना आपने अपने दोस्त के लिए डेडिकेट किया, वो दोस्त भी आपका बहुत खुश रहे। तो चलिए हमारे और श्रोता जो आज हमारे साथ लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बेचारे कह रहे हैं कि कब हमसे अखिल जी बात करेंगे। तो करते हैं उनसे बात और दिल की बात सुनते हैं उनकी। नमस्कार, कैसे हैं उस्मान जी?
1: नमस्कार साहब, मोहम्मद उस्मान साकिबुल्ला की ज़ियारत के पीछे मुरादाबाद के कागुफ्ता।
0: नमस्कार नमस्कार, इतना इतना लंबा इंट्रोडक्शन दे देते हो आप, हम तो सोचते हैं यही एक शादी ना बन जाए कभी। और क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: आपके प्रोग्राम सुनने तो साहब हम तो रह न गए, हमने फोन ही मिला लेते हैं।
0: चलिए साहब, ये तो काम आपने अच्छा किया। तो क्या करते हैं खाली समय में क्या करते हो? खाली समय में
1: हम लोग यार दोस्त होते हैं, घूमते रहते हैं। अगर कोई बेचारे लाचार है या उसके पैर में चप्पल नहीं है, उसे दे देते हैं, खाने को दे देते हैं, चाय पिला देते हैं।
0: क्या बात है साहब, इतना अच्छा और नेक काम कर रहे हैं,
1: ऐसे करते हैं हम लोग।
0: बहुत ही बढ़िया। कोई शायरी सुनाना चाहेंगे आप उस्मान साहब?
1: जी
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: हर मंजर में पाऊं तुम्हें, कैसे कहूं कितना चाहूं तुम्हें, तुमसे ही शुरू होती जिंदगी मेरी, यूं ही कैसे भूल जाऊं तुम्हें।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है, भूलने भी नहीं देगा जो भी आप कह रहे हो। बहुत ही बढ़िया उस्मान साहब,
1: आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगता है, रहा नहीं जाता हम लोगों से।
0: अरे नहीं सर, रहना तो पड़ेगा सर,
1: मजबूर हो जाते हैं।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। हम भी इसी मजबूरी के चलते आपके पास आते हैं उस्मान जी।
1: ये बहुत ही बढ़िया।
0: धन्यवाद साहब। तो उस्मान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने इतना अच्छा गाना बताइए, आप कौन सा गाना जाते जाते सुनना चाहेंगे?
1: आपको बताया था ना, हम एक दूजे के लिए।
0: क्या बात है,
1: तुम बने एक दूजे के लिए।
0: बहुत ही बढ़िया गाना सुना है आपने और जरूर इसे प्ले करेंगे आज शो के अंत में। बढ़िया सुनाएंगे साहब। तो चलिए धन्यवाद आपसे आज जुड़ने का हमारे को। ओके जी। तो उस्मान जी कह रहे हैं आज तो उनका हो गया काम, कॉल लग गई है, उन्होंने अपना फेवरेट गाना भी बता दिया है और अपनी एक फेवरेट शायरी भी सुना दी है। हमारे पास सुमित महेश्वरी जी जुड़े हैं MDA से और उन्होंने एक बहुत बढ़िया शायरी लिखी है, वक्त मिला तो खुद से भी मुलाकात कर लेना, भीड़ में रह के थोड़ा अकेलापन भी जी लेना, ज़िंदगी तभी खूबसूरत लगेगी जब खुद के साथ वक्त बिताना सीख लोगे। तो क्या बात है सुमित जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और ये बहुत ज़रूरी है, जब खुद के साथ आप वक्त बिताना सीख लेंगे ना तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत लगती है। तो चलिए खूबसूरत सा गाना प्ले करते हैं, तब तक आप हमें कॉल करें और जल्दी से लास्ट कॉलर बने, उसके बाद हम भी थोड़ा मौसम का आनंद लेंगे। 9837896896 पर

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अमन जी रामपुर से मैसेज करते हैं हमें और कहते हैं कि मुझे बाइक लेकर रॉन्ग राइड पे निकल जाना सबसे ज़्यादा पसंद है, यही मेरा सबसे फेवरेट पास टाइम है। तो अमन जी आपने कई मतलब कहता हूँ बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब आप किसी व्हीकल के साथ निकल जाते हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कहते हैं ना आपका कोई भी फेवरेट ऑटोमोटिव व्हीकल हो और आप उससे अकेले निकल जाते हैं किसी भी कहीं भी घूमने, तो वो एक पास टाइम आपका एक फेवरेट ऐसा पास टाइम हो ही जाता है कि जहां आप और वो गाड़ी आपका साथ हो जाती है। तो कहते हैं ना कई बार सड़कें भी वो बातें सुन लेती हैं जो हम किसी इंसान से नहीं कह पाते, तो ये होता है साहब। और बहुत अच्छा है कि ऐसा थोड़ा सा अपनापन निकलना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा भी पास टाइम होना चाहिए जो अपने लिए भी समय निकाल सके। एक छोटा सा सवाल, अगर आपको पूरे दिन के लिए मोबाइल बंद करना पड़े तो आप क्या करोगे? हमें ज़रूर मैसेज करिएगा, या तो सो जाएंगे, या दोस्तों के साथ निकल जाएंगे, या फैमिली के साथ समय बिताएंगे, या फिर मोबाइल को ढूंढते रहेंगे। जी मैं तो पहले थोड़े टाइम तक तो मोबाइल ढूंढता रहूँगा, फिर थक हार के इनमें से दोस्त को ही कॉल करूँगा, क्योंकि कॉल करने के लिए भी तो मोबाइल चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके किसी दोस्त तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी, हाँ भाई तू भी अपने घर से बाहर निकल और मैं भी निकल ही रहा हूँ, तो मिलते हैं। चलिए हम जुड़ते हैं और अपनी लास्ट कॉल लेते हैं, चलने से पहले देखते हैं आज हमारे साथ कौन जुड़ा है। नमस्कार दिल से दिल तक।
1: नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
0: कैसे हैं आप, अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ पर हैं मुरादाबाद में?
1: सर मैं मुरादाबाद में तो लाइन पार में रहता हूँ, एक्चुअली नाम नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा नाम हिडन रहेगा।
0: चलिए
1: आपने बता दिया था नाम, कोई बात नहीं। सर एक्चुअली मैं अपने पेज का नाम बता दूंगा, मेरी कलम से नाम है मेरे पेज का।
0: अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, तो आप लिखते भी हैं?
1: मेरे जानने वाले हैं वो सब इसी नाम से पहचान जाएंगे।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है। तो जो कुछ कलम से आपने लिखा है कुछ बताइए आज हमारे श्रोताओं को भी, कुछ सुनाइए हल्का सा।
1: बिल्कुल सर सुनाऊंगा, आपसे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है एफएम 89.6 पर। मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, बहुत लोग हैं पर मैं भी उनमें से एक चुनिंदा हूँ 89.6 एफएम का।
0: धन्यवाद साहब धन्यवाद,
1: क्योंकि उसी ने मेरी शाम बनाई है, उसी ने मेरे अल्फाजों को अपना थोड़ा नाम दिया है, अपनी आवाज दी है।
0: क्या बात है, तो ये तो कहते हैं आज हमें मिल ही गए आप, मतलब हमारे साथ आपकी फर्स्ट टाइम बात है, मगर हमें भी ऐसी लगेगा बात करते करते कि आपसे कभी पहले बात हो चुकी होगी।
1: बिल्कुल सर माफी चाहूंगा, लेकिन आपका नाम जानना चाहूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम है मेरा आज बहुत दिन में जो मैं मुरादाबाद में आया हूँ। तो एफएम सुन रहा हूं।
0: तो जैसे आपने अपना नाम नहीं बताना चाहा, आप हमारा नाम अब मंडे को सुनिएगा फिर। वैसे मेरा नाम अखिल है, मंडे को आपको फिर से मिलेगा,
1: आपका नाम कल ही सुन के आपको मैसेज कर दूंगा।
0: चलिए साहब कुछ शायरी सुनाइए अब हमारे लिसनर्स को, जो आपके साथ आप इस समय लगता है मुझे गाड़ी में ही बैठे हैं ना?
1: नहीं बिल्कुल मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ इस टाइम।
0: हाँ तो इस समय जितने भी लिसनर्स हमारे गाड़ी में बैठे, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, जो इस समय फ्राइडे नाइट एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया सी शायरी तो बताइए सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको शायरी भेजी थी पर मैं सुना देता हूँ फिर भी।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो अर्ज क्या है कि झूठी हंसी चेहरे पर सजा कर बैठा हूँ।
0: क्या बात है,
1: झूठी हंसी चेहरे पर सजा के बैठा हूँ, सारे इल्जाम खुद पर लगा के बैठा हूँ, सारे इल्जाम खुद पर लगा कर बैठा हूँ, और हाथ का कांपना लाजमी है इसमें, हाथ का कांपना लाजमी है इसमें, हैरत कैसी मैं खिलौना थोड़ी महबूब गवा कर बैठा।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, ये बिल्कुल एकदम दिल से ही निकली हुई है और पूरी अंदर तक जा रही है शायरी भी आज।
1: बिल्कुल बिल्कुल साहब, बस एक एफएम मिल गया था मेरे को 89.6।
0: एक
1: ये था कि उसकी वजह से ही जो है मैं और ज्यादा जो है इस चीज का दीवाना हो गया था, वैसे तो दर्द में था पर दीवाना हो गया था कि मैं मेरे जो लिखे हुए अल्फाज थे वो थोड़ा सा मैं बाहर निकालूं और संतुष्टि भी मिलती थी थोड़ी सी।
0: नहीं नहीं सर ये अच्छी बात है, और कभी कभी होता है ना कुछ बातें जो होती हैं निकलनी भी चाहिए दिल से, हम तो यही कहते हैं कि निकले भले ही थोड़ी सी निकले मगर निकले जरूर,
1: निकले जरूर। और उसी बीच जो है पता नहीं एक बोलते हैं ना देवता की तरह प्रकट हुए थे मेरे राज भाई।
0: हाँ
1: नहीं हो पाती, कंटिन्यू उनसे मेरी बात नहीं हो पाती, क्योंकि एक्चुअली मैं भी बिजी रहता हूँ, वो भी मुझे पता है कि बिजी रहते होंगे बहुत ज्यादा।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लेकिन उन्होंने जो है 89.6 को छोड़ा है, छोड़ने का मतलब वो थोड़ा सा साइड हो गए है,
0: हाँ जी,
1: अपने
0: हाँ।
1: थोड़े अलग वर्क में थोड़ा बिजी हो गए है।
0: हाँ जी।
1: तो जब से फिर मैं थोड़ा सा उदास रह चुका हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली पहली बात तो मैं रहता भी नहीं हूँ ज्यादा यहाँ पे मुरादाबाद में।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लेकिन अब रहता हूँ, कनेक्ट किया मैंने 89.6, मैंने आपको सुना, मैंने सोचा थोड़ा सा बात हो जाती है।
0: चलिए, जब जब आप मुरादाबाद आएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि साहब आपको उदास ना रहने दे, पंकज जी को ही उदास रहने दे, उन्हीं को पंकज उदास कहा जाए तो अच्छा लगेगा।
1: नहीं, सही बात है, बस लोग सोचते हैं समझते हैं वो अलग बात है। तो उसी पे एक शायरी में सुना देता हूँ कि कौन कहता है हम तबाह नहीं है, कौन कहता है हम तबाह नहीं है, मेरी बर्बादी का बस कोई गवाह नहीं है।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है।
1: कौन कहता है हम तबाह नहीं है, मेरी बर्बादी का बस कोई गवाह नहीं है, सब देते हैं मुझे मुस्कुराते हुए, सब देखते हैं मुझे मुस्कुराते हुए, क्योंकि रोने के लिए कोई जगह नहीं है।
0: क्या बात कही आपने साहब। तो आज आपने जो है ना, जाते जाते हमारा एक इतनी बढ़िया शायरी सुना सुना के आपने एकदम दिन बना दिया जिसे कहते हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े और आपके मैसेज आया।
1: कॉल में
0: चलिए चलिए, आएगा एक दिन, एक दिन ऐसा भी होगा साहब, आपको पकड़ेंगे हम, पूरे एक घंटा शायरी आपसे साथ सुनेंगे।
1: एक्चुअली मैं आता हूँ, मैं ये है कि थोड़ा सा मुझे भी दुख रहता है कि मैं आपके स्टूडियो तक नहीं पहुँच पाता हूँ, क्योंकि घर की वजह से, कुछ फैमिली रीजन की वजह से बिजी इतना रहता हूँ कि टाइम नहीं मिल पाता है।
0: यही तो कहते हम, जब टाइम इतना बिजी रहता है ना लाइफ में, तो कोई ना कोई ऐसा पास टाइम होना चाहिए जिससे आप उसे निकाल सके।
1: मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज यही थी कि 89.6 जब से आया है FM रेडियो अपने मुरादाबाद में,
0: हाँ जी,
1: तो थोड़ा अच्छा लगा मुझे कि हाँ, यहाँ कुछ सुन सकते हैं, गाड़ी में चल रहे हैं तो अपना गुनगुना सकते हैं, अदरवाइज वही रिपीटेड सॉन्ग गाड़ी में भी चलने के बाद।
0: ये तो है,
1: घर पे बैठ के तो नहीं टाइम लगता एक्चुअली, टीवी आज तो फोन के अलावा टीवी तो खत्म ही हो चुका है।
0: हाँ जी,
1: ठीक है, पहले तो सुनते रहते थे FM रेडियो, रेडियो में भी सुनते रहते थे FM।
0: ठीक है विनीत जी, तो आज विनीत जी आपसे हमारी खूब बातें हुई हैं, खूब अच्छा, मतलब सच में बताऊं हमें तो खूब अच्छा लगा आज, आपने जिस तरीके से अपने दिल की बातें रखी, जो शायरी रखी, कसम से मज़ा आ गया। और उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपसे दोबारा हमारी ऐसी मुलाकात हो और हम वो समय आपका फिल कर सकें जब आप कहते हैं ना मैं बोर हो जाता हूँ या राज जी की याद आती है, तो काश थोड़ी बहुत वो जगह हम ले सकें और ज़रूर आपसे उस समय बात कर सकें।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल,
0: धन्यवाद विनीत जी।
1: एक शायरी मैं
0: सुनाई
1: देता हूँ,
0: जाते जाते एक शायरी सुनाई देते, ठीक है साहब, सुनाइए आपकी जाते जाते एक और शायरी।
1: तो शायरी ऐसी है कि हर रोज तनहा दिल से एक ही सवाल होता है, जैसे सर आपसे बात कर रहा हूँ मैं, सारी चीजें हैं तो रोज माइंड में एक ही चीज होती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा शायरी इस चीज को बोल रहा हूँ कि हर रोज तनहा दिल से एक ही सवाल होता है, वो क्यों नहीं लौटा, वो क्यों नहीं लौटा जो हर ख्वाब में ख्याल होता है।
0: क्या बात है,
1: हम मुस्कुराते हैं बस दुनिया की नजरों में, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, पर दिल में अलग ही चीज है। हम मुस्कुराते हैं बस दुनिया की नजरों में, हम मुस्कुराते हैं बस दुनिया की नजरों में, वरना अंदर से हर लम्हा बेमिसाल होता है।
0: क्या बात कही आपने, क्या बात कही सर,
1: बहुत बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हमको कि कम से कम आज आपसे मुलाकात हुई और पहली बार किसी बंदे की दिल से दिल तक इतनी गहरी बात हुई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हुए थे एक बहुत ही दिल से गहरे बंदे, उन्होंने कहा जी नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, मगर सच में इतनी बात कह दी उन्होंने आज अपने दिल से कि अच्छा लगा कि आप कभी कभी कुछ बातें जो होती हैं अपने इस खालीपन में थोड़े से समय मिलने पे उन्हें बाहर तो निकालते, तो उनके लिए एक बढ़िया सा गाना तो हम डेडिकेट करते ही, चलते चलते उनके लिए एक बढ़िया सा गाना आज प्ले करेंगे हम। तो आज के डिस्कशन में हमें पता चला कि कुछ लोग तो करते हैं गार्डनिंग, कुछ लोग करते हैं फोटोग्राफी, और कुछ लोग जो है ना शायरी भी करते हैं साहब, खालीपन में शायरी करते हैं, FM भी सुनते हैं और सुनकर मुस्कुरा भी देते हैं। हमारे पास हमने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपका एक दिन मोबाइल बंद रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो हमारे पास मैसेज आया रोहित जी का कि अखिल जी मैं तो अगर मोबाइल मेरा खो जाएगा, एक दिन बंद हो गया नहीं मिल रहा है, तो मैं सिर्फ सोऊंगा पूरे दिन। तो ठीक है साहब, ये तो आपने रोहित जी बहुत सही बात कही, मैं भी यही करता हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही हो तो मैं भी जाके भैया थोड़ी देर सो ही जाता हूँ, मैंने कहा जब मिलेगी तब की तब देख ले आएगी। तो चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सभी का, कि आज हमने दिल से दिल की बातें इतनी गहरी तक करी हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुने। तो ये लास्ट चलने से पहले एक गाना डेडिकेट करते हैं सर को, जिन्होंने हमसे लास्ट टाइम इतनी अच्छी बातें करी। तो मिलते हैं अब आपसे फिर मंडे को ठीक 9 बजे, अखिल दिल से दिल तक।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।